0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले से साथ अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आज का योगा टिप्स, शवासन को अपने योगा अभ्यास में जरूर शामिल करें। यह अभ्यास शरीर को आराम देने और मन को शांत करने में मदद करता है।
2: सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि रोज नित सवेरे योग की शिविर में आकर के आसन, प्राणायाम, बहुत सारे ऐसे आसन आप हम सभी मिलकर के एक साथ करते हैं। आप सभी को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी लोग मिलकर के जो इस योग शिविर में शामिल हो रहे हैं, उनसे होने वाले लाभों को जान रहे हैं, उनसे होने वाले विषयों पर बैठ कर के हम अब मनन करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आधार है हमारे जीवन का। तो हम सभी को मिलकर के योग करना चाहिए, आसन, प्राणायाम सभी एक साथ मिलकर के यदि हम करते हैं और हमारे संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति और संपूर्ण शरीर को ध्यान में रखते हुए ही हम आसन और योग को बताते हैं। आप सभी को एक और बात पता है कि इस समय जो कि 30 दिवसीय योग शिविर चल रही है, उसमें हर एक आसन, हर एक प्राणायाम के आगे एक शब्द की उत्पत्ति की जा रही है। उस शब्द का अर्थ जो है वो हम सभी लोगों को हम बताते हुए ही और उसका विस्तार रूप से अर्थ बताते हुए, उसकी उपयोगिता बताते हुए ही हम आसन की उपयोगिता बताते हैं। आज जैसा कि हम आज आपको आसन करवाएंगे, यानी हम सभी मिलकर के करने वाले हैं त्राटक प्राणायाम। त्राटक आसन भी कहा जा सकता है और त्राटक प्राणायाम भी कह सकते हैं। उज्ज्वल के साथ साथ हम एक शब्द की उत्पत्ति और कर देते हैं त्राटक प्राणायाम में, जो कि है तिराक्ष। तिराक्ष का मतलब होता है जो दूरदर्शिता से देखता है, यानी कि बिना किसी निशाने के बात करना, बिना किसी निशाने के हम दूर दराज बैठे हुए एक तीर से अपने शब्दवादी वेण को करना, यानी कि शब्द बेदी बाण। तो तिराक्ष का मतलब भी यही हुआ कि बिना आंखों देखा। सेम उसी तरीके से उज्ज्वल, जो कि हमने अभी साथ में हम करने जा रहे हैं उज्ज्वल त्राटक प्राणायाम, दोनों में क्या अंतर है हम सबसे पहले आज उसकी भी पुष्टि करेंगे। लेकिन त्राटक के आगे आज हमने एक शब्द को जोड़ा है जो कि है उज्ज्वल। उज्ज्वल जैसा कि नाम से ही आप सभी जानते हैं कि उज्ज्वल मीन्स क्या होता है, यानी श्वेत, सफेद और हर एक रंग के साथ मिल जाने वाला रंग। श्वेत का असर हम सभी को पता है कि हम किसी भी रंग में अगर उसे मिला दे तो वह उसमें घुल कर अपना कर लेता है। ठीक उसी प्रकार आज त्राटक प्रक्रिया में भी हम उज्ज्वल को कुछ इस तरह देखेंगे कि वह किस तरीके से अपना असर एक आसन प्राणायाम पर छोड़ जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उज्ज्वल का अर्थ, शाब्दिक अर्थ एक प्राणायाम के साथ क्या है और क्यों है इसका महत्व, क्या हमने क्यों जोड़ा इस अर्थ को हम जानेंगे। सबसे पहले उज्ज्वल नाम का मतलब दिव्य, लिट, शानदार, आकर्षक, सनशाइन होता है। अधिकतर आपने देखा है कि हम अपने बच्चे का नाम उज्ज्वल जरूर से रखते हैं, क्योंकि उज्ज्वल का जो अर्थ है वो ही अपने आप में शानदार, आकर्षक होता है। कई मायने में हम देखते हैं कि उन लोगों का असर भी उसी नाम के साथ में होने लगता है। आम तौर पर हम देखते हैं कि यह क्रिया विशेषण, और यदि आप किसी को प्रतिभाशाली बनाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वह चीज सीखने में तेज है। इसी तरीके से एक बुद्धिमान, चतुर, जानने वाला और अधिक सम्राटी शब्द भी हर एक शब्द के आगे आता है और उसका भी कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। उज्ज्वल त्राटक शब्द के आगे हम लोगों ने इसलिए जोड़ा क्योंकि त्राटक एक महत्वपूर्ण प्राणायाम और आसन है। त्राटक को हम कई रूपों में जानते हैं, एकादशी या फिर हम ये कह सकते हैं एक द्वादशी पर जब हम किसी एक को, किसी भी एक वस्तु को काफी देर तक निहारते रहना, देखते रहना, एक द्वशीय यानी कि त्राटक प्राणायाम। वह चीज कुछ भी हो सकती है, आप चाहें
तो अपने घर में एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आप मोमबत्ती पर कर सकते हैं, या आप अपने कमरे में बैठे हैं तो किसी भी तस्वीर को लेकर के भी हम त्राटक कर सकते हैं। त्राटक की प्रक्रिया, विधि, सावधानियाँ और होने वाले लाभ पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्राटक उज्जवल कैसे बना। उज्जवल का अर्थ अभी हमने आपको बताया, शानदार, सनशाइन, श्वेत और वह ऐसा रंग जो कि सभी में मिलकर एक रंग बनने वाला। आपने आंखों का रंग देखा है, यानी कि काला और सफेद। किसी की पुतलियाँ ब्राउन होती हैं, किसी की पुतलियाँ कत्थई होती हैं और किसी की नीली होती हैं। अब नीली पुतलियाँ किसकी हैं? ये तो आप बखूबी ही जान गए होंगे कि हम सभी के जुबा पर सिर्फ एक ही नाम आता है, जो कि है विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। तो आप समझ सकते हैं कि इन पुतलियों का रंग भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी, जैसे कहते हैं ना कि सागर के बीच में अगर एक नाव है और नाव के रंग अलग अलग हैं, लेकिन हमें सागर के रंग पर ही ज्यादातर हमारी दृष्टि रुक जाती है, जैसे कि श्वेत, मटमैला या फिर मिट्टी जैसा रंग। श्वेत यानी सफेद हमारी आंखें और हमारी पुतलियों का रंग भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी दृष्टि हमारी आंखों की एक श्वेत पर ही जाती है। उसके आसपास जो काला रंग यानी हमारी भौंहें, हमारी आंखों के आसपास की पुतलियों का रंग भले ही भिन्न हो, लेकिन हमारी सबसे पहली दृष्टि सफेद और श्वेत पर ही जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि त्राटक स्थिति में जब हम करते हैं तो त्राटक आंखों से जुड़ करके आंखों से ही प्राणायाम है ये। आइए अब हम सभी मिलकर के त्राटक प्राणायाम की प्रक्रिया विधि को बताते हैं। उज्जवल त्राटक प्राणायाम, त्राटक को उज्जवल रूप से करना है, एक शानदार तरीके से, एक सनशाइन की तरीके से, जिस तरीके से हम किसी भी अवस्था में जा कर के अपने उस प्राणायाम को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए त्राटक प्राणायाम की स्थिति में हम चलते हैं। सर्वप्रथम हम किसी मैट या चद्दर बिछा करके किसी एक ऐसे हॉल में बैठ जाएंगे जहाँ पर अगर हम कोई भी, मान लीजिए, दिया जलाते हैं या फिर मोमबत्ती जलाते हैं, तो उससे होने वाले कुछ ऐसे प्रदूषण से हानि ना पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने घर के कुछ ऐसे एरिया में बैठ जाएं जहाँ हवा का आदान प्रदान ना हो, तो आप किसी भी अपने घर के कोने में या फिर घर के किसी ऐसे आंगन में बैठ सकते हैं। महत्वपूर्ण की बात यह है कि हमें एकाग्र चित होकर के ही बैठना है यहाँ पर। तो आइए सबसे पहले हम वातावरण को बनाते हैं और उसके बाद त्राटक की विधि बताते हैं। उज्जवल त्राटक प्राणायाम को करने के लिए हम किसी भी योगा मैट या फिर हम किसी साफ सुथरी चद्दर को बिछा करके बैठ जाएंगे। अगर आप सामूहिक रूप से त्राटक कर रही हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप एक सर्कल बना लें, यानी कि गोलाकार, क्योंकि हम जिस वस्तु को त्राटक बनाने जा रहे हैं वह सामूहिक रूप से अगर हम त्राटक कर रहे हैं तो सभी को एक ही दृष्टि में ले जाने के लिए वह सिद्ध साबित होगा। और यदि हम एकाकी कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो हम आराम से कहीं भी बैठ करके अपने घर में, यानी कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण की बात यह है कि यदि हम किसी भी वस्तु को त्राटक बनाते हैं तो वस्तुओं के नाम है, आप दिया ले सकते हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं, आप किसी किताब को ले सकते हैं, आप किसी दीवार पर टंगी हुई सीनरी को ले सकते हैं, आप किसी मनुष्य को भी बैठा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि हम जब त्राटक करते हैं तो हमें एकाग्र चित होकर के बैठ जाना है। तो पहली विधि, सबसे पहला पॉइंट कि हम अपने आप को, यानी अपने मन को स्थिर करते हुए एकाग्र चित होकर के बैठ जाए। तत्पश्चात हम अपने मन की सारी वृत्तियों को शांत करते हुए ओम का उच्चारण 1 से 3 बार, तत्पश्चात हम यदि दिए की लौ को लेकर के त्राटक कर रही हैं, तो उस कमरे का जो भी वातावरण होगा वह इस तरीके से होना चाहिए जैसे पूरा अंधकार। अंधकार करने का मतलब ये है कि हमारी पूरी की पूरी दृष्टि जो है वह उस त्राटक की प्रक्रिया पर आएगी, यानी कि त्राटक की उस लौ पे आएगी। यदि आपने दिया लिया है तो हम दिए की लौ को देखेंगे, यदि आपने मोमबत्ती लिया है तो आप मोमबत्ती की लौ को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात त्राटक की यही होती है कि यदि हम अगर दिया और मोमबत्ती ले रहे हैं तो हमारे त्राटक का पूर्ण उद्देश्य पूरा होता है। तो सबसे पहले हमने दिया जला लिया है,
और अपने ही हाइट के हिसाब से आपको वह दिया रखना है या मोमबत्ती। यानी आप नीचे से कुछ भी आप डब्बा रख लें, या फिर आप कुर्सी रख लें, या फिर एक मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके बराबर, आंखों के बराबर ही वह त्राटक का वस्तु होनी चाहिए। चाहे आप रख सकते हैं दिया और चाहे आप मोमबत्ती, आपकी सीध के हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद आपको सीधे बिल्कुल अपनी गर्दन करनी है और उसी वस्तु को सीधे आपको देखना है, कम से कम प्रारंभिक अवस्था में 1 से 1.5 मिनट। प्रारंभिक अवस्था में हम 1 से 1.5 मिनट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को आसन प्राणायाम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, आंखों की पुतलियों में हल्की सी झुंझुनाहट। तो ये सारी परेशानियां जब आपको प्रारंभिक अवस्था में होती हैं, तो हम प्रारंभिक अवस्था को 1 से 1.5 मिनट तक ही करते हैं। साथ ही साथ जब हमें इन सारी परेशानियों से जब हम निवृत्त होकर हम आगे की अवस्था में आ जाते हैं, तो हम अपना टाइम इसमें बढ़ा सकते हैं, यानी कि 2.5 मिनट, 3 मिनट बिना पलक झपकाए हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यानी कि हम अब आते हैं त्राटक की दूसरी विधि पर। एकाग्रचित होकर के सीधे हमें आंखें खोल करके बिना पलक झपकाए, यानी कि आप अपनी आंखों की पलकों को बिल्कुल भी नहीं झपकाएंगे, और सीधे आप उस मोमबत्ती को या दिए की लौ को देखते जाएंगे। प्रारंभिक अवस्था जैसे आपकी 1.5 मिनट की पूरी हो जाती है, हाथों की हथेलियों में घर्षण करना है और अपनी आंखों पे, चेहरे पे लगा करके आंखों को स्वतः ही बंद कर देना है। 30 सेकंड के बाद आंखें खोलने पर ही हम अपने कमरे की जो लाइट है उसे हम जलाएंगे। तुरंत ही आप उठ करके ये काम ना करें, क्योंकि अभी आपने त्राटक किया हुआ है, और उसके बाद में आप जाकर के अपने कमरे में रोशनी कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सवेरे और शाम को कर सकते हैं। आइए त्राटक प्रक्रिया के लाभ जान लेते हैं। छोटे बच्चों को आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा शौक से देखते हैं, और छोटे बच्चों को चश्मा लगना आजकल एक आम बात सी हो गई है। 3 से 4 साल के बच्चों को भी हमने देखा है कि उन्हें उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है। तो इसका सीधा कारण सिर्फ आंखों में ये इस प्रकार की कमजोरी नहीं हो सकती है, मोबाइल नहीं हो सकती है। कुछ बच्चों को जेनेटिक भी होता है, उनके माता पिता के द्वारा ही आंखों की कमजोरी मिलती है। ठीक वैसे ही यदि हम स्टार्टिंग से ही, हम प्रारंभिक अवस्था से ही हम अगर अपने बच्चों को इस तरीके से त्राटक करवाएं, तो चश्मा भी उतर सकता है। और दिन में 2 बार त्राटक अवस्था में जरूर से करें। इसके बाद में हम दूध का सेवन करें। साथ ही साथ में जब हम सवेरे उठें, तो अपनी आंखों में ठंडे पानी का छिनकार करें। ठंडे पानी के छिनकार से भी आंखों में होने वाली परेशानियां, और साथ ही साथ जो कि आईज वीक की प्रॉब्लम होती है, वह भी दूर होती है। आइए अब हम आपको बता दें इसकी सावधानियां। सावधानियां ये हैं कि हम किसी भी प्रकार में जब हम त्राटक करते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से सावधानी यही है कि हम मोमबत्ती या दिए की लौ को अपने बराबर रखें। इस तरीके से नहीं कि हमारी आंखें नीचे झुक करके देखें, या फिर छत पर बिल्कुल ऊपर। आप अगर अपने कमरे में इसी तस्वीर को भी देख रहे हैं त्राटक के रूप में, तो भी बिल्कुल आंखों की सीध, यानी आपकी नाक की सीध तक होना चाहिए। तो ये है उज्जवल प्राणायाम। तो आपने सुना, उज्जवल त्राटक प्राणायाम हम सभी ने मिलकर के आज किया, और इसका संपूर्ण लाभ हम सभी मिलकर के कर सकते हैं। जिनके भी घर छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें चश्मा लगा हुआ है, या हम बड़े भी हैं, मोबाइल फोन्स आजकल यूज करते करते, टीवी ज्यादा देखते देखते, या फिर पढ़ाई ज्यादा झुक करके करने से भी, जो कि त्राटक अगर आप करेंगे और आईज वीक की समस्या होने लगती है, तो उज्जवल त्राटक करेंगे तो हमारी आंखें भी उज्जवल होंगी, साथ ही साथ हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। 30 दिवसीय योग शिविर में हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम त्राटक की अवस्था से वापस आने के बाद में हम सभी 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, सभी लोग मिलकर के। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, आज आज समता और आपकी योग की योगिनी समता योग शिविर लेकर के आज आपके समक्ष आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि योग शिविर जब हम बिना देखे हुए कैसे करेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आप सभी को शिविर के माध्यम से बताएंगे कि हमारा एक एक प्राणायाम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये 8 दिवसीय योगा शिविर में आप सभी का योगिनी समता स्वागत करती है। ये 8 दिवसीय योग शिविर कैसे है मैं आपको बता दूं। प्रथम दिवसीय योग शिविर में हम आज आपको बताने वाले हैं अनुलोम विलोम के बारे में, लेकिन अनुलोम विलोम के बारे में हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक नया नाम, जैसा कि अद्भुत अनुलोम विलोम। अब आप सोचने वाले हैं कि ये अद्भुत अनुलोम क्यों हुआ, अद्भुत चीज क्यों होती है। कोई अद्भुत चीज असामान्य, अद्भुत और लगभग चमत्कारी होती है। किसी भी मानक के हिसाब से सोने का बैग ढूंढना अद्भुत होगा, लेकिन कोई चीज जो अच्छी हो या बस अच्छी हो वह अद्भुत नहीं होती। वह अद्भुत चीज को वास्तव में आश्चर्यजनक, असाधारण या विश्वास करना कठिन हो पाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यह अद्भुत है। ठीक वैसे ही हम आज आपको बता रहे हैं कि अद्भुत क्यों अद्भुत है। आपने अभी अभी सुना कि कोई चीज जब असामान्य होती है या अद्भुत होती है, या मान लेते हैं कि लगभग चमत्कारिक होती है, ठीक वैसे ही आज हमने नाम दिया है अनुलोम विलोम को अद्भुत अनुलोम विलोम। यह वैसे ही इतना ज्यादा चमत्कारिक और अद्भुत है जैसे कि हम अपने शरीर में एक अपूर्ण अंग, यानी कि जो कि हम चाहते हैं कि हम उसे पूर्ण करना, पर वो हमसे हो नहीं पाता है। अद्भुत यानी कि सबसे पूर्ण होने वाली एक प्रक्रिया। तो आज हम जानेंगे कि अनुलोम विलोम अद्भुत क्यों है। अद्भुत अनुलोम विलोम में ऐसी क्या बातें हैं जो कि करने से वाकई में अनुलोम विलोम एक अद्भुत माना गया है। अद्भुत यानी असामान्य, यानी सामान्य से कहीं परे। आपने अपने आप से प्यार करना है तो अद्भुत अनुलोम से जुड़े, यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से जुड़े। और आगे हम बताने जा रहे हैं आपको कि अद्भुत अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। योगा मैट या चटाई या कोई साफ चद्दर को जमीन पर बिछा लें। उसके बाद में आप पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। चित्त प्रसन्न और एकांत अवस्था में आपको योगासन करना है। कोशिश करें दोस्तों कि अगर हम योग अभ्यास सुबह के समय करें तो ज्यादा लाभ और इसका जो परिणाम होता है वह दुगना होता है। योग अभ्यास करते समय सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हम योग अभ्यास का जो लाभ है उसके बारे में अपने मन में, अपने चित्त में एक बार जरूर से बैठा लें कि इसका लाभ हमें दुगना मिलता है। आइए अनुलोम विलोम के बारे में मैं बताऊं आपको कि हमें कैसे करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाएं नाक के छिद्र से बाहर श्वास को निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के बाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से श्वास को बाहर निकालते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को कुछ योगीगण नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को साथ में करते हैं। इसमें आपको मध्यमा और अंगूठे की सहायता से एक नासिका को दबाना है और एक नासिका से श्वास को लेना है, कुछ इस तरह।

इस तरीके से हम एक नासिका से श्वास को लेंगे और दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। साथ ही साथ में हम यह ध्यान रखेंगे कि श्वास लेते समय गति जो है वह मध्यम होनी चाहिए, तीव्र गति नहीं होनी चाहिए। अनुलोम विलोम करने की जो सही विधि है वो क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। अनुलोम विलोम करते समय अंगूठे को अपनी दाहिनी नासिका पर रखना चाहिए। हल्के दबाव के साथ इस नथुने को ढककर अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। आंखें बंद करने से आपको एकाग्रता आएगी और हमारा पूरा ध्यान जो है वह प्राणायाम के ऊपर स्थिर रहता है। इसीलिए दोस्तों आंखें बंद करके ही सभी प्राणायाम करें और अपने बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एक बार पूरी तरह से श्वास छोड़ने के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक लें और अब अपनी नौसिका को बाएं नथुने पर रखें। दाहिनी ओर से गहरी और धीरे धीरे श्वास लें। अनुलोम विलोम करते समय आप कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम एक्सपर्ट के साथ पहले समझ लें, यानी कि हम योग की पाठशाला में नित सवेरे जिस तरीके से आपको जिस प्रक्रिया से आपको बताते हैं वही उसी प्रक्रिया से आपको करना है। अनुलोम विलोम करते समय आपकी जो उंगलियां हैं, अंगूठा है, वह ठीक तरीके से होने चाहिए, नहीं तो एक स्टेप को करने के बाद में श्वास की गलतियां हो सकती हैं। अनुलोम विलोम कब करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। अनुलोम विलोम करने का कोई समय नहीं होता है, जिस भी समय आपको लगे कि हमें ये करना है। लेकिन अगर आप नित सवेरे उठकर के अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इसका जो लाभ है वह बहुत ही ज्यादा होता है। अनुलोम विलोम से कौन सा रोग दूर होता है, आइए दोस्तों हम आपको आज बताते हैं। डीआर राजीव के अनुसार अनुलोम विलोम मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है और मानसिक शांति को प्रदान करता है और तनाव को दूर रखता है। अगर आपको तनाव से बचना है तो रोज अनुलोम विलोम करना चाहिए। पहला, वर्क प्रेशर को संभालने में मददगार रहता है। जैसे यदि वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, जैसे चिड़चिड़ापन, घबराहट होती है, तो रोज सुबह 15 मिनट और ऑफिस, या अगर आपको लग रहा है कि हम किसी जॉब में हैं, तो जॉब में जाने के 15 मिनट पहले अनुलोम विलोम का प्राणायाम जरूर करें। इससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा है दोस्तों, बढ़ती है एकाग्रता। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये जरूर से करना चाहिए और जब परीक्षा हो तो यह 10 से 15 मिनट नित सवेरे आपको अनुलोम विलोम का प्राणायाम की प्रक्रिया जरूर से करनी चाहिए, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जिसको भी अगर आपको लग रहा है कि हमें एकाग्रता की कमी है, हम कुछ पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता है, तो आपको जरूर से जरूर अनुलोम विलोम करना चाहिए। तीसरा वह महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है, दिमाग तक पहुंचाती है ऑक्सीजन। यदि रात में सोते समय करवट बदल रही है तो लेटे हुए या बेड पर बैठकर कुछ मिनटों तक हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं तो दिमाग से ऑक्सीजन भी मिल जाती है और नींद भी अच्छी आती है। मस्तिष्क में रक्त संचार अच्छे तरीके से हो पाता है। पूरे शरीर में भी ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत अच्छे से प्रभाव होता है। चौथा व लास्ट पॉइंट है, स्ट्रेस को दूर करता है। रोज अभ्यास करने से जो व्यक्ति डिप्रेशन और शारीरिक कमजोरी को

थकने से सांस लें। बाएं घुटने से अंगूठे को हटा दें और सांस छोड़ें। यह अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट हम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि अनुलोम विलोम के लाभ क्या हो सकते हैं। अनुलोम विलोम करने से, अभी हमने आपको बताया, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है, और जो कि परीक्षा में बच्चे हैं उन्हें तो ये जरूर करना चाहिए। मस्तिष्क आपको ऑक्सीजन पहुंचाने में यह बहुत ही लाभप्रद होता है। तो ये था दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका, प्रक्रिया, जो कि हम नित सवेरे उठ करके हम सभी लोग, आप करें, आप अपने घर वालों को भी करवाएं, साथ में बैठ करके अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, और नित सवेरे करने से इसका लाभ जो है वो दुगना हो जाता है। इसीलिए दोस्तों करें योग, रहे निरोग। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों, योग की योग पाठशाला की चल रही शिविर में आप सभी का तहे दिल से मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। 8 दिवसीय योग शिविर में, जो कि आत्म प्रीति से जुड़ना है हमें, और आत्म प्रीति शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तो आइए आज हम जानेंगे एक नए प्राणायाम को और नए प्राणायाम से जुड़े हुए एक शब्द को। आज हम करने वाले हैं अग्निसार, लेकिन अग्निसार कैसे बना, हम आज उस पे भी बात करेंगे। आज हम करने वाले हैं योग शिविर के 5वें दिन में ओजस अग्निसार। ओजस अग्निसार का मतलब क्या हुआ, मैं बताती हूँ। ओजस अग्निसार का मतलब हुआ, सबसे पहले हम ओजस को जानेंगे। ओजस संस्कृत भाषा के ओजस का हिंदी तत्सम स्वरूप है। इसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ है एबिलिटी, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, शक्ति, बल, और बल जहाँ

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
2: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

अय्यू, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो 11.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो 11.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। वैसे उम्मीद से परे आज तो वाकई में, मतलब जिस तरह की सुबह है ऐसा लग रहा है कि भाई सारी ह्यूमिडिटी जो है वो आज ही के लिए है। खैर ऐसा तो होता रहता है, और मौसम है तो मौसम का जो काम है, जो फितरत है वो बदलना है, और मौसम तो बदलता ही रहेगा। बस हमें अपनी फिक्र करनी है कि हमको कैसे इस मौसम में ख़ुद को सेफ रखना है, ख़ुद को बेहतर रखना है, राइट? ये तो हम हमेशा आपसे कहते रहते हैं, हमेशा इसलिए कहते हैं कि भाई आपको ध्यान रहे, अगर आप भूल भी जा रहे हो तो बिल्कुल ये हिदायत आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। फ़िलहाल सुबह का वक्त हो गया है, मॉर्निंग शो चल रहा है, आरजे अदनान आपके संग मौजूद है। आइए इस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं, सॉन्ग की उस पार आकर के बताते हैं आज का मॉर्निंग का थॉट ऑफ द डे क्या है।

0: सो भाई अक्कड़ बक्कड़ तो हो गया है फिलहाल, इसी अक्कड़ बक्कड़ के बाद आइए अब शुरुआत करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से, क्योंकि आपको इंतज़ार होता है आपके थॉट ऑफ द डे का। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको इंतज़ार होता है सुनने का और मुझे होता है सुनाने का। ना ना, मुझे भी होता है सुनने का। जी हाँ, क्यों? क्योंकि जब मैं इस थॉट को या किसी भी थॉट को आप तक पहुँचा रहा हूँ तो दरअसल मैं खुद तक भी पहुँचा रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता है कि मुझे ये पहले से पता है, क्योंकि मुझे आपके साथ सुनना और उसको समझना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का थॉट क्या कहता है जो मैं आपसे और ख़ुद से दोनों से बताने वाला हूँ आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और यही है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Adnan.

तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर आज का थॉट ऑफ द डे क्या अलग होने वाला है। नहीं, मैं कहने वाला हूं कि आज का थॉट ऑफ द डे आपके साथ रहने वाला है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ, दरअसल आज का थॉट जो है वो इतनी ज्यादा हिम्मत देने वाला है कि आप अगर लड़खड़ा रहे होंगे तो संभल जाएंगे। बेशक आज का थॉट कहता है कि लड़खड़ाना अक्सर गिरना नहीं, संभलना भी होता है। लड़खड़ाना अक्सर गिरना नहीं, संभलना भी होता है। यूं तो अगर सीधे सीधे सोचा जाए तो इंसान सीधा खड़ा है और उसके बाद लड़खड़ा गया, मतलब गिरने वाला था। सीधा सा मतलब तो हम यही निकालते हैं, हम इसको ऐसे ही समझते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर वो लड़खड़ाया ना होता और सीधे क्या गिरना चाहता? बेशक गिर सकता था, पूरे पूरे चांसेस थे। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन दरअसल यहाँ पे सचमुच का लड़खड़ाना और सचमुच के गिरने से मुराद नहीं है, बल्कि बात है लाइफ में उन चीज़ों का अचानक से आ जाना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो आपकी कल्पना से परे था। ऐसे चीज़ों का सामने आना जो आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, जो आपने सोचा ही नहीं क्योंकि आपको कभी लगा ही नहीं, और वो इस तरह से इस रूप से सामने आया, आप सच में अचंभित हो गए कि ये तो कभी होना ही नहीं था। लेकिन अक्सर कई चीज़ें जो ज़िंदगी में नहीं होना होता है वही होता है। जी हाँ, और जब हो जाता है तो शायद उसके लिए हम पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही परेशानी लड़खड़ाना है, उसी परेशानी से आगे बढ़ करके जाना है। जी हाँ, सो लड़खड़ाना जो वर्ड है वो दरअसल वही है जहाँ पे कुछ ऐसा हो जो आपकी सोच से परे हो, और फिर वो आप तक जब पहुँचे तो आप एक बार को लड़खड़ा जाएं। लेकिन लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं कि आप गिर गए, लड़खड़ाने का मतलब है कि आप संभल रहे हैं, आप खुद को वापस से खड़ा कर रहे हैं, आप वापस से ठहर करके आगे बढ़ने वाले हैं, और शायद इस बार संभल करके दोगुनी रफ्तार से। लाइफ तो हमको यही सिखाती है और शायद हम भी इस चीज़ को समझ पाते हैं। कई बार ऐसा नहीं लगता है कि लोग शायद हमको समझ ही नहीं पाए? ऐसा होता भी है, क्योंकि आप अंदर से जो होते हो, आपके एफर्ट्स जो अंदर से होते हैं, आप जो सच में अंदर से कर रहे होते हो, वो अंदाज़ा ही नहीं होता है किसी को, और इसीलिए हर कोई बसाता है और आपको नाप के चला जाता है। कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, कितनी दूर तक आप फैले हुए हैं, इसका अंदाज़ा सच बताऊं तो बहुत कम ही को शायद हो सकता है। इसके अलावा जो आएगा वो सिर्फ आपको जज करके चला जाएगा, और इसीलिए शायद कहते भी हैं कि अगर कोई होता है, कोई ऐसा जज भी करता है तो उसको जाने देना होता है, क्योंकि हर किसी को रोक करके आप अपनी सारी चीज़ों को नहीं समझा सकते हो, ना बता सकते हो, और ना शायद सामने वाला उसके लिए तैयार है। बस हम ही थोड़ा परेशान रहते हैं समझाने के लिए। अगर समझाने से काम नहीं हो रहा है तो छोड़ देना बेहतर है, बेहतर यही होगा, क्योंकि लाइफ कभी रुकती नहीं है। पर हाँ, कभी भी लड़खड़ाइए, मतलब गिरना नहीं है, मतलब सीधा है संभलना। तो अगर इस वक्त भी आप किसी भी ऐसी सिचुएशन से, किसी भी ऐसी बात से लड़खड़ा रहे हो, तो यही वो वक्त है जब लड़खड़ाते लड़खड़ाते आपको सोचना है कि ये बचने का और ये संभलने का लड़खड़ाना है, ना कि गिरने का। कई बार कहते हैं ना कि जीवन की उम्मीद जब किसी मूवी के सीन में देखते हैं तो बस एक हल्की सी लौ जल रही होती है, बहुत हल्की सी रोशनी आती है बहुत अंधेरे कमरे में, जबकि अंधेरे से भरा होता है वो कमरा, और देखते ही देखते कोशिशों के बावजूद एक वक्त बाद इंसान बाहर होता है बिल्कुल उजालों में। बस वैसे ही कई बार ज़िंदगी होती है, जब सब कुछ अंधेरे में आ जाए, कुछ भी समझ में ना आए, बढ़ ही ना पा रहे हो, तो बस एक उम्मीद की लौ। इसी बात को याद रखिएगा कि लड़खड़ाकर गिरना नहीं है, बल्कि लड़खड़ाकर संभलना है, तो शायद आपको वो लौ मिल जाए जो लौ आपको बाहर तक ले जाने वाली है। जी हाँ,
उम्मीद है कि आज का ये थॉट ऑफ द डे हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। हमेशा मतलब हमेशा रहने वाला है। बहरहाल, आपको आज का ये थॉट ऑफ द डे कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप बता सकते हैं कि आज की सुबह आपकी कैसी है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है ये बहुत कम लोग पूछते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे सच में जानना होता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए, सोच लीजिए, फील कर लीजिए, उसके बाद हम तक पहुँचा दीजिए जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं।

0: हाँ जी, तो फिलहाल आपने इस थॉट ऑफ द डे को सुना और उसके बाद ये खूबसूरत सा गाना आपके मॉर्निंग वाले शो में आपने सुना, आपने आरजे अदनान के संग। फिलहाल आप चूंकि हमको सुनते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, सो उसी एप्लीकेशन में चैट पर जो कुछ लिखते हैं वो हम तक आ जाता है। आइए देखते हैं कौन किन श्रोताओं ने चैट पर आकर के क्या कुछ लिखा है मैसेजेस जो हम तक पहुंच गया है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो गीता श्रीवास्तव जी का है। गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अरविंद है फ्रॉम मनकापुर। सुप्रभात आरजी अंदान सर, सुप्रभात। कर्म ही पूजा है और सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है, बेशक सही कहा। एंड इसके बाद जो है आशु जी लिखती हैं कि कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, जो गिर कर संभल जाए वही जीतता है बाजी। वाओ, थैंक यू सो मच टू यू आशु जी फ्रॉम लखनऊ। साथ ही आपने लिखा है वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच। हमारी गीता जी लिखती हैं, थॉट कैसा भी हो जिस खूबसूरती से आप समझाते हैं वही खूबसूरती दिन को खूबसूरत बना देती है। सच में जिस दिन गुड मॉर्निंग गोंडा नहीं सुनती हूँ तो लगता है कुछ मिस कर दिया और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी जैसे होता है। माय गॉड, अच्छा। सो जमहाई बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को इंडिकेट करता है, उसी तरह लड़खड़ाना संभलने का। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको ये टर्म, ये बात जो है वो बहुत इजीली समझ में आ गई। वैसे होता है शायद किसी को अंदाज समझ में आया तो किसी ने कुछ और देखा। एक ही शख्स को देखने का नज़रिया सबको अलग अलग होता है, बस हर कोई अपने मतलब से देखता है, लेकिन जब मतलब जुड़ करके खूबसूरती वाला हो तो शायद आपको बेहतर दिखता है ना। थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो लोग इस वक्त बने हुए हैं, जुड़े हैं 89.6 एफएम के मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में आरजे अदनान के संग। उन सभी लोगों का आरजे अदनान शुक्रिया अदा करते हैं। सो फिलहाल आज आपको ले चलेंगे आपकी फेवरेट गोंडा अपडेट्स की तरफ। जी हाँ, आज गोंडा अपडेट्स भी आप तक आने वाली है, लेकिन उससे पहले आइए इस खूबसूरत से म्यूज़िकल ब्रेक के सफ़र पर चलते हैं। वापस से आते हैं और आने के बाद आपको बताने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है शहर गोंडा में। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, तो भाई जिस तरह से हम जिस वादे के साथ गए थे कि आपको आने के बाद बताने वाले हैं सिटी अपडेट्स यानी गोंडा की अपडेट्स, तो चलिए भाई वक्त आ गया है ये बताने का कि फिलहाल आज सिटी अपडेट्स पे क्या क्या है जो आपके लिए है और आपके काप का हो सकता है। डेफिनेटली मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद यू मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

सो वैसे आपको बता दें कि भाई पहली अपडेट जो आ रही है वो घर में पानी भरने को लेकर के आ रही है। इटिया थोक के पूरे तिलक गांव में नाली की सफाई नहीं करने पर सफाई कर्मी को निलंबित भी कर दिया गया है। और गांव निवासी ने बताया कि 31 अगस्त को जनता दर्शन में डीएम से शिकायत की थी कि नाली बंद होने से गंदा पानी घर में भर रहा है और परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं। एडीओ पंचायत के निर्देश के बावजूद सफाई नहीं होने पर प्रभारी डीपीआरओ ने कार्रवाई की है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली अपडेट जो आ रही है, जी हाँ, वो दरअसल आ रही है बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जो फूक गया है और पेड़ टूट गया है खंभे पे, इसको लेकर के। सो आपको बता दें कि बारिश और आंधी से जो है वो कल यानी बृहस्पतिवार को बिजली जो व्यवस्था है वो चरमरा गई और दुबहा बाजार में बिजली गिरने से 63 केवीए ट्रांसफार्मर जो है फूक गया और रामापुर में पेड़ गिरने से 11,000 लाइन का खंभा टूट गया। इससे 50 से ज़्यादा गाँव की बिजली आपूर्ति जो है वो प्रभावित हुई है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। और अगली अपडेट जो है वो सरयू के जलस्तर को लेकर के है। फिलहाल सरयू का जलस्तर जो है वो घटा है और मांझा के जो क्षेत्र हैं वो मांझा के उसमें राहत है। सो नवाबगंज के मांझा क्षेत्र में जो है कल सुबह बाढ़ का पानी जो है वो घटने लगा। इससे ग्रामीणों को राहत मिली लेकिन नदी किनारे घड़ियाल मगरमच्छ दिखने की चर्चाओं ने लोगों में दहशत बना दी और वहाँ के रहने वालों का कहना है कि पानी से निकलकर जलीय जीव किनारे दिखाई दे रहे हैं। सो मगरमच्छ की मौजूदगी का भी वन विभाग से पुष्टि तो फिलहाल नहीं मिली है। अगली अपडेट है ऑफ कोर्स NFHS 6 के आंकड़ों को लेकर के। जी हाँ, सो दरअसल बाल विवाह को लेकर के बाल विवाह के प्रति जागरूकता और रोकथाम के कोशिशों के बीच ज़िले में स्थिति में सुधार आया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 की रिपोर्ट जो है 2023-24 की रिपोर्ट के हिसाब से 20 से 24 साल की 22% महिलाओं की शादी 18 साल से उम्र से पहले हुई है। 5 साल पहले यानी 2019-21 में यह आंकड़ा 25.4% था। यानी अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो बाल विवाह के जो आंकड़े हैं उसमें 3.4% की कमी आई है। हालांकि मौजूदा सिचुएशन में भी करीब हर 5वीं महिला की शादी कानूनी उम्र पूरी होने से पहले होने की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। सो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, एक चिंतनीय विषय कि अभी भी इतने यानी हर 5वीं महिला की शादी जो है उनकी लीगल एज से पहले कर दी जा रही है जो कि बाल विवाह के तहत आता है। और ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय एक कंसर्न की बात है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल साइबर ठगी को लेकर के आ रही है और ये पड़ोसी जनपद बलरामपुर से है। कोतवाली देहात क्षेत्र में जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बचत खाते से बिना जानकारी दिए 71,300 रुपये की जो अमाउंट था उसको निकाल करके ट्रांसफ़र किया गया। सो पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की, इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सो आपको बता दें कि विशेष शाखा बलरामपुर में तैनात सुशींद्र कुमार यादव ने बताया कि 8 अगस्त को उनके खाते से बिना किसी जानकारी के SMS, OTP, लिंक या फ़ोन कॉल के 2 बार में रकम निकाल ली गई। पहली बार में 50,000 और दूसरी बार में 21,300 रुपये का लेन देन हुआ। जानकारी होने पर इन्होंने 10 अगस्त को साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो दरअसल स्वच्छता के संकल्प को लेकर के आ रही है। आज सुबह 9 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता संकल्प लिया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे से ही परसपुर ब्लॉक संसाधन केंद्रों में टीचर्स के प्रशिक्षण को जो है वो शुरू किया जा रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता से जुड़ी भी एक अपडेट है जिसमें आज सुबह 9:30 बजे से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विद्या भारती की प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा सुबह 10 बजे से बहराइच रोड में मौजूद भारत पेट्रोलियम में भूकंप औद्योगिक रासायनिक दुर्घटना और अग्नि सुरक्षा विषय पर राज्य स्तरीय पूर्वाभ्यास का आयोजन भी किया जाना है। सो ये आज होने वाले इवेंट्स हैं जिसको हमने आपको बताया। एंड इसके साथ ही साथ हम बता दें कि फ़िलहाल एक स्पोर्ट्स से भी ऑफ कोर्स अपडेट आ रही है सामने।
और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वीं प्रांतीय खेल कूद प्रतियोगिता का जो है वो आगाज़ हो गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सो यस, भारतीय शिक्षा समिति के तत्वाधान में 37वीं प्रांतीय खेल कूद प्रतियोगिता का जो शुभारंभ है वो कल हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दमखम का प्रदर्शन किया और चीफ गेस्ट के रूप में खेलकूद प्रांतीय प्रमुख जगदीश सिंह और विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र रहे। सो ये रही कुछ अपडेट्स जो कि गोंडा से ही थी, जिसको लेकर के हमने आपको बता दिया कि भाई क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं जो हमने आप तक पहुंचाई। आई होप कि भाई इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके काम की भी अपडेट्स ज़रूर रही होंगी। सो चलिए फ़िलहाल अब चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और वापस से आते हैं। आने के बाद आपको काफ़ी नई चीज़ों से रूबरू कराने वाले हैं हर बार की तरह, जैसा कि आपको भाई इस शो में हर बार जैसी जैसी हम आते हैं वैसे वैसे हम आपको इतनी सारी चीज़ों से रूबरू कराते ही रहते हैं। सो आज भी वैसे ही हम बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके ऑफ कोर्स फ्राइडे मॉर्निंग स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो चलिए भाई, आपको ले चलते हैं किधर, कुछ नई चीज़ों को बताने के लिए। जैसा कि हम वादा करते हैं कि भाई जब आएंगे तो आपको जाहिर सी बात है कुछ नया ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए, और करते भी यही हैं। सो फिलहाल अब कुछ नई बातों को आपसे साझा करने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो, मॉर्निंग वाले टाइम में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Aajya Khan.

एक ऐसा एज ग्रुप जिसका कंसर्न, जिसकी चिंता हमेशा हमको रहती है, और वो है बुजुर्गों की। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स स्पेशली जब वो हमको इस ख्याल में आते हैं कि भाई जिन्होंने हमको चलना सच में सिखाया, जिन्होंने हमको बड़ा किया, पाला पोसा और आज इस लायक बनाया, एक दिन देखते देखते वही माँ बाप जो भारी भरकम सामान उठा करके सारा काम कर दिया करते थे, वो धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगते हैं और वो ताकत नहीं रह जाती और अपने आंखों के सामने हम उनको बुजुर्ग होता हुआ देखते हैं। तो बस उनके ख्याल के बारे में बहुत ज़्यादा कई बार हम सोचते रहते हैं कि भाई किस तरह से इनकी देखभाल किया जाए, कैसे इनके लिए बेहतर है। फिलहाल आपको हम बता दें कि बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए जो है केरलम ला रहा है नया एल्डर केयर कानून। जी हाँ, सो देखभाल से लेकर के फ्रॉड से सुरक्षा और जो भी ट्रेंड केयर गिवर्स हैं उनकी फैसिलिटी दी जाएगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या होने वाला है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देश में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आबादी वाले केरल का ये बड़ा फैसला है, जहाँ के सीनियर सिटीजन्स की जो सेफ्टी है और बेहतर देखभाल के लिए एक नया कानून लाने का प्रस्ताव रखा गया है। सो जैसे जैसे केरल की आबादी बुज़ुर्ग हो रही है, ये सवाल सामने आता है कि इसके बुज़ुर्गों की देखभाल आखिर कौन करेगा, उन्हें धोखाधड़ी से कौन बचाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर रहने पर कौन मदद करेगा। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ की राज्य सरकार है, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए इस नए एल्डर केयर कानून पर काम कर रही है। सो इस पहल का जो एम है, जो उद्देश्य है, बुज़ुर्गों को लंबे वक्त तक अपने परिचित परिवार और समुदाय के बीच यानी अपने ही घर में सुरक्षित माहौल में रहने में मदद करना है। इसके साथ ही प्रस्ताव ये है कि एल्डर केयर सेंटर्स, असिस्टेंट लिविंग फैसिलिटी, डे केयर होम, होम केयर एजेंसियों के लिए सख्त जो ऑफ कोर्स मानक हैं, निगरानी और जवाबदेही तय करने की बात है। सो इस डायरेक्शन में बड़ा कदम उठाते हुए केरल सरकार ने पहले ही साल 2025 में जो वहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक डेडिकेटेड आयोग यानी केरल स्टेट एल्डरली कमीशन का भी गठन किया था, जो बुज़ुर्गों के जो राइट हैं यानी उनके अधिकार और उनके कल्याण की देखरेख करता है। और अब इसी कड़ी में सरकार इस नए एल्डर केयर बिल को लाने जा रही है ताकि फैसिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। सो देखभाल की जो क्वालिटी है उसको पेशेवर बनाने के लिए प्रस्तावित केरलम जियोग्राफिक केयर सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो विशेष प्रशिक्षण प्रमाणन और बैकग्राउंड चेक के प्रशिक्षित केयर गिवर्स की एक केंद्रीय रजिस्ट्री तैयार करेगा। सो इसके अलावा इस कानून में डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपाय जो है, राज्य और ज़िला लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र है, गंभीर चिकित्सा या फिर देखभाल की जो ज़रूरत है उनको शारीरिक तौर पर उस बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही स्पेशल हेल्प करना शामिल है। सो देखभाल से आगे बढ़कर ये सिल्वर इकोनमी को भी बढ़ावा देगा, जिससे सीनियर फ्रेंडली हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्ट्स और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं और उद्यमिता के एरिया में नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे। सो ये प्रस्तावित बिल केरल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित विभाग के गठन के बाद में आया है। तो सच में मतलब केरल का ये बहुत ही अप्रिशिएबल इनिशिएटिव कह सकते हैं, क्योंकि जिस राज्य की आबादी अच्छी खासी बुज़ुर्ग हो रही है तो वहाँ पर हमारा जो ध्यान है वो इसी पर जाता है कि भाई वहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे, क्योंकि कोई भी यंग पर्सन अपनी सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली कर लेता है, लेकिन जब बात बुज़ुर्गों की आती है तो उनको सपोर्ट की, उनको सहारे की ज़रूरत होती ही होती है। अपने घर में हम कर लेते हैं लेकिन हम भी परेशान रहते हैं कि अगर हम जब बाहर जा रहे हैं और या हमारे पेरेंट्स या हमारे घर के बुज़ुर्ग बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह से उनकी सेफ्टी इंश्योर हो, किस तरह से उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए और सारी चीज़ों को उनके बेहतर रखा जाए। उसी तरह से फ़िलहाल चूँकि इस राज्य की जो अच्छी खासी आबादी है वो बुज़ुर्ग हो रही है, और इसी को देखते हुए जो है वो फ़िलहाल केरल ने ये पूरा विभाग बनाया, और ना सिर्फ विभाग बनाया बल्कि एक ये फ्रेमवर्क तैयार किया है
उन एल्डर्स के लिए, उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो केरल के रहने वाले हैं। एंड आई होप कि भाई बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट भी हो रहा होगा, और इम्प्लीमेंट होने के साथ ही साथ शायद बाकी राज्यों के लिए एक मैसेज भी होगा कि किस तरह से अलग अलग राज्य जो है अपनी प्रमुख जो चैलेंजेस हैं उसके अनुसार योजनाएं बनाएं, उसके अनुसार जो है वो अमेंडमेंट करें, उसके अनुसार कई सारे विभाग बनाएं या गठन करें जिससे कि उन सारी चीज़ों को हम टैकल कर पाए, उन चीज़ों को बेहतर कर पाए। एंड यस, फिलहाल केरल ने इस दिशा में कदम उठा लिया। फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो केरल कर रहा है उसको सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं और बता सकते हैं आरजे अदनान को मॉर्निंग वाले शो में। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके

0: एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
0: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me.
1: भाई आपने कभी इमेजिन किया है कि आप किसी ऐसे गांव जाएं जहां पर अलग ही दुनिया बिल्कुल लगे, या किसी भी ऐसी गली में किसी भी ऐसे गेट से आप एंट्री करें जहां से सब कुछ एकदम बदल जाए? मुश्किल है ना। अच्छा देखा है आपने, मे भी आप कहीं गए हो और आपने कुछ भी ऐसा देखा हो कि आप किसी गेट से एंट्री लिए और उसके बाद एकदम बाहरी दुनिया से अलग, या किसी गांव में गए और वो जगह एकदम से अलग महसूस हुई हो। फिलहाल अगर हम आपको बता दें कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा गांव जहां पर घर, स्कूल्स, इवन रास्ते, पुल सब बने हैं लेकिन बांस से, जी हाँ, यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि घर, स्कूल, रास्ते, पुल सब बने हैं वो भी बांस से। जी हाँ, तो आपको बता दें, हम बताने वाले हैं आपको भारत के पहले बंबू विलेज के बारे में, यानी बांस के गांव के बारे में। तो ये कहाँ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बांस की बनी हुई है, आइए इसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको हम बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।
2: Now you're listening, Good Morning Gonda, with your favorite, RJ Khan.

तो आपको बता दें, बाशुग्राम नाम के इस गांव में बांस की 14 से ज़्यादा प्रजातियों के साथ ही प्राकृतिक जड़ी बूटियां, वनस्पति, झाड़ियां और फूल के भी कई सारे पौधे हैं, जो इस छोटे से गांव को प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। सो बैम्बू गांव में एक योग केंद्र है, खेल का मैदान है, तालाब के साथ साथ बाँस के पुल, रास्ते, कॉटेज जैसे कई सारे पर्यावरण अनुकूल चीज़ें भी वहाँ पर बनाई गई है। सो बाम्बू आर्किटेक्ट और एक्सपर्ट्स मन्ना रॉय ने लगभग 9 एकड़ की ज़मीन पर इस गांव को तैयार किया है। जी हाँ, लगभग 9 एकड़ ज़मीन का ये एरिया है जिस पर बाम्बू आर्किटेक्ट एक्सपर्ट मन्ना रॉय ने लगभग 9 एकड़ की ज़मीन पर इस गांव को रेडी किया हुआ है। और इस गांव को बनाने के पीछे का अगर हम मकसद बताएं उनका, सो यहां अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज था इसका इस्तेमाल करके गांव को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कम इको टूरिज्म हब बदलना था, यानी इसको विश्व स्तरीय मेडिकम कम इको टूरिज्म का हब में बनाना था। सो पश्चिम त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा के पास ये गाँव अपनी हरियाली और बांस के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो त्रिपुरा के कतलामारा के बाशग्राम में बाश का अर्थ है मतलब बांस और ग्राम का अर्थ है गांव। सो जिसे बनाने में करीबन 60 लाख रुपए का खर्च आया था। सो बैम्बू से बनी एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको यहां देखने को मिलेगी, जिसे देखकर आपको भारतीय कला पर ज़रूर गर्व महसूस होने वाला है। जी हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। एंड ऑफ़ कोर्स जैसा कि इसको बनाया गया भाई इको टूरिज्म के रूप में, इसको हब को डेवलप करने का उसको किया भी गया। एंड शायद अब ऐसी जगह बन गया है जहां पर नेचर लवर्स या कुछ भी अलग या अनोखा देखने की चाह रखने वाले इस जगह विज़िट ज़रूर करना चाहेंगे। डेफिनेटली आप भी शायद सुनने के बाद आपका भी मन हो रहा हो कि हाँ चलते हैं ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले पश्चिम त्रिपुरा जाने का तो वहाँ पर बाशग्राम ज़रूर जाइएगा, क्योंकि काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। और वैसे भी ज़िंदगी में इसीलिए ट्रैवल करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि ट्रैवल करने से, नई जगह जाने से, नए लोगों से मिलने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको एक शऊर आता है, एक समझ आती है और नयापन मिलता है, जो कि शायद एक इंसानी जहन की खुराक भी होता है। और अगर कभी आपको भी ऐसा महसूस होता है कि भाई अब वो वक्त आ गया है कि बाहर निकल करके किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, तो आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। एंड आई होप कि आपको बाशग्राम के इस बैम्बू विलेज के बारे में, जो कि भारत का पहला बैम्बू विलेज है, इसके बारे में जान करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और ये जैसा कि बताया 9 एकड़ जो एरिया है उस पर बनाया गया है ये बैम्बू विलेज, और वहाँ की सड़कें, रास्ते, पुल, कॉटेज, घर, सब कुछ जो है वो बैम्बू से बनाया गया है, ताकि इसको मेडिकम कम इको टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जा सके। आई होप कि भाई ये जो बात हमने बताई आपके लिए काफ़ी नई भी रही है और आपको जानने के बाद काफ़ी आप एक्साइटेड भी हैं कि हाँ ऐसी जगह अगर जाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप वहाँ विज़िट करना चाहेंगे, आप ज़रूर जाना चाहेंगे। वैसे कब जा रहे हैं बताएंगे आप?

0: मुबारक हो दोस्त, आज तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है।
1: मगर क्यों?
2: थैंक यू, लेकिन मेरी शादी तो कल है ना।
0: इसीलिए तो आज बोला है।

अयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: फिलहाल उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है जिनको डायबिटीज़ होता है। जी हाँ, सो डायबिटीज़ से जो घाव नहीं बढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ी खोज हुई है। फिलहाल IIT दिल्ली ने बनाया है ख़ास स्प्रे और चूहों पर यह टेस्ट जो है वो सफल हो चुका है। जी हाँ, सो डायबिटिक जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई उनके घाव जो है वो नहीं भरते, इसीलिए बड़ा ही ज़्यादा उनको बचाना पड़ता है, काफ़ी सेफ़ रखना पड़ता है किसी भी चीज़ के कटने पिटने से। सो फिलहाल इन घावों को भरने के लिए एक ख़ास तरह का स्प्रे रेडी हुआ है जो कि चूहों पर सफल हुआ है, IIT दिल्ली ने बनाया। आइए इसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो आपको बता दें कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लंबे वक्त से ना भरने वाले घावों के ट्रीटमेंट में आईआईटी दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं उन्हें एक नई उम्मीद जगाई है। सो फिलहाल रिसर्चर्स ने एक ऐसा स्प्रे करने योग्य हाइड्रोजेल डेवलप किया है जिसे सीधे घाव पर लगाया जा सकता है। सो चूहों पर ये जो टेस्ट है करीब 6 दिन में घाव भर के बेहतर रिजल्ट मिले और हाइड्रोजेल ने नई कोशिकाओं कोलेजन और जो भी हमारे ब्लड वेसल्स है इसके बनने में मदद की। इससे क्या हुआ कि जीवाणुरोधी जो प्रभाव था उसके साथ सूजन और ऑक्सीडेटिव नुकसान को कम करने की क्षमता भी देखी गई। फिलहाल हाइड्रोजेल के एल्जिनेट और फाइब्रिन से तैयार किया गया है जिसमें कैल्शियम जिंक और कॉपर के कण भी शामिल है और इसका भारतीय पेटेंट जो है वो अप्लाई किया जा चुका है और अब इंसानी परीक्षण की तैयारी करने की ऑफकोर्स बातें जो है वो सामने आ रही है। सो डायबिटीज़ में ख़राब ब्लड सर्कुलेशन और धीमी टिश्यू रिपेयर की वजह से घाव लंबे वक्त तक जो है बने रह सकते हैं। हालांकि ये स्प्रे अभी इंसानों के ऊपर परीक्षण करने के चरण में इसलिए मरीजों में इसके इस्तेमाल की प्रभावशीलता और सुरक्षित साबित होना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल चूहों तक जो परीक्षण हुआ वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा और अगर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल वैसा ही वर्क किया जैसा सोचकर बनाया गया है जैसा चूहों पर इसने वर्क किया है तो ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आईआईटी दिल्ली की, जिसमें ऐसे शुगर पेशेंट्स जिनको चोट लग जाती है जिनके घाव जल्दी नहीं भर रहे होते उनके लिए ये स्प्रे काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बड़ी ही बेहतर बात है और हो सकता हो कि हमारे आपके घर में भी कोई ऐसा पेशेंट हो जो शुगर पेशेंट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में भी कई लोग डायबिटिक हो जाते हैं या हो सकता है आप खुद भी सुन रहे हो। तो अगर आपके घर में कोई है तो ज़रूर से ज़रूर उनका ख़ास ख्याल रखिए क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के लिए चोट खाना बहुत ज़्यादा रिस्क पर ले जाता है, तो इसलिए चोट से बचना और बचाना ज़रूरी होता है और कहीं ना कहीं इस बात का ख़ास ख्याल होना चाहिए कि भाई सुरक्षा जो है वो हमें हमेशा पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए क्योंकि बिना सुरक्षा के हम चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं और बिना सुरक्षा के हम कैसे चीज़ों में सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि भाई अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है तो आप भी ख़ास ख्याल रखने वाले हैं घर में उनका, क्योंकि ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी होती है। और अगर ये मार्केट में आने वाले टाइम में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर काफ़ी इजी होने वाला है क्योंकि फिर जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है हर किसी के पास फिर ये स्प्रे होना चाहिए ताकि अगर कहीं अचानक से उनको कोई ज़ख्म हो जाता है कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो है बेहतर तरीके से अपना वर्क स्टार्ट कर दे और कहीं ना कहीं इसका अच्छा जो रिज़ल्ट है वो हम सब लोगों के सामने आ जाए। आई होप कि ये बात आपको समझ में ज़रूर आई होगी और आप भी इस बात से इत्मीनान में होंगे कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ भी आ रहा है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ऐसी चीज़ों का तो हम ऑफ कोर्स वेलकम करते हैं कि ऐसी चीज़ें तो आती ही रहनी चाहिए ताकि हम जो हैं दिन ब दिन अपनी लाइफस्टाइल को अपने लोगों को सेफ करते रहें बेहतर करते रहें और यही हमारी प्रतिज्ञा भी है यही हमारी कामना भी है कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें सेफ रहें यानी सुरक्षित रहें।

0: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: फिलहाल आपको अब बताने वाले हैं वैकेंसीज़ के बारे में। जी हाँ, वैकेंसीज़ आ चुकी है। सो अभी क्या है कि इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है और रेलवे में पैरामेडिकल के 560 जो है वो वैकेंसीज़ हैं। सो 560 ये वैकेंसीज़ पैरामेडिकल के हैं। सो आइए इस बारे में पूरी पूरी हम आपको जानकारी देते हैं कि आखिर ये कैसे बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन हो रहा है और रेलवे के पैरामेडिकल के 560 पदों पर भर्ती किस तरह होनी है, कितने पैसे लगने हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ के 560 पदों पर अपनी वैकेंसीज निकाली है। 18 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आपकी एज 18-14 के बिटवीन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ये जो सिलेक्शन है वो बिना इंटरव्यू के होगा। सो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बेस पर होने वाला है। और बात आती है कि भाई ये तो समझ गए कि एज का क्या क्राइटेरिया है, और साथ ही साथ बिना इंटरव्यू सिलेक्शन किस तरह से होने वाला। अब बात आती है कितनी फ़ीस लगेगी इसको अप्लाई करने में। तो आपको बता दें एससी एसटी पूर्व सैनिक दिव्यांग महिला ट्रांसजेंडर समेत कुछ कैटेगरीज़ के लिए फ़ीस जो है वो 250 रुपये हैं यानी 250 रुपये, जबकि बाकी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये इसकी फ़ीस लगने वाली है। इसके अलावा अब बात आती है कि भाई ठीक है लेकिन इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यस, अप्लाई करने के लिए आपको rrbapply.gov.in पर जाना होगा। जी हाँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply, ये एक में ही रहने वाला है rrbapply यानी rrbapply.gov.in। सो ये आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर आपको विज़िट करना है। यहीं पर आप जा करके ख़ुद को रजिस्टर्ड करेंगे और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करके फ़ीस सबमिट करेंगे और फॉर्म का जो है प्रिंट आउट है वो आप क्लियरली ले लेंगे। सो आपको बता दें 40 साल तक एज में जो है वो छूट दी गई है। एस सी एस टी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग जो उम्मीदवार हैं उनको 10 साल एज में छूट मिलने वाली है। सो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ में आना चाहते हैं रेलवे के। तो ऑफकोर्स 18 से 40 एज के उम्मीदवारों के लिए फ़िलहाल ये है, और हमने बता दिया कि rrbapply.gov.in पर जा कर के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना है। और साथ ही साथ आपको इससे जुड़ी अगर कुछ और भी जानकारियाँ चाहिए होगी तो वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर मिल जाने वाली है। सो आई होप कि भाई ये अपडेट्स जो है आपके काफ़ी ज़्यादा काम की रही होगी, और शायद मे बी आप भी अप्लाई करना चाहें या आप भी रेलवे में आना चाहें तो ऑफकोर्स ये एक ज़रिया आपके लिए हो सकता है जो कि अभी हमने आपको बता दिया है। आई होप कि ये जानकारी आप उन लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाने वाले हैं जो ऑफकोर्स इसके लिए एलिजिबल हैं और जो करना चाहते हैं। सो ज़ाहिर है उन तक ये बात

वैसे अक्सर हम कुछ बियॉन्ड द इमेजिनेशन जा करके सोचते हैं और सोचते हैं काश को अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। शायद अगर आप कश्मीर गए हो और आप श्रीनगर के डल झील में आपने शिकारा की सवारी की हो तो बहुत कुछ ख्याल आया होगा, या फिर पहाड़ों में जाने के बाद, घर में बैठे रहने के बाद, मतलब कहीं पर भी कोई भी थॉट आ सकता है। फ़िलहाल एक ऐसी बात जिसको सुन करके आप भी हैरान होने वाले हैं। दरअसल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपको डल झील पर अब खूबसूरत सी मूवीज़ भी दिखाई जाएंगी तो थोड़ा सा आपको अलग लगेगा ना जानकर। ऑफकोर्स फ़िलहाल ऐसा ही हो रहा है, यानी कश्मीर में श्रीनगर की खूबसूरत जो डल झील है अब सिर्फ शिकारा सवारी के लिए नहीं बल्कि अपने अनोखे फ्लोटिंग सिनेमा को भी लेकर के इस टाइम आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सो फिलहाल आपको हम बता दें कि ये दरअसल 9 सितंबर डल झील के पानी पर बने इस सिनेमा की तस्वीरें सामने आई और पानी के बीच सिनेमा का ये अनोखा नज़ारा लोगों का ध्यान भी खींच रहा है। सो डल झील की खूबसूरती के बीच फ्लोटिंग सिनेमा यहाँ के आकर्षण का एक नया रंग जोड़ता भी नज़र आ रहा है। तो ये बात सच है कि भाई अगर हम ये इमेजिन करें कि शिकारा जैसी जगह पर, डल झील जैसी जगह पर अगर सिनेमा का लुत्फ़ मिले तो फिर क्या ही बात होगी। और देखिए ना फिर क्या ही बात है। तो मुझे लगता है ये बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा, और अगर आप जाइएगा कभी शिकारा की सवारी करने डल झील श्रीनगर तो इस सिनेमा का लुत्फ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग तरह का अनुभव देने वाला है कि तैरता हुआ सिनेमा देखना अपने आप में एक बहुत ही अलग सा अनुभव देने वाला है, यानी आपको अनुभव जो है वो बहुत अलग मिलने वाला है। तो जब कभी मौका मिले तो इसके लिए ज़रूर रेडी रहिएगा। वैसे आपके मन में भी क्या और भी कोई ऐसे थॉट हैं जो अभी तक नहीं हुआ है और आप सोचते हैं काश को ऐसा हो जाए जैसा कि डल झील पर ये फ्लोटिंग सिनेमा बन गया तैरता हुआ, अगर आपके भी मन में जहन में ऐसी कई बातें तो आप भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल इस डल झील के फ्लोटिंग सिनेमा के बारे में जानकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
5: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: हाँ जी, तो आज कई सारी बातों को हमने ऑफ कोर्स इस मॉर्निंग वाले शो यानी फ्राइडे स्पेशल मॉर्निंग शो में आपसे साझा किया और आप तक पहुंचाया, जिसमें हमने जॉब की अपडेट्स से लेकर के बैम्बू विलेज से हो करके हेल्थ के बारे में और कुछ बेहतर होने के बारे में, रिसर्च के बारे में सब कुछ आप तक पहुँचा दिया। आई होप कि भाई आपको आज फ्राइडे स्पेशल शो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि आज के थॉट से हमारी शुरुआत हुई और मुझे लगता है आज का थॉट सिर्फ एक थॉट ना होकर के हमारा साथी सा बन गया, बड़ा ही प्यारा सा थॉट जिसको हम शायद बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, फील करते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच उन थॉट पर अपनी प्रतिक्रियाओं को देने के लिए, और साथ ही साथ कुछ आपके मैसेजेस भी हैं तो चलिए पढ़ते हैं। फिलहाल प्रीति जी बहराइच से हैं, वेरी लवली मॉर्निंग सर जी, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। इसके अलावा धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवास विकास आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। आर के श्रीवास्तव जी गोंडा उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं, आपका भी आर के जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड यस ऑफ कोर्स, आप जो भी सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज का फ्राइडे स्पेशल शो आपको कैसा लगा? आज का ये स्पेशल शो आपके लिए कैसा रहा हमको कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, और फिलहाल बने रहिए अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर अपकमिंग शोज़ के लिए। ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
8: अभी रायपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा किरण दीदी?
9: समता मैम, आधे घंटे अभी और लगेंगे। और जिम्मी, ये लो आम का पना पियो, और देखो अब मुंह मत फुलाओ।
10: जिम्मी तुम गुस्सा हो कि इतनी गर्मी में तुम्हें गांव ले जा रहे हैं, तो लौटते समय देखना चहक रही होगी।
8: पर आज गांव की गूंज की टीम एक पर्यावरण संरक्षक शिव कुमार मौर्य के गांव रायपुर जा रही है।
9: आज हम लोगों की कोशिश है कि लोगों को समझाएंगे कि कैसे इतनी गर्मी से बचे और धरती के टेम्परेचर को कम करने में हम सब सहयोग कैसे करें।
10: चलो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग सुना देते हैं, जो 5 जून को तुमने भी गाया था ना पर्यावरण दिवस पर, तब तो सबसे ज्यादा तुमने ही लोगों को शपथ दिलवाई थी।

0: यह मत सोचिए गाना सुनाकर आप लोगों ने मना लिया, हम तो आप सबसे अभी भी गुस्सा हैं। एसी चलाकर आराम से रहते, कितना आराम था।
1: सब में हमारी प्यारी जिमी को लू लग जाएगी, सनबर्न हो जाएगा, और ये सारा टाइम रूम में ही रहती है, उसी में ही खाना खाती है, एक मिनट के लिए भी रूम से बाहर नहीं निकलती है।
2: इसकी मम्मी बता रही थी कि ये किसी को रूम में आने ही नहीं देती है, कहती है कि जितनी बार दरवाजा खुलता है उतनी जल्दी गर्मी अंदर आ जाती है।
3: ये तो बहुत गलत बात है, क्या 3 महीने गर्मी पड़ेगी तो ऐसी ही पड़ी रहोगी, इससे तो बीमार पड़ जाओगी।
0: मैं भी ऊब जाती हूँ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, आप लोग बताएं क्या करें। किरण दी का गाना सासू लड़ेगी तो पीसन बिठाए या पूरे दिन सुनते रहते हैं।
4: अरे सासू लड़

0: जिमी, हम लोग गांव की गूंज की एक टीम है और हम ही लोग भागेंगे तो लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि हम अपने गांव से कैसे जुड़े।
1: गांव की गूंज की कोशिश है कि लोगों को गांव से जोड़ने की। शहर में टेम्परेचर कितना था? 47। और जब हम गांव पहुंचेंगे तब वहां पहुंच के देखेंगे कि गांव का टेम्परेचर कितना है।
2: गांव में पेड़, मिट्टी के घर, वैसे कई घर पक्के बन गए हैं, पर एक घर अभी भी है जो खपड़ैल का है। वहां पर देखना, तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी।
0: ये तो हमें पता है, ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और जब भी शरीर को ढकना चाहिए सूती कपड़े से ढकें तो लू नहीं लगती है। देखो सब में कितनी समझदार है हमारी जिमी, हम सब के लिए कॉटन के मोजे और लंबे वाले ग्लव्स भी लाई है।
1: सिर पर जो गमछा रखते हैं उसे गीला करके रखें, स्पेशली आदमी लोग गर्मियों में।
2: खूब सारा पानी पिए, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी और तरबूज खरबूज खूब खाएं। कच्चा प्याज लू से बचाता है, कहते हैं ऐसा।
0: देखो फ्लाई ओवर बन रहा है, इस कंस्ट्रक्शन के कारण ये एरिया कितना गर्म है। इस रास्ते में बहुत बड़े पेड़ थे, सब कट गए। फिर हम क्यों रोते रहते हैं कि गर्मी बढ़ रही है? हम लोग तो इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं।

0: इस बात पर हम सब जरूर ध्यान देंगे कि जितने पेड़ कट रहे हैं अब हम उससे दो गुना ज्यादा पेड़ लगाएंगे।
1: केवल नाम का वृक्षारोपण नहीं करेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, बल्कि उसका तब तक ध्यान रखेंगे जब तक वह पेड़ बड़ा न हो जाए।
2: रायपुर आ गया, कितनी सुंदर बगिया है इनकी। ये तो सेब और पपीता है, यहाँ तो नहीं होता, फिर कैसे?
3: यह शिव कुमार मौर्य के पिताजी का शौक था, अलग अलग जगह के पेड़ सब्जी फल लाकर लगाते थे।
0: नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये किसान भी है और साइंटिस्ट भी है।
1: अरे अरे देखो, मनीराम को बेहोश हो गया, इसे हीट स्ट्रोक पड़ा है, इसको छाया में ले चलो।
2: पहले ठंडे पानी से पूरे शरीर को पोछो, कपड़े ढीले कर दो और तुम पंखा झलो, और कोई भाई जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कर दो।
3: ठीक है, अब उसके घर वाले कहते हैं दारू बहुत पीता है, जो लोग दारू बहुत पीते हैं उनको हार्ट स्ट्रोक बहुत पड़ता है। किरण दी जरा समझा दो इसे प्लीज।

0: चलो चलो तुम लोगों को कुछ दिखाते हैं। देखो गौरैया कितने समय बाद दिख रही है।
1: इन लोगों ने छोटे छोटे घोंसले टांगे हैं जिसमें ये गौरैया घर बनाती है। पीने के पानी के कितने सारे मिट्टी के बर्तन हैं।
2: हम लोग प्लास्टिक के परिंदे टांगते हैं ये नहीं सोचते कि पानी कितना गर्म हो जाता होगा और इतनी गर्मी में इतना गर्म पानी चिड़िया कैसे पिएगी।
3: धन है आप लोग और आपकी अच्छी सोच।
0: मनी राम की वाइफ मायके जा रही है। किरण दीदी आप ही समझाइए तभी ये मानेगी। अरे यही तो इन पक्षियों की देखभाल करती है।
2: अरे फिर ये सब तो गर्मी में मर जाएंगी।
3: अभी देखना किरण दीदी का लोकगीत सुनकर सब झगड़े खत्म हो जाएंगे।

0: चलो इनका झगड़ा तो खत्म हुआ, चलो पीपल की छाया में बैठते हैं और बेला लस्सी लेकर आई है उसे पीते हैं।
1: देखो देखो जिमी, यहाँ उतनी गर्मी नहीं लग रही है ना, और हवाएं भी गर्म नहीं है। शहरों में तो तेजी से पेड़ कट रहे हैं, गाड़ी बढ़ रही है और एक घर में कई एसी हो गए हैं।
2: कहीं फोर लेन सड़क तो कहीं अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े मॉल, फ्लाईओवर। हम लोग खुश होते हैं देखकर कि हमारा शहर कितना मॉडर्न हो गया है।
3: हाँ सही कह रही हो,

0: गर्मी बढ़ाने का कारण हम मनुष्य ही तो हैं।
1: पानी की परेशानी इतनी बढ़ती जा रही है, ये लोग बता रहे थे कि अब 100 फीट से नीचे पानी मिलता है।
2: गांव में तो शुद्ध पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जानवर बहुत परेशान होते हैं।
0: जितना पानी पीना हो उतना ही गिलास में लो, वेस्ट न करें, पानी दूषित न करें। घर पर जानवर और पक्षियों के लिए पानी के डिब्बे रखें और हम सबको मिलकर यह जरूर करना चाहिए।

0: श्वेता तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है? क्या हुआ?
1: मेरा मोबाइल खराब हो गया है और ऐसा लग रहा है कि दुनिया ही रुक गई है।
2: किरण दीदी हो जाए वही वाला गाना, मेरा मोबाइल बिगड़ गयो।

0: श्वेता, तुम तो जानती हो मोबाइल से कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल खराब हो गया तो इतना दुखी मत हो।
1: सब जानती हूँ, पर फिर भी मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई है कि बता नहीं सकते।
2: चलो चलकर मेडिकल प्लांट की बागवानी देखो, मन बदल जाएगा।
3: ये देखो एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, काली हल्दी और ये देखो ये रहा नीम।
0: यहाँ गांव में अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसका भी इलाज है। शुगर है तो उसके लिए कौन सी पत्ती खानी चाहिए उसको भी बताया जाता है। हर मर्ज का इलाज है, और जानवरों को कुछ हो जाता है उसकी तो अलग ही बात है।
1: लेडीज के चेहरे पर देखो कितना ग्लो है, ये ताजी सब्जियाँ, ताजे फल और ताजी हवाओं का असर है।
3: थैंक्स सभी को जबरदस्ती चिलचिलाती धूप में लाने के लिए और इतना सुखद अनुभव कराने के लिए। अब थैंक्स बोल दिया है तो एक गाना तो बनता है।
2: बिल्कुल जिम्मी,

0: बादल छाने लगे हैं, लगता है बरसात होगी। रायपुर में मौर्या जी के परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: पर्यावरण की रक्षा करेंगे, खूब पेड़ लगाएंगे और उनकी सेवा करेंगे,
2: पानी बचाएंगे और प्लास्टिक के प्रयोग की जगह पर मिट्टी के बर्तन और कांच के स्टील के बर्तन का यूज करेंगे।
3: देखना फिर हमारे आंगन में गौरैया आएगी, पेड़ पर तोता और कोयल बोलेंगे, कव्वों की काय काय सुनाई देगी।
0: किरण दी, सब लोग गौरी के घर पर खपरेल के घर के बरामदे में ढोलक के साथ इंतजार कर रहे हैं।
1: देखो कितने सुंदर प्लास्टिक के पन्नी से हाथ के पंखे बनाए हैं।
3: मालती, हमारी तरह से ढोलक बजाना। कजरी भाभी और काकी, आपको नाचना भी पड़ेगा।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बनकर चलती है, अंधेरे रास्ते में ये उजाला बनकर चलती है। किताबें हर कदम पर इंसान की सूरत बदलती है। दिलों में जो छुपा हो वो राज पल में बता देगी। सच्ची दोस्ती का फर्ज ये उम्र भर निभाती है। अंधेरे रास्तों में ये रोशनी बनकर चलती है। किताबें हर कदम पर इंसान की सीरत बदलती हैं। दिल में जो छुपा हो वो पल भर में बता देंगी। सच्ची दोस्ती का ये फ़र्ज उम्र भर निभाती है। वेलकम वेलकम वेलकम और वॉर्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का तहे दिल से करती हूं स्वागत स्वागत स्वागत आपके अपने वाले प्रोग्राम में। जो भी हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत है। और आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे यानी कि हमारा जो डे होता है वो होता है कुछ ऐसी बातों को करने का जो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए हैं, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं हो गई हैं। कहते हैं ना कि जहाँ चीज़ें बढ़ी हैं यानी कि टेक्निक का यूज़ बढ़ा है, उसने हमारे लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में, कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में, कुछ ऐसी बुक्स के बारे में जो कि आपको हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि ऐप और यूट्यूब चैनल से पढ़ने में क्या कुछ आपको फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप बुक्स से पढ़ते हैं। देखिए, दोनों का यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बस दोनों के अपने अपने फ़ायदे बता रहे हैं, और फिर ये स्टूडेंट्स के लिए और यूथ्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी हम सभी यूज़ करते हैं और बुक्स का भी। इसलिए दोनों के बारे में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप तक मोटिवेशन पहुंचाने का, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम हम करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मस्ती के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और साथ ही साथ मोटिवेशन भी, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए करते हैं शुरुआत बहुत ही प्यारी सी, और आज सबसे पहले करते हैं कुछ बातें बुक्स को लेकर के। लेकिन इससे पहले कि मैं बुक्स को लेकर के बातें आपसे करना शुरू करूँ, मैं आप सभी से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप सभी को याद होगा ना कि जब हम छोटे थे यानी कि जब स्कूलिंग होती थी, तो हमारे पास न्यू बुक्स जब आती थी, जब सिलेबस शुरू होता था, तो हम सभी कहीं ना कहीं अपनी उन बुक्स को बिल्कुल ही तुरंत तुरंत से पढ़ करके, और मतलब ये एक्साइटमेंट होती थी ना कि बुक कब हमारे हाथ में आएगी और कब हम उसे पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं होता है कि हमें ये लगता है कि कितनी जल्दी हमारे हाथ में बुक्स आ जाएँ और कितनी जल्दी हम उन्हें पढ़ें। ये होता था कि सारी जो भी हिंदी की बुक होती थी, तो जितनी भी पोएट्रीज होती थी, कहानियाँ होती थी, हम उन्हें तुरंत तुरंत से पढ़ लिया करते थे। सो कहीं ना कहीं वही किताबों का एक जो कहते नहीं है कि मौसम है, किताबों से हमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लगाव हो जाता है। लेकिन आजकल की आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टडी है यानी कि जो हमारी पढ़ाई है वो स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट स्टडी कहीं ना कहीं हम करते हैं जो ऐप से होती हैं, यूट्यूब चैनल से होती हैं, क्लासेस ऑनलाइन भी होती हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उन्हें लेना पड़ता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में। तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैं जिस यूट्यूब चैनल की बात करने वाली हूँ वो है स्टडी आईक्यू एजुकेशन। अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन चैनल है। यहाँ करंट अफेयर्स और वर्निंग टॉपिक्स का आपको गहरा एक पूरा, मतलब अच्छे से इसका विश्लेषण मिल जाता है। स्टडी आईक्यू एजुकेशन बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। इस पर जा कर के आप नोट्स और जो भी रैंडम क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। अब आती है बात कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बात करें, तो दूसरे जिस चैनल के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है खान एकेडमी। खान एकेडमी एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, जहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स साइंस मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म है। यहाँ हर मुश्किल टॉपिक को बेहद आसान और एनिमेटेड तरीके से आपको समझाया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अब आते हैं दूसरी, तो दूसरे जिस मैं YouTube चैनल की बात करने वाली हूँ
वो है अंकुर वारिको। अंकुर वारिको एक ऐसा चैनल है जो सीधे तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई नहीं कराते, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स और हमेशा स्पीड में कैसे एक्टिव रिकॉल करना है, ये सारी ही चीज़ें सिखाने में मदद करते हैं, जिसका नाम है अंकुर वारिको। यह बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप सभी इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। अब आते हैं तीसरे पे, जो कि फिज़िक्स के लिए हम बात करते हैं। फिज़िक्स के लिए कहीं ना कहीं जिन भी स्टूडेंट्स ने फिज़िक्स लिया हुआ है या जो भी फिज़िक्स में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जेई, नीट या नेशनल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अन अकेडमी बहुत ही अच्छा चैनल है। इन चैनल पे आप लाइव क्लासेस और स्टडी बैचेस भी ले सकते हैं, यहाँ आपको मटेरियल आसानी से मिल जाता है। इन सभी एक और यूट्यूब चैनल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि है शुक्ला स्टडी पॉइंट। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। आप अगर ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेबस की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट के, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट इज़ द बेस्ट। आप उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ आपको बहुत ही अच्छे कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ें, मटेरियल, क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये थे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिनकी की मदद से आपको पढ़ाई में मदद मिल सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी और पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कुछ ऐप्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि बेस्ट प्रिपरेशन ऐप्स हैं। लेकिन उससे पहले महेंद्र जी आ गए हैं, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आरजे अंशिका मैम जी। नमस्ते आपको भी महेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप, अपना हालचाल ज़रूर बताइए। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐप्स को लेकर कर। अभी तक हमने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल पर आप किन किन चैनलों पर पढ़ाई कर सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे ऐप हैं जो हमें पढ़ाई में मदद करते हैं। सबसे पहले मैं जिस ऐप के बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है फॉरेस्ट फोकस ऐप। ये ऐप पढ़ाई के दौरान फ़ोन की लत छुड़ाने के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उन्हें फ़ोन जो है वो ओवर यूज़ करने की हैबिट पड़ जाती है। ये ऐप फोकस ऐप इसीलिए है क्योंकि ये आपकी इस आदत को छुड़ाने में आपकी मदद करता है और उसके लिए बेस्ट है। जब आप फोकस मोड ऑन करते हैं तो ऐप एक डिजिटल पेड़, ऐप में क्या होता है कि एक डिजिटल पेड़ उगता है। अगर आप बीच में फ़ोन को छुएंगे तो पेड़ सूख जाएगा। ये बच्चों को गेमिंग के तरीके से फोकस करना सिखाता है, ताकि वो पूरा फोकस जो है वो उनके पढ़ाई पर ही रहे, उनके पढ़ाई से ना हटे, इसलिए इसे फॉरेस्ट और फोकस ऐप दोनों कहा जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे ऐप की, जो कि है टेक्स्ट बुक अदा 247। ये बहुत ही अच्छा ऐप है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SC ST, बैंक, रेलवे के लिए मॉक टेस्ट देने में, पिछले सालों के सॉल्विंग पेपर देने में और डेली क्विज के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है। इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि SC ST, बैंकिंग, रेलवे, इन सब की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट चाहते हैं, पिछले साल के आप पेपर्स चाहते हैं, तो आप इस ऐप को ले सकते हैं। और दूसरा हमारा है InShot ऐप। अगर InShot ऐप की बात करूं तो एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है। ये ऐप बड़ी खबरों को सिर्फ शॉर्ट शब्दों में शॉर्ट समरी देता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपका समय भी बच जाता है। इसलिए आप इस ऐप का भी यूज़ कर सकते हैं। बढ़िया हूँ मैम जी, आप कैसे हो? महेंद्र जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और जानकर के बहुत अच्छा लगा कि आप भी बढ़िया हैं। तो आइए लिसनर्स, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के साथ चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। आऊँगी इस सॉन्ग के उस पार फिर से कुछ बातों को लेकर के आपसे शेयर करने के लिए। तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए चलिए, अब तक हमने बात की कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन कौन सी ऐप्स हैं जो कि हमारी हेल्प करती हैं पढ़ाई में, यानी कि कॉलेज, अगर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी। आइए अब बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, आप डिसिप्लिन रहें और ठीक से कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी सबसे मेन होती है, और इसी स्ट्रैटेजी को मजबूत करने का और हमें डिसिप्लिन करने का काम करती है हमारी बुक्स। तो आज हम आपको कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताएंगे जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी, मतलब उन स्टूडेंट्स को भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें भी जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, उन्हें ये सिखाती है कि किस तरीके से डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण वो बड़े से बड़े एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जिस बुक की मैं बात करने वाली हूँ और आपको इस बुक के बारे में बताने वाली हूँ, वो है एटॉमिक हैबिट्स, जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी है। आइए बताते हैं कि इसमें है क्या। हर स्टूडेंट को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये सिखाती है कि कैसे रोज़ छोटी छोटी अच्छी आदतें, जैसे रोज़ सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, लंबे समय में एक बड़ा रिजल्ट आपको दे सकता है। यानी कि ये बुक आपको ये सिखाती है कि कहीं ना कहीं रोज़ हमें छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर लेना चाहिए। जैसे अगर आप रोज़ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आपके सिलेबस को कवर करता हुआ चला जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत बाद में नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी, और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उन्हें भी, एटॉमिक हैबिट्स जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी है ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन ज़रूर रखना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरी बुक की, जो कि है डीप वर्क। और डीप वर्क है, और इसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। आज के टाइम में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिए, और कहीं ना कहीं वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर कॉलेज स्टूडेंट हों, उन सभी के लिए सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की जो वजह है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फ़ोन ही होता है। कि हम अगर पढ़ने भी बैठे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ अब इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं भी है तो हम फ़ोन उठा लेते हैं कि चलाओ थोड़ी देर चला लेंगे और फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे। कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ़ोन की वजह से। तो ये आपके डिस्ट्रैक्शन को कम करता है और आपके फोकस को बढ़ाता है, और ये सिखाता है कि कैसे पढ़ाई की जाए। इसमें ये, इस बुक में मेन आपको यही सिखाया गया है कि अगर आपको किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है अपनी पढ़ाई में, तो आप किस तरीके से उस डिस्ट्रैक्शन को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं। इसलिए हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड जिस बुक के बारे में मैं बताने वाली हूँ, वो है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री को समझने के लिए है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे UPSC, PSC, SSC के लिए इसे एक बाइबल की तरह माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री के, वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं। आइए अब बात करते हैं फोर्थ बुक की, जिसे लिखा है RS अग्रवाल ने। RS अग्रवाल की यूनिकेटिव एटीट्यूड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूनिकेटिव एटीट्यूड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, RS अग्रवाल की बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें स्टूडेंट्स को किसी भी, जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है कि कहीं ना कहीं मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सम्स आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सॉल्व करने में हर स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बुक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे हों, दोनों के लिए है कि जिनकी भी मैथ्स वीक है उन्हें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, और आपके मैथ्स को बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं अच्छा कर देती है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स, जैसे होता है ना कि हम किसी ना किसी सब्जेक्ट में वीक होते ही हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप मैथ्स में वीक हैं और आप अपनी मैथ्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस बुक को यूज़
कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। इन सभी बुक्स के बारे में आज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये तो सोचते हैं कि हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, मुझे मेरी एग्ज़ाम क्रैक करनी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये होता है कि हम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेना है। लेकिन सही चीज़ें, अगर सही चीज़ें, कहते हैं ना कि जानकारी जिस भी स्रोत से आपको मिल रही है, अगर आपका वो स्रोत ही सही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं सही नहीं होगी। इसलिए हमेशा हमें ऑथेंटिक वे से ही इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए आज मैंने आपको कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐप्स और बुक्स के बारे में बताया है जो कि कहीं ना कहीं वाकई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आइए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है

आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और फिर एक बार वापस आ गई हूं आप सभी से बातें करने के लिए। तो अभी तक हमने आपको बुक्स, यूट्यूब चैनल, ऐप, इन सभी के बारे में बताया कि किस तरीके से ये सभी आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इनके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप YouTube चैनल और ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं जो आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले, जितने भी टफ जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनका बहुत ही आसान विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं मिल जाता है हमें YouTube से, क्योंकि जो टॉपिक किताब में पढ़कर समझ नहीं आता है वो YouTube पे उसका 3D एनिमेशन और वीडियो देखकर आसानी से मिनटों में आप उसे समझ सकते हैं, चाहे वो साइंस की थ्योरी हो या मैथ की थ्योरी हो। अब आते हैं कि जो रियल टाइम के अपडेट्स होते हैं और करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रोज़ बदलती दुनिया की खबरें बहुत ज़रूरी हैं। किताबें हर दिन नहीं छप सकती हैं, लेकिन ऐप और यूट्यूब चैनल जो होते हैं वो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर तुरंत मिल जाते हैं वहाँ पर। इसलिए कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल और ऐप से पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है यूट्यूब चैनल और ऐप से पढ़ाई करने का। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि टाइम मैनेजमेंट और मॉक टेस्ट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि डिजिटल ऐप में जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो तुरंत ऑल इंडिया रैंक या टाइम एनालिसिस मिल जाता है, जिससे कि आपका जो एक ये डर होता है ना पेपर देने का, वो ख़त्म होता है। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये है कि बहुत ही कंफर्टेबल कहीं ना कहीं रहता है, असेंबल रहता है कि आप कहीं भी दूर दराज गाँव में बैठे स्टूडेंट्स हैं, अगर बड़े शहरों की फ़ीस जो है वो बहुत महंगी है और आप सोचते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करें, तो आप फ्री यूट्यूब चैनल और ऐप की मदद से देश की सबसे महंगे और बेस्ट टीचर्स से पढ़ सकते हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल और ऐप दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं, ताकि हम उनसे पढ़ाई कर सकें। और ये हैं कुछ फ़ायदे जो यूट्यूब चैनल और ऐप से पढ़ाई करने के होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि बुक्स से पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। बुक्स से पढ़ने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जो कि सबसे पहला फ़ायदा होता है कि हमारा फोकस बढ़ता है। जब आप स्क्रीन को छोड़ करके अपनी बुक से पढ़ते हैं तो इससे आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लगातार रील्स देखने से हमारा जो फोकस कम होता है वो बुक पढ़ने से बढ़ता है, इसलिए बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी जो बुक्स होती हैं ना, और जैसे हम कहते हैं ना कि घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके पास जो भी अनुभव का खजाना होता है वो हमारे बहुत काम आता है, ठीक उसी तरीके से बुक भी हमारे लिए अनुभव का खजाना होती है। क्योंकि एक राइटर जो अपनी बुक लिखता है ना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब 20-30 साल की सारी रिसर्च और सारे अनुभवों को समेट कर उस बुक को लिखता है। तो कहीं ना कहीं चंद घंटों में पढ़कर हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, कुछ बेहतर बन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि बुक जो होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाती है, यानी कि आपकी याद रखने की जो क्षमता होती है बुक उसे बढ़ाती है। किताबों में पढ़ा हुआ डेटा दिमाग में गहरा जा कर के बैठ जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से पूछा जाता है तो हमारे काम जो आती है वो बुक की डीप स्टडी बहुत ज़्यादा काम आती है। और चौथा और सबसे बड़ी बात होती है कि बुक्स जो होती है ना, वो हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स से भी हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। ऐप्स से भी पढ़ें आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ें और बुक्स से भी पढ़ें, पर दोनों में संतुलन बनाएं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए लिसनर्स, इन्हीं बातों के साथ चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हमारा इंतज़ार कर रहा है, इसे सुन लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। बस यूँ गए और यूँ आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला मोटिवेटिंग वाला, जो कि आपको देता है ढेर सारा मोटिवेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन के साथ में हम आपको बहुत सारी मस्ती वाली बातें भी बताते हैं, यानी कि फुल ऑन एंजॉय भी करते हैं। तो आ चुका है आपका अपना शो ज्ञान असली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी तक हमने बात की पढ़ाई को लेकर के कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल से हो सकती है, ऐप से हो सकती है, और साथ ही साथ में बुक्स से भी हो सकती हैं। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं जो एक संतुलन बिठाना वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए बताते हैं कि आप कैसे इन दोनों में संतुलन बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूट्यूब चैनल और ऐप्स की, तो जब आप कोई मुश्किल टॉपिक है उसे शुरू कर रहे हैं, तो उसे समझने के लिए यूट्यूब चैनल और एनिमेशन का सहारा लीजिए। चीज़ें विजुअल जब आप देखेंगे तो वो आपको जल्दी समझ आ जाएंगी, और फिर वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक को आप किताब में ज़रूर पढ़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने यूट्यूब चैनल और ऐप पे पढ़ ही लिया है, देख ही लिया है, मतलब में दिख गया है, विजुअल हो गया है, तो फिर हम बुक्स से क्यों पढ़ें? क्योंकि अगर आपने जो यूट्यूब चैनल में देखा है उसे आप बुक में पढ़ेंगे उस टॉपिक को, तो किताब से ज़रूर पढ़ेंगे, तो उससे धीरे धीरे वो आपकी गहराई से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारी फोकस बढ़ती है और भाषा पे पकड़ भी हमारी मजबूत होती है। अब आती है दूसरे उस पर कि आपको 40 और 60 का रेशियो बना लेना है, यानी कि 60% जो आपको पढ़ना है वो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, वो आपको किताबों से, नोट्स से, प्रैक्टिस करके आपको पढ़ना है। और इस टाइम पे आपको अपना फ़ोन, लैपटॉप पूरी तरीके से साइलेंट करके दूसरे कमरे में आपको छोड़ देना है, और आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और 40% आपको जो आपकी पढ़ाई करनी है वो डिजिटल लर्निंग टाइम। डिजिटल लर्निंग टाइम का मतलब होता है आप सुबह या दोपहर का टाइम लीजिए, घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, और उसमें आप यूट्यूब चैनल और ऐप वीडियो देख करके पढ़ें और उसे समझें, और जो 40% आपने पढ़ा और समझा है उसे अपने सेल्फ स्टडी टाइम में, यानी कि उस 60% में आप उसको बुक्स में भी पढ़ें, उसका प्रैक्टिस करें, और उस टाइम पर नोट्स लिखें, और उस टाइम पर फ़ोन वगैरह अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि सीक्वेंस जो है इसका वो बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस ये है कि आपका स्टेप वन जो है वो आपको समझना है, यानी यूट्यूब चैनल और ऐप से आपको टॉपिक को वीडियो देख करके बेसिक उसकी समझ लेनी है। अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप जो कि है पढ़ना। उसके तुरंत बाद आपको बुक्स खोलनी है और उस टॉपिक को ध्यान से पढ़कर ज़रूरी पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप जो कि है लिखना। वीडियो और किताब की वीडियो जो आपने देखा और बुक है उसकी हेल्प से आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि है प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट हमारी है कि ऐप है या बुक है, जिस भी टॉपिक पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उन टॉपिक्स पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ऐप में और यूट्यूब चैनल्स में और बुक्स में कहीं ना कहीं

0: में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
1: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा प्रोग्राम ज्ञान स्थली लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट पे जो कि है हमारी स्टोरी। स्टोरी आज है आदित्य की। आदित्य जो था वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपना ज़्यादातर समय स्मार्टफोन की स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करने में और ऑनलाइन गेम खेलने में बिताता था। उसे लगता था कि उसकी सारी जो वो पूरी दुनिया है और उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब फ़ोन में ही है। उसे किताबें पढ़ना बोरिंग लगता था। वो कहता था मुझे किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन एक दिन आदित्य के कॉलेज में एक सेमिनार हुआ और इस सेमिनार में जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने बच्चों से बात करते हुए कहा कि स्मार्टफोन आपको वह दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन एक किताब आपको वो सोचने की आज़ादी देती है जो आप खुद चाहते हैं। ये बात आदित्य के दिल को छू गई। उसने उसी शाम अपने दादाजी से कहा कि मैं लाइब्रेरी जाना शुरू करूँगा। जब वो लाइब्रेरी गया तो उसने एक मोटिवेशनल किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे कुछ दिन पढ़ते पढ़ते उसे वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई और फिर वो बुक्स पढ़ने लगा। शुरू में उसे थोड़ा सा लगता था कि हाँ नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने पढ़ना सीख लिया। शुरुआत में उसका ध्यान भटका, लेकिन कुछ ही दिनों में किताबों के पन्नों का जादू उस पर भी चल गया और बुक्स पढ़ने की से उसका जो फोकस था वो बढ़ा और उसे ध्यान लगाने में जो प्रॉब्लम होती थी वो कम हो गई। उसने सही फैसले लेना, सही चीज़ों को समझना और लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करना भी सीखा। जहां उसके दोस्त रील्स के 15-15 सेकंड के शॉर्ट अटेंशन स्नैप में उलझे थे, वहीं आदित्य का दिमाग हमेशा गहरे सोच में रहता था और वो नई नई स्ट्रेटजी सोचा करता था। उसने महसूस किया कि किताबें जो होती हैं, बुक्स जो होती हैं, वो सिर्फ कागज़ के कुछ चंद पन्ने नहीं होते, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उन लोगों का अनुभव होता है जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना कि सोना बनाने के लिए आपको खुद को आग में झोंकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो जो अनुभव उन्होंने उस तरीके से अपने आप को आग में झोंक कर पाया है वो चंद घंटों में हमें मिल जाता है अगर हम बुक्स को पढ़ते हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ऐप और बाकी चीज़ों से पढ़ाई ना करें, लेकिन बुक्स पढ़ने की आदत को बिल्कुल ही ख़त्म ना करें और बिल्कुल फ़ोन और ऐप पर डिपेंड ना हो जाएं। आदित्य ने अपनी पढ़ाई को शुरू किया और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बुक्स से पढ़ता था, उसने दोनों में बैलेंस बनाया। वो बुक से भी पढ़ता था और ऐप और वीडियोस से भी पढ़ता था और धीरे धीरे उसने अपनी पूरे कॉलेज में सबसे बड़ी रैंक हासिल की। और वो यही कहते हैं कि उसकी ये जो सफलता है वो मिली जुली हुई सफलता है, यानी कि उसने दोनों प्लेटफॉर्म से पढ़कर ये सुविधा पाई है, लेकिन बुक्स जो उसने पढ़ी उन्होंने कहीं ना कहीं उसके सोचने के नज़रिए को खोला और उसे चीज़ों को समझने में बेहतर मदद की, जिससे कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी। इसलिए आदित्य भी ये कहता है कि स्टूडेंट्स को बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए और टेक्नोलॉजी तो हमारी हेल्प करती ही है, बस हमें दोनों में कहीं ना कहीं संतुलन बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज की कुछ बातें लिसनर्स, कुछ टॉपिक्स जो कि आई होप स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए हों और हमारे सुनने वाले सभी लिसनर्स को भी बहुत अच्छे लगे हों। तो आज के लिए हमारा जो टाइम है आपसे बाय-बाय करने का वो बस कुछ ही देर में, कुछ मिनट में होने ही वाला है और हो चुका है। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए। अब मैं आपसे मिलूंगी सुन सहेली में, तब तक के लिए बाय बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है, एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
3: साथियों, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई के नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। आज का हमारा एपिसोड काफी खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे पोषण की और उसका संबंध हमारे पर्यावरण से कैसे है, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। आपको तो पता है हमारे देश में पोषण माह काफी बड़े स्तर पर मनाया जाता है, और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस बार यानी 2025 का पोषण माह कुछ और भी खास है, क्योंकि इसका नारा है पोषण और समुदाय की ताकत से बेहतर भविष्य का निर्माण। आप सोच रहे होंगे पोषण माह और जलवायु परिवर्तन का आपस में क्या रिश्ता है, यही जानने के लिए हमारे साथ हैं गांव की समझदार ज्ञानी टीकन भाभी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते भाभी।
4: नमस्ते दीदी, मुझे एक बार फिर से अपने रेडियो पर बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने जरूरी विषय पर बातें करने जा रहे हैं।
3: जी
4: देखिए, पोषण और जलवायु परिवर्तन दोनों का सीधा सीधा संबंध है, और अगर हम समझ लें तो गांव समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है।
3: टीकन भाभी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पोषण माह क्या है और इसे मनाने की जरूरत क्यों पड़ती है?
4: एक तो आप एक ही सवाल बहुत बार पूछती हैं। सेहतिया जी ने बताया था, पर फिर भी चलो बता देती हूँ। जिन श्रोताओं ने पहले के एपिसोड में नहीं सुना वो अब जान ले।
3: यही तो बात है मेरा बार बार पूछने का।
4: जी, पोषण माह असल में एक जन आंदोलन है जो पूरे भारत में हर साल चलाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को सही खान पान, बच्चों और माताओं की सेहत और पोषण की अहमियत के बारे में जागरूक करना। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। गर्भवती महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। किशोरियां ताकतवर नहीं बन पा रही हैं। और ये सब सिर्फ पेट भरने से नहीं, बल्कि शरीर को जरूरी विटामिन, प्रोटीन और खनिज भी चाहिए। इसलिए सरकार, आंगनवाड़ी, पंचायत, स्कूल और हम सब मिलकर ये महीना खास तौर पर मनाते हैं, ताकि हर घर तक सही संदेश पहुंचे।
3: वाह, यानी ये सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हम सबका अभियान है।
4: जी बिल्कुल दीदी, पोषण हर किसी की जिम्मेदारी है।
3: इस बार मैंने सुना है पोषण माह में एक नया अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, क्या ये सच है? और ये है क्या?
4: ये सच है और ये एक बहुत ही सुंदर पहल है। सोचिए, हर कोई अपने माँ को सम्मान देता है, लेकिन अब हम एक कदम और बढ़े। इस अभियान में हर इंसान से कहा गया है कि अपनी माँ या धरती माँ के नाम पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए।
3: पर भाभी, इससे पोषण में क्या फर्क पड़ेगा?
4: दीदी देखिए, अब ये पेड़ कोई भी हो सकता है, जैसे फल वाला पेड़, जैसे आम, अमरूद, नींबू या फिर कोई भी देसी पेड़ जो हमारे पर्यावरण को मजबूत रखता है। जब हम पेड़ लगाते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं, पहला पोषण सुरक्षा, दूसरा जलवायु सुरक्षा। पोषण सुरक्षा में फलदार पेड़ों से बच्चों और बड़ों को सालों तक पोषण मिलता रहेगा। वहीं जलवायु सुरक्षा में पेड़ धरती को ठंडा रखते हैं, पानी रोकते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं माँ के नाम पेड़, तो ये भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। लोग सिर्फ लगाते ही नहीं बल्कि उसे पालते पोसते भी हैं, जैसे अपनी संतान, उसकी केयर करते हैं।
3: वाह भाभी, कितना प्यारा विचार है। एक तरफ माँ का सम्मान और दूसरी तरफ धरती माँ की रक्षा। टीकन भाभी, आपने शुरुआत में कहा था कि पोषण और जलवायु का गहरा रिश्ता है, जरा आसान भाषा में समझाएंगी?
4: देखिए दीदी, मौसम बदल रहा है, कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, बारिश का समय गड़बड़ा सा गया है, इससे खेतों की पैदावार घट रही है। जब फसल कम होगी तो दाल सब्जी सब महंगी होंगी, गरीब परिवार खरीद नहीं पाएंगे, बच्चे हरी सब्जियों, दाल, दूध आदि से वंचित रह जाएंगे, यानी सीधे सीधे कुपोषण बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम पोषण समझदारी से खेती करें, जैसे मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, सब्जियां और देसी फल उगाएं, तो हमें अच्छा खाना भी मिलेगा और खेत भी मौसम की मार सह पाएंगे। यानी अगर जलवायु बदलती है तो पोषण प्रभावित होता है, और अगर पोषण मजबूत हो तो जलवायु संकट का सामना आसानी से हो जाता है।
3: मतलब दोनों का रिश्ता गाड़ी के दो पहियों जैसा है।
4: जी बिल्कुल दीदी।
3: अक्सर पोषण और बच्चों की देखभाल को औरतों का काम माना जाता है, लेकिन इस बार पोषण माह में पुरुषों की भूमिका पर भी जोर है, ऐसा क्यों है आखिर?
4: देखिए, पोषण सिर्फ औरतों का काम नहीं, बच्चे पूरे परिवार के होते हैं। अगर पुरुष जिम्मेदारी लेंगे तो परिवार और भी मजबूत होगा। जब पुरुष खुलेआम कहते हैं पोषण सबका काम है, तो समाज में बड़ा संदेश जाता है। धीरे धीरे ये धारणा टूटेगी कि खाना पिलाना ये सिर्फ औरतों का काम नहीं।
3: सही है, अगर पति, पिता, बेटे सभी साथ आ जाएं तो घर का बोझा आधा हो जाएगा। तो भाभी, गांव में लोग क्या क्या छोटे छोटे कदम उठाएं जिससे पोषण भी सुधरे और जलवायु भी सुरक्षित रहे?
4: बहुत सारे काम कर सकते हैं।
3: जैसे?
4: जैसे किचन गार्डन, जैसे हर घर के कोने में थोड़ा बहुत सब्जी का बाग लगाना चाहिए। मोटे अनाज की खेती, मिसाल के तौर पर बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज सस्ते भी है और सेहतमंद भी।
3: जी एकदम सही कहा आपने। वाह, कितनी बढ़िया बातें बताई आपने। अब जाते जाते श्रोताओं को एक संदेश दीजिए। वाह भाभी, फलदार पेड़ भी तो लगा सकते हैं, जैसे अमरूद, आम, नींबू, सहजन, बच्चों को विटामिन मिलेगा इससे।
4: हाँ हाँ, इसके साथ ही भोजन में विविधता, सिर्फ चावल आलू पर निर्भर ना रहें, बल्कि दाल, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडा सब शामिल करें अपने भोजन में, और भोजन की बर्बादी को रोकता है, जितनी जरूरत हो उतना ही पकाएं। और गांव स्तर पर जागरूकता, यानी कि पंचायत, महिला समूह, युवक मंडल मिलकर नाटक, गीत, रैली, इन सभी से संदेश फैलाएं।
3: वाह, कितनी बढ़िया बातें बताई आपने। अब जाते जाते श्रोताओं को एक संदेश दीजिए।
4: बिल्कुल, मेरे भाई बहनों, याद रखिए, अच्छा पोषण सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है। जलवायु बदल रही है, लेकिन अगर हम मिलकर पौधे लगाएंगे, बाग बगीचे बनाएंगे और देसी अनाज अपनाएंगे, तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। एक पेड़ माँ के नाम सिर्फ अभियान नहीं बल्कि माँ और धरती को धन्यवाद देने का सबसे सुंदर तरीका है। तो आओ इस पोषण माह पर हम सब संकल्प लें, हर घर पोषण युक्त, हर गांव हरा भरा।
3: अब आगे हम बात करेंगे हमारे देश की कई सरकारी योजनाओं की, जो कैसे हमारे पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में साथ साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में भी लड़ रही हैं। तो भाभी सबसे पहले बताइए कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना या NAPCC क्या है और ये पोषण से कैसे जुड़ी है।
4: बिल्कुल, NAPCC भारत सरकार की एक योजना है जो 2008 में शुरू हुई थी। इसका मकसद है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना। इसके तहत एक खास मिशन है, सतत कृषि मिशन, जो किसानों को ऐसे तरीके सिखाता है जिससे वे खेती जलवायु के हिसाब से कर सकें, जैसे सूखा सहने वाली फसलें लगाना। जब खेती सुरक्षित होगी तो हमें भोजन की कमी नहीं होगी और हमारे पोषण पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
3: यानी ये योजना सीधे सीधे हमारे खाने पीने और पौष्टिकता पर असर डालती है।
4: हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर खेती प्रभावित होती है तो खाना कम और महंगा हो जाता है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
3: ठीक है, अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बता दीजिए।
4: ये योजना खाने की सुरक्षा को जलवायु संकट में मजबूत बनाने के लिए है। इसमें खेती में फसलों में विविधता और जोखिम से निपटने के उपाय शामिल हैं। इस तरह से लोग हमेशा पोषण युक्त भोजन पा सके, खासकर तब जब मौसम बिगड़ता है।
3: अच्छा भाभी, अब ये बताइए कि क्या हमारे खान पान का संबंध हमारे वातावरण और पर्यावरण से भी है?
4: बिल्कुल, बहुत गहरा असर पड़ता है। ईट राइट इंडिया कैंपेन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ये हमें सही

0: स्वच्छ और टिकाऊ भोजन खाने की सलाह देता है। साथ ही भोजन बर्बाद न करने और लोकल भोजन को प्राथमिकता देने की सीख देता है, जिससे पर्यावरण भी बचता है।
1: अंत में नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की भूमिका क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं।
0: ये फंड राज्यों को उनके स्थानीय स्तर पर जलवायु के अनुकूल परियोजनाएं करने में मदद करता है, जैसे बेहतर खेती के तरीके जो हमारे पोषण को सुरक्षित रखें। इससे जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वे भी आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा भाभी, भारत बहुसांस्कृतिक देश है, पर यहाँ बहुत सारे मिथक प्रचलित हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन और पोषण को लेकर। सबसे पहला मिथक है जो मैंने सुना है कि जलवायु परिवर्तन तो दूर की बात है, कि जलवायु परिवर्तन तो दूर की या भविष्य की समस्या है। हमारे श्रोताओं को बताएं, क्या ऐसा सच में है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी भूल है। भारत के कई हिस्सों में आज भी हम गर्मी में बढ़ते तापमान, आसमान बारिश और बाढ़ जैसी घटनाएं देख रहे हैं। ये सीधे फसलों की पैदावार और हमारे पोषण पर असर डालती है। तो जलवायु परिवर्तन कोई दूर की बात नहीं, आज चल रही समस्या है।
1: बहुत सही। अब अगला मिथक ये है भाभी कि हमारे पारंपरिक भोजन और खेती जलवायु से प्रभावित नहीं होते, इसमें कितनी सच्चाई है?
0: हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि पुराने तरीके की खेती सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई ये है कि बढ़ते तापमान और जलवायु की अनियमितता से गेहूं, लेकिन सच्चाई ये है कि बढ़ते तापमान और जलवायु की अनियमितता से गेहूं, चावल और दालों की पैदावार कम हो रही है और उनके पोषण स्तर भी गिर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां संसाधन कम है। ये बहुत बड़ी चुनौती है।
1: ठीक है, फिर क्या अधिकांश लोग ये भी गलत सोचते हैं कि अधिक पैदावार का मतलब बेहतर पोषण होता है?
0: यही तो माया जाल है। आज की खेती में ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के कारण फसलें बड़ी तो होती हैं,
1: जी,
0: लेकिन उनकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। नतीजा ये है कि हम ज्यादा खाने के बावजूद पोषण से वंचित हैं।
1: फिर भी कुछ लोगों की ये धारणा है कि मांसाहारी भोजन ही पौष्टिक होता है, क्या ये सच है?
0: बिल्कुल नहीं। भारत में कुछ लोग यही मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि विविध और संतुलित शाकाहारी भोजन भी पूरी तरह से स्वस्थ और पर्यावरण के लिए बेहतर होता है। फल, सब्जियां और स्थानीय फसलें हमें अच्छा पोषण देती हैं।
1: जलवायु परिवर्तन और पोषण के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होने का वादा भी सुनने को मिलता है।
0: बिल्कुल गलत। जलवायु परिवर्तन से खाद्यान्न की पैदावार कम होती है, दाम बढ़ते हैं और पोषक तत्वों की कमी भी बढ़ती है। ये सब मिलकर खाद्य सुरक्षा और पोषण संकट की जड़ बन गए हैं।
1: अच्छा भाभी, जैविक और पारंपरिक खेती को लेकर भी कई गलतफहमियां हैं।
0: हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि जैविक खेती से उपज कम होती है, इसलिए वो टिकाऊ नहीं है। लेकिन ये तरीका मिट्टी बचाता है, पर्यावरण को सुरक्षित करता है और पौष्टिकता बढ़ाने में भी मददगार है। टिकाऊ खेती ही हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार की कुंजी है।
1: भाभी, आपकी बातें सुनकर साफ हो गया कि जलवायु और पोषण एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं, और जो मिथक है वे हमें सही दिशा में सोचने से रोकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, हमें सही जानकारी फैलानी होगी ताकि हम मिलकर टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य बना सकें।
1: जी टीकन देवी जी, आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें समझ आ गया कि कैसे हमारे पोषण और जलवायु परिवर्तन की लड़ाई एक दूसरे से जुड़ी है और सरकार इसके लिए कितनी मेहनत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी। दोस्तों, आज हमने जाना कि पोषण और जलवायु का रिश्ता कितना गहरा है, और ये भी कि अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम बेहतर भविष्य छोड़ सकते हैं। तो चलिए, इस बार पोषण माह में आप भी एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए। आज की चर्चा यही खत्म होती है, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पर जाने से पहले अपने सेहत की शपथ लेकर जाइए।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
3: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
2: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
3: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
2: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं।

0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता, साथ में आज अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आज समता
6: और मैं हूँ आज अंशिका।
5: तो भाई फटाफट अभी मुंह धुल करके कह सकते हैं कि पानी वानी पी करके, क्योंकि ये मौसम कुछ ऐसा है, ये मौसम का जादू है मितवा, क्योंकि ना दिल कहीं पे लागे है मितवा, क्योंकि कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही हो, प्रॉपर भूख लग रही हो, टुकड़ों में भूख लग रही हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको प्यार हो गया।
6: ऐसा होता है मैम?
5: हो रहा है क्या?
6: हाँ हो रहा है मुझे।
5: तो तुम्हें नहीं होगा?
6: मुझे नहीं होगा
5: ना। ओके, ठीक है। तो अगर ये है तो ये है मौसम का तगाजा, क्योंकि अंशिका को मौसम का तगाजा कह देते हैं और हमें भी मौसम का ही तगाजा है, क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है आपको तो एग्जैक्टली मौसम ने ही ली है करवट और इतनी ज्यादा वाली भयंकर। और पता है अंशिका, आजकल ना मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, कुछ तुमसे पूछती हूँ ना, जब तुम उसका आंसर देती हो सही से तो मुझे सांत्वना हो जाती है। जैसे मुझे बताओ, तुम्हें रात में तुम जैसे लेटती हो, तुम्हें प्रॉपर फटाफट नींद आ जाती है?
6: थोड़ा टाइम लगता है,
5: टाइम लगता है, पर अच्छी वाली नींद आती है, जैसे लगता है कि बस गए।
6: अच्छी वाली आती है, बट थोड़ा सा टाइम लगता
5: है ना, अच्छी नींद आती है और सुबह उठने का मन नहीं करता है।
6: हाँ, ये
5: हाल देख रही हो मेरा?
6: ये आपने सही कहा,
5: सुबह उठने का मन नहीं करता है,
6: मन करता है थोड़ा सा और,
5: थोड़ी सी और, थोड़ी थोड़ी देर के कारण से कहीं देर ना हो जाए वाला सीन हो जाता है और फिर हम लोग भागम भागी करते हैं, कॉलेज जाना होता है, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और आपसे मिलने की जल्दी होती है। तो भाई ऐसा कुछ शेड्यूल आजकल क्या आप लोगों के साथ है कि आप लोग को बहुत आलस आ रहा है, नींद आ रही है? अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे मैसेज करें ताकि मुझे लगे कि हाँ, मतलब ये जो सिम्टम्स है केवल मेरे साथ नहीं है, भूख भी कम लग रही है।
6: बिल्कुल सही कहा मैम ने कि भूख भी कम लग रही है।
5: ऐसा हो रहा है?
6: हाँ हो रहा है, क्योंकि आज मैंने सुबह बहुत मतलब थोड़ा सा नाश्ता,
5: सही सही बताना,
6: सही सही बता रही हूँ मैम, कसम से आज सुबह इतने ही थोड़ा सा नाश्ता किया है मैंने।
5: इतना सा क्या नाश्ता होता है?
6: खाली इतने से पोहे खाए
5: बस, उसके बाद कुछ नहीं,
6: कुछ नहीं, वरना तो फिर अभी तक मेरा मतलब ऐसा नहीं,
5: प्रॉपर मील, आधा प्रॉपर मील तो हम लोग कर ही चुकते हैं,
6: कर ही चुकते हैं। बट इसे अजीब सा हो रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना लिसनर्स की रेस्टलेस सा ऐसे फील होता है, कहीं मन नहीं लगता है।
5: हाँ,
6: तो कुछ वैसे सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ हो रही है या सभी के साथ हो रहा है।
5: मुझे लग रहा है कि मौसम ऐसा है अंशिका, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है और इनफैक्ट सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि मौसम थोड़ा सा है ना वो आलस वाला है, मतलब कहीं अगर बैठो तो लग रहा है कि
6: बैठे ही रह जाते तो अच्छा था,
5: बैठे ही रह जाते तो ज्यादा अच्छा था, है ना। अब सुनो, नींद का नाम मत लेना, बहुत ज्यादा जमाई आ रही है इसलिए नींद का नाम मत लो और पानी पियेंगे। एंड आपसे मिलने आ गई हैं आपकी दोनों आरजेस, यानी आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
1: सुन सहेली
5: आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो आइए फटाफट विश कर देते हैं इस मौसम को जिसमें आ रही है सबको नींद और आलस, तो इस प्यारी सी दोपहर में एक साथ विश कर देते हैं
6: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और हम आ गए हैं, भले कितनी भी हमें नींद आए, कितनी भी आलस से हमें महसूस हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास आना है और आपको इन्फॉर्मेशन तो हमें देनी ही देनी है। और आज का जो हमारा दिन है वो हमारे सुन सहेली में बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि आज है फ्राइडे। फ्राइडे यानी कि आपके घरों में हम पहुंचाते हैं रिश्तों की महक, और आज रिश्तों की महक में कुछ एक सेंसिटिव सा टॉपिक भी है हमारे पास,
5: ओके,
6: जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले रुक कर लेते हैं आपकी अपनी आरजे

0: दादा जी का, क्योंकि पोएट्री है हमारे पास
1: एग्जैक्टली. पोएट्री जो है वो मैं आपको बताऊंगी, एंड देन एक बात और बताऊंगी कि आज हमारा ब्यूटीफुल सा डे है, एंड ब्यूटीफुल से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं दो चीजों में, यानी कि रिश्तों की महक के साथ में और अपनी खूबसूरती की महक के साथ में.
0: बिल्कुल. तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारी सी पोयम, लेकिन उससे पहले कुछ लाइंस हो जाए. और वो ये है, आ रही
1: नींद से परे देना.
0: आ रही है नींद छा रही है खुमारी, आ रही है नींद छा रही है खुमारी, पर इस दिल का क्या करें, दिल में तो हो रही है उनसे मिलने की बेकरारी. कब जाएंगे कब मिलेंगे कैसी होगी बात, दिल यही सोच रहा है. तो चलिए आइए करते हैं इन्हीं प्यारी सी फीलिंग्स के साथ इरशाद इरशाद इरशाद, क्योंकि अब आप सुनने वाले हैं प्यारी सी कविता आपकी अपनी आरजे समता के साथ.
1: तो सिचुएशन पहले हमसे पूछ लेती हो.
0: हाँ?
1: आज का क्या मैटर है, क्या है नहीं.
0: बिल्कुल.
1: उस पे तुम पोयम बना देती हो, उस पे तुम रास्ता बना देती हो. अब कल से सिचुएशन जो पर्सनल चीजों की है ना, मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगी मैं, क्योंकि उसके बाद से क्या होता है लिसनर्स मैं बताऊं कि ये ना फटाक से दिमाग लगा के उस पे रास्ता देने वाली एक पोयम बना लेती है. खैर, अच्छी लगी मुझे बहुत दिल से,
0: थैंक यू.
1: तो चले शुरू करें.
0: जी.
1: रिश्तों के धागे होते हैं अनमोल. इनका नहीं कोई दुनिया में मोल, दुख सुख में जो सदा निभाते साथ, वही थामते हैं मुश्किलों में हाथ. प्यार और विश्वास की ये मजबूत बुनियाद, रखती है दिलों में एक दूसरे की याद. बिना कहे जो समझ ले दिल की बात, वही बदलते हैं अंधेरी रातों को प्रभात. कभी खट्टी मीठी तकरार होती है इनमें, पर छिपी अपार प्यार की बहार होती है इनमें. दूरियों से भी जो कभी कम न हो पाए, सच्चे रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाएं. दिखावे की दुनिया से इन्हें बचाकर रखना, अपनों के दिलों में हमेशा आदर रखना. रिश्ते ही तो हैं जो जीवन को सजाते हैं, इंसान को यही सही मायने में जीना सिखाते हैं.
0: बहुत ही प्यारी सी पोयम और बहुत ही प्यारी सी लाइंस जो कि अभी मैम ने सुनाई आपको, बहुत ही प्यारी. आइए अब चलते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, जो कि आज हमारा रिश्तों का दिन है, तो आज हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी कुछ उसी से जुड़ा हुआ है. किसी से प्यार करो तो शर्त मत रखो, जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं टिका करते. यहाँ शर्तों का मतलब ये है कि आजकल जब हम रिश्ते जोड़ते हैं तो मुझे तो लगता है कि हम पूरी विश लिस्ट लेकर के चलते हैं.
1: हाँ.
0: ऐसा होता है ना मैम, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और फिर जब कुछ टाइम बाद चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो रियलिटी होती है, तो हम शर्त रखना शुरू कर देते हैं. तुम ऐसे रहोगे तो मेरे साथ रहना, नहीं तो मेरे साथ मत रहो. तुम वैसे करोगे तो मेरे साथ रहना. तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम ऐसे हो गए हो, बदल गए हो या बदल गई हो, जो भी है. रिश्तों में कभी शर्त नहीं होती, रिश्तों में सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है. देखिए, जब हम किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ते हैं, चाहे वो मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर हो या कोई भी हो, तो हम जहाँ उसकी बहुत अच्छी आदतों को, बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ कुछ बुरी आदतों को भी एक्सेप्ट करते हैं
1: जी.
0: कुछ ऐसी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करते हैं जो बुरी हैं, लेकिन हम उनको एक्सेप्टेंस देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ इंसान अच्छा है वहाँ अगर थोड़ी सी उसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे. लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आजकल रिश्तों में एक्सेप्टेंस पावर बहुत कम हो गई है. हमें सब सपनों की दुनिया जैसा चाहिए, सब परफेक्ट होना चाहिए, और जब परफेक्शन ढूंढते हैं तो रिश्ते नहीं मिलते, क्योंकि इंसान तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता. परफेक्ट तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिल सकती है, परफेक्ट तो शायद ईश्वर सिर्फ हमारे होते हैं और कोई नहीं होता.
1: बिल्कुल.
0: इसलिए कभी परफेक्शन आपके रिश्तों में नहीं ढूंढना चाहिए और ना ही किसी इंसान में ढूंढना चाहिए.
1: एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं, और हर एक इंसान में कोई ना कोई एक खूबी जरूर सी होती है. तो आप खूबियों की तरफ जाएं, कमियां तो अपने आप मिट जाती हैं जब इंसान को प्यार मिलने लगता है. क्यों अंजुना?
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा.
1: चले,
0: कमियां दूर हो जाती हैं, बस दूर करने वाला चाहिए.
1: दूर करने वाला और समझाने वाला सही इंसान दोनों तरफ से होना चाहिए.
0: बिल्कुल. सो आइए लिसनर्स चलते हैं इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ और सुन लेते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग।
1: हंसी क्यों पहले ये बताओ, तुम क्यों हंसी?
0: मुझे हंसी आई तो
1: मतलब मेरी बात पे हंसी आई?
0: नहीं, आपकी बात पे नहीं हंसी आई, कुछ मैंने सोचा तो मुझे हंसी।
1: अच्छा, तो अभी बताना मुझे, ठीक है? तो चलिए लिसनर्स, मैं इनकी बात सुन के आती हूँ, तब तक आप सुने हमारी नोकझोंक के साथ में इस प्यारे से गाने को।
0: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
6: और मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो आइए भाई, आज बात करेंगे एक बहुत ही मेन टॉपिक पर जो कि हमेशा से भयानक रहा है। ये जो रिश्तों में एंडिंग टू एंडिंग, आखिर किसी न किसी बात पर इस पर बात आ ही जाती है, तो वो जानेंगे कि वो बात क्या है और किन कारणों के कारण बात यहाँ तक पहुँच जाती है।
6: आजकल तो बहुत देखा जा रहा है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के समय में ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत होने लगा है। जो कि एक शब्द रिश्तों में बहुत गूंजता है जिसे हम कहते हैं डिवोर्स। आजकल नई नई शादियां हो रही हैं, माँ बाप जब अपनी बच्ची की, बेटा हो या बेटी, किसी की भी शादी करते हैं तो वो बहुत अरमानों से होता है कि मेरी बेटी घर जाएगी तो सुखी रहेगी, या अगर बेटा है तो वो अच्छे से रहेगा,
5: बहू आएगी अच्छी।
6: लेकिन आजकल क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, लेकिन आजकल रिश्तों में इसे एक शॉर्टकट की तरह देखा जाता है कि ठीक है, एक दूसरे से नहीं बन रही है, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हो, तो बस सीधा एक सोल्यूशन नजर आता है और वो नाम आता है डिवोर्स। चलो डिवोर्स ले लेते हैं, हम एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है हम डिवोर्स ले लेते हैं। बहुत ईजी हो गया है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग दो बार सोचते थे,
5: निभाते थे, कमी बेसी भी होती थी तो उसे निभाते थे, कोशिश करते थे अंत तक कि वो रिश्ता निभ जाए, चले चले चले, उसमें कई साल भी लग जाते थे। लेकिन अब तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि शादी के दूसरे महीने, तीसरे महीने, 6 महीनों में ही ये ऐसी बातें हो जा रही हैं कि लोगों को इस वर्ल्ड का यूज़ करके आपस में सेपरेशन हो जा रहा है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। तो आज बात करते हैं कि इस वर्ड की ज़रूरत ही क्यों पड़ जाती है। सबसे पहले तो कहते हैं रिश्ते कभी ज़बरदस्ती नहीं जोड़ने चाहिए। अगर आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं अगले के साथ, तो ही रिश्ते जोड़ें। आजकल क्या होने लगा है कि शुरू में तो हमें लगता है हाँ, दोनों में बड़ा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी फीलिंग है और हम रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब रियलिटी आती है, जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, तब समझ में आता है कि रिश्ते जोड़ लेना जितना आसान है, उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल है। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाना चाहते हैं तो सीधा एक वर्ड आता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम सेपरेट हो जाते हैं।
5: बिल्कुल।
6: लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। हम नॉर्मली जब भी ये वर्ड सामने आता है तो हम सोचते हैं कि लड़की पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसे लोग उसे बातें सुननी पड़ती हैं, वो इफ़ेक्ट होती है। एक लड़के के लिए क्या है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
5: लेकिन नहीं, फ़र्क दोनों पे पड़ता है अंशिका।
6: बिल्कुल मैम,
5: दोनों पे पड़ता है, क्योंकि दोनों उस रिश्ते को जी चुके होते हैं, भले ही 6 महीने, भले ही साल भर, लेकिन उस रिश्ते को उन दोनों ने जिया होता है।
6: बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं उस रिश्ते को दोनों ने जिया होता है और दोनों उस दर्द को महसूस कर पाते हैं। इसलिए एक को कहना कि उन्हें इफेक्ट होगा, उन्हें इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों को झेलना पड़ता है और उनके साथ दोनों फैमिलीज को भी झेलना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस वर्ड तक पहुँचने से पहले हम कुछ बातों को सोच लें। देखिए, यहाँ ये बात नहीं है, बताने का मतलब नहीं है कि आप सोचें कि वो हम और कुछ कहना चाहते हैं। सीधा मतलब ये है कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है, वो किसी भी रिश्ते में हो, नॉर्मल सा भी अगर एक रिश्ता आपका है और कम्युनिकेशन गैप है, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। अभी मैं अगर अपनी और मैम की ही बात करूं, एक तरीके से एक एग्जांपल दूं, तो अगर हमारे बीच भी कम्युनिकेशन गैप होगा तो हमारा रिश्ता भी नहीं चलेगा।
5: हाँ।
6: वो इसलिए अच्छा है, मजबूत है, क्योंकि हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी बात हो। तो कहीं ना कहीं यही एक चीज कही जाती है कि हर रिश्ते में कम्युनिकेशन होना चाहिए। बात करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को बुरा लगेगा, लग जाए तो लग जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ, उसने सही कहा। ज्यादातर रिश्तों में क्या होता है कि हम एक दूसरे की कमियां बताना ही नहीं चाहते। तुम्हारे अंदर कमी है बस, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या कमी है ये भी तो आप बताइए कि क्या कमी है। मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि कमी है, तो अगले को ये भी तो बताइए कि उसके अंदर क्या कमी है, लेकिन वो नहीं बताना है, बस कमी है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, डैट्स ऑल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि हम हमेशा कहते हैं ईगो प्रॉब्लम, हर रिश्ते को ईगो बस चुटकियों में ख़त्म कर देता है, चाहे वो कितना पुराना कितना अच्छा रिश्ता हो। अगर आपको ईगो आ गया तो फिर आपका रिश्ता टूटा, फिर उसे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ईगो कभी नहीं रखना चाहिए, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों सब कुछ करूं, मैं ही क्यों समझूं, मैं ही क्यों अपने पॉइंट्स को क्लियर करूं, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक रिश्ते में मैं आ जाता है तो वो दो लोग नहीं रह जाते हैं, फिर तो वो एक हो जाता है। एक अकेला इंसान कहीं ना कहीं सेल्फिश मोटिव से सिर्फ अपने बारे में सोचता है। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो दोनों में बहुत फर्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी है कि किसी ने हमें कुछ कह दिया ऐसा जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता है, तो हम अपने लिए स्टैंड करते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, आप मुझे इस तरह नहीं कह सकते, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ईगो क्या होती है कि हमने गलती भी की है और हम अपनी उस गलती को
5: मान भी नहीं,
6: डिफेंड भी कर रहे हैं, हम मान भी नहीं रहे हैं कि हमने गलती की है, ये ईगो होता है। कि एक रिश्ते में आजकल तो कहना नहीं चाहिए बट कहीं ना कहीं लड़कियों में होता है, मैं क्यों रुकूं, अगर तुमने शादी की है तो मेरे पापा ने भी मुझे इतना सब दे करके और सब करके मुझे भेजा है, मैं ही क्यों रुकूं, अगर झुकना है तो तुम झुको, तुम भी तो मुझे शादी करके लेकर आए हो। तो ये एक जो चीज आ जाती है वो नहीं होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि एक नया रिश्ता जब बनता है वो इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आप रेत का घर आपने कभी बनाया होगा या दिवाली में हम मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, आज भी बहुत घरों में बनता है, मेरे यहाँ भी बनता है। तो जब हम गीली मिट्टी लेकर के आते हैं मैम और उससे घरौंदा बनाते हैं ईंटों को जोड़ करके, तो वो इतना आसान नहीं होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है और कई बार टूट जाता है। मतलब मैंने जितनी भी बार बनाया है तो जो मैं आधा बनाती हूँ तो टूट जाता है।
5: अच्छा, तुम लोग बनाते हो?
6: जी मैम, मेरे यहाँ बनता है
5: ईंटों के ऊपर, हाँ, मिट्टी से।
6: तो जब मैं बनाती थी शुरू शुरू में तो मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, अब तो मैं बना लेती हूँ, तो वो क्या होता था कि वो आधा टूट जाता था। जैसे आधा बनाते थे तो मिट्टी नहीं सूखी होती थी और हम उसको ऊपर का जब बनाने लगते थे हिस्सा तो वो टूट जाता था। तो फिर बाद में मम्मी ने समझाया कि आधा बनाओ, पहले जब आधा वो सूख जाए फिर आप ऊपर का हिस्सा बनाइए, तो वो कभी नहीं टूटेगा। ठीक उसी तरह होता है कि पहले आधा आधा करके हमें हमारे रिश्ते को खड़ा करना
5: चाहिए,
6: समझना चाहिए, खड़ा करना होता है, तब जाकर के आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपका रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, उसमें झगड़े भी होंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट भी होगी और कई बार हम एक दूसरे से नाराज भी होते हैं। लेकिन नाराज होने का हक तो आप वहाँ देंगे ना जहाँ आपका रिश्ता बनेगा। आजकल को तो लोग बनाना ही नहीं चाहते, बस हमको अपने मन से रहना है, सब कुछ अपने हिसाब से करना है, वही चीजें खराब होती
5: है, वही चीजें खराब होती है। एग्जैक्टली।
6: दूसरी चीज होती है कि हमेशा जो आपके पास ओरिजिनल है उसमें जीना चाहिए। आजकल हमने अभी बात की थी ना शुरुआत में कि परियों की दुनिया लोगों को बहुत अच्छी लगती है, यानी कि हमने जो इमेजिन किया है सब वैसा होना चाहिए।
5: एक लड़की जब शादी करके आती है अपने नए घर में तो वो इतना कुछ सोच के आती है अंशिका, कि मेरा घर ऐसा होगा, मेरे पति ऐसे होंगे, मेरी सास ऐसी होगी, मेरी नंद ऐसी होगी, मेरे घर के लोग ऐसे होंगे, और इतनी ज्यादा उम्मीदें लेकर के वो आती है कि जब उसको वैसा एक मतलब कहते हैं ना कि पर्यावरण कह लें या फिर उनको वैसा माहौल नहीं मिलता है तो वो दुखी हो जाती है।
6: बिल्कुल,
5: इसीलिए कहा जाता है कि पहले से ही इतने ज़्यादा उम्मीदें और सपने संजो कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, मानते हैं कि हर लड़की का एक सपना होता है कि हम अच्छे घर जाएंगे, वहाँ के लोग मुझे मानेंगे, सब कुछ वो हर एक लड़की सोचती है, मैं भी अपनी बेटी के लिए सोचूंगी, लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि हम लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना कि हमारी तरफ से उनके उनको हम क्या दे पा रहे हैं। हमारा भी तो बिहेवियर मतलब कुछ मायने रखता है ना, कि अगर हमारी बेटी जा रही है कहीं पर, हम खुद जा रहे हैं, तो हमारा खुद का बिहेवियर भी तो अगलों के लिए, अगले इंसान के लिए कैसा होता है, फिर हम ये एक मतलब पॉइंट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी जो सास है वो बहुत तेज है, तुम्हारी नंद बहुत तेज है, तुम्हारी देवरानी जेठानी बहुत तेज है, तो क्योंकि उसको हमने अपना तेजपन दिखाया होगा कभी, तभी उन लोगों ने इस तरीके से किया और हमें आज उसका जो फल मिल रहा है वो ये मिल रहा है। रही बात हस्बैंड की, जो कि अभी सेपरेशन की बात चल रही है, तो उनके साथ भी हम लोग ने बहुत ज्यादा उम्मीदें हम लोग सोच के आते हैं, और जब उम्मीदें सोच के आते हैं तब हमारा सपना चूर चूर होता है।
6: बिल्कुल सही कहा मैम ने। अब आपको बताते हैं कि ओरिजिनलिटी क्या नहीं होती है, कि हमने एक इमेज बना दी है मैम कि सास होनी चाहिए माँ की तरह, ससुर होने चाहिए पिता की तरह, और पति होने चाहिए आइडल, यानी अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा, बहुत सारा प्यार करेगा और हमेशा उसके साथ अच्छे से रहेगा। हम उसी इमेज पर चलते हैं, लेकिन आप रिश्तों को ओरिजिनल क्यों नहीं समझते कि सास सास ही रहेंगी, ससुर ससुर ही रहेंगे, आपकी नंदे कभी आपकी बहन नहीं बन सकती है, उसमें टाइम लगेगा, और हस्बैंड जो हमारे होंगे वो बहुत अच्छे नहीं मिल सकते। मतलब कहने का सेंस ये है कि कुछ बुराइयाँ कुछ कमियाँ हर किसी में होती हैं, उन्हें समझना चाहिए। जब हम ओरिजिनल लाइफ में जिएंगे तो हमारे रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे।
5: एग्जैक्टली। और ये तो कारण बताया अभी, और इसका निवारण जो है वो हम एक ब्रेक के बाद बताएंगे। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल, तो आइए निवारण की ओर चलते हैं, एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग के साथ सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता।
3: मैं हूँ आरजे अंशिका।
2: अच्छा, तुमने कभी ये गौर की है बात कि मैं कितना अच्छा बोलती हूँ ना, मतलब मुझे दूसरे लोग कहते हैं मैं हूँ आपकी आरजे समता,
3: बहुत प्यारा
2: अच्छा बोलते हैं ना।
3: बहुत हाँ, कहते हैं ना किसी की आवाज में वो होती है, जो एक चीज होती है उसको कहते हैं कशिश होती है, वो मैम की आवाज में कि कोई सुनेगा तो फिर सुनता रह जाएगा।
2: कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनता है तो
3: सुनता है,
2: जितने भी कुल पाप किए होंगे वो धुल जाते हैं पूरे।
3: आप ऐसे कैसे कह रही है?
2: नहीं नहीं, मतलब एक बात बोल रही हूँ मैं कि जैसे अगर कोई भी किसी भी टाइप का कुछ भी अगर क्रोध होता है इंसान को, कहने का सेंस वो था, वो पाप निकल गया। तो लिसनर्स आ गए हैं हमारे, जिसमें प्रीति जी आ गई हैं, अरविंद जी आ गए हैं, नागेश्वर जी आ गए हैं, धर्मेंद्र जी आ गए हैं, एंड वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। एंड महेंद्र जी आ गए हैं, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में।
3: चलिए बात करते हैं आगे की। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे क्या कारण होते हैं, अब बताते हैं कि अगर मान लीजिए रिश्ता उस नौबत तक पहुँच ही चुका है कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो कैसे हम उसे रोक सकते हैं। तो इसे लेकर के है कि एक दूसरे को समय ज़रूर देना चाहिए। रोज़ कम से कम आधा घंटा ऐसे निकालें जिसमें कि आप एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के को समझें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो वो कम्युनिकेशन गैप जो हमारे बीच आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते। इसलिए टाइम देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है हमारा पॉइंट कि तीसरे इंसान को अपने रिश्ते से हमेशा दूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही है कि आपके घर के झगड़े हैं, मान लीजिए आपके हस्बैंड के और आपके बीच में कोई भी बात है, तो उससे हमेशा तीसरे इंसान को दूर रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दो लोगों के झगड़े में जब कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं खुद ब खुद ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते पर हमारा हक है, हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच है तो ये पॉइंट आता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ भी कहे, वाइफ अपने हस्बैंड को कुछ भी कहे, लेकिन जब उसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है तो हम हमेशा कहते हैं ना कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई तीसरा आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होता है तो वो जो राई, जैसे कहते हैं राई का पहाड़ बनना, तो वो छोटी सी बात बड़ी बन जाती है और आगे बढ़ जाती है।
2: एग्जैक्टली और नागेश्वर जी ने आज बहुत अच्छी बात बोली है। पता नहीं नागेश्वर जी हैं कि उनके डुप्लीकेट नागेश्वर जी हैं। लिख रहे हैं, आप हो हमारी आरजे समता और हम हैं आपके प्यारे लिसनर। मतलब वो प्यारे की जगह प्यार लिख दिया है, एक्चुअली मैं उनकी फीलिंग समझ रही हूँ, और हम हैं आपके प्यारे लिसनर्स।
3: तो वो लिखने में
2: हमारे बहुत प्यारे लिसनर्स हैं। तो सास बहू के झगड़े में पति को बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए,
3: बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए।
2: लेकिन अगर माँ की गलती नहीं है तो अपने माँ का फेवर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 6 साल भी आपकी अगर वाइफ आई है शादी की होगी तो, लेकिन जितना भी अगर कितने भी साल क्यों ना हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि माँ का रुतबा जो होता है वो 9 महीने ज्यादा ही होगा।
3: बिल्कुल सही कहा मैम ने कि माँ का रुतबा हमेशा ज्यादा ही होगा, और इसलिए बेटे को संभल करके बात,
2: क्योंकि वाइफ आपको आपके जन्म के बाद मिली, लेकिन माँ ने आपको 9 महीना आपको अपनी कोख में रखा है, तो वो 9 महीने तो वैसे ही हम भारी हैं उनके, हम पर कर्ज है उनके, और माँ के नाते वैसे भी कर्ज हैं। तो प्लीज इस तरीके का बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि माँ बहू सॉरी मतलब सास और बहू के बीच में अगर झगड़ा होते देख रहे हैं, और अगर वाइफ जो है वो आपकी बहू की बिल्कुल आपकी माँ की बहुत बेइज्जती कर रही हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रही हैं और आप वहाँ से क्रॉस होके जा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं।
3: बिल्कुल सही कहा मैम ने कि कभी ब्लाइंडली किसी को लेकर के एक तरफा हमें वो नहीं करना चाहिए कि हम ब्लाइंडली अगर वाइफ गलत भी है तो हम उसी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए,
2: क्योंकि माँ माँ होती है। और मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए कि अगर माँ ने कुछ गलती से बोल भी दिया है या कुछ गलत है भी उस समय, पर उस समय आपको फेवर अपनी माँ का ही लेना है।
3: बिल्कुल, क्योंकि रिश्तों में होता है ना कि सामने की चीजें, जब एक बार जैसे दो लोगों में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है और हम कहते हैं हम किसी का फेवर नहीं करेंगे, हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम किसी का फेवर नहीं करेंगे, जाओ आपस में सुलझा लो। लेकिन ये जो आपस में सुलझाने वाली बात होती है ना, इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। उस टाइम के लिए आप बोल लेंगे और हो सकता है कुछ टाइम बाद आपके वाइफ को ही रियलाइज हो कि हाँ मेरी गलती थी, देखो उन्होंने भी जो बात कही वो सही कही। तो कहीं ना कहीं चीजें सुलझ जाती हैं, सुलझाने वाला चाहिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सोल्यूशन पे, जो कि है कि ये बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है कि आप काउंसलिंग कराएं।
2: हाँ।
3: अगर दो लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैरिज काउंसलर के पास जाइए और अपनी काउंसलिंग कराएं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम हमारे घर की है, हमारे बीच है, हम काउंसलिंग क्यों कराएं।
2: लेकिन अंशिका मैं इस मामले में थोड़ा बोलना चाहूंगी कि काउंसलिंग के लिए अगर आप कहीं और जा रहे हैं, उससे बेटर है कि आप एक ऐसे इंसान को लाएं जो कि वो दोनों पक्ष उनकी बातों को समझे, और वो इंसान आपके घर का होना चाहिए, आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए। काउंसलर जो होगा, हम काउंसलर के खिलाफ नहीं जा रहे हैं जो अंशिका ने बोला, लेकिन मतलब कहना नहीं चाहिए कि आखिर तो वो बाहर ही होगा ना।
3: हाँ।
2: और अगर वो कोई भी इंसान आपके अगर घर का है और आपकी क्या कहते हैं रिलेटिव में है, तो वो आपके दोनों के स्वभाव को जानेगा, उस हिसाब से वो आपको समझाएगा।
3: जी मैम, तो मैम ने अभी आपको पॉइंट्स बताए, तो वो बिल्कुल सही पॉइंट्स अभी उन्होंने कहे, तो आप इस पर भी फोकस करें। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मैं एक सोल्यूशन बताना चाहती हूँ, वो ये है कि रिश्ता हमारा है तो संभालना भी हमें है। मुझे तो लगता है उस नौबत तक हमें जाने ही नहीं देना चाहिए कि कोई दूसरा, देखिए आपका रिलेटिव है, आपका अपना है, कोई भी इन्वॉल्व हो, हमें समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता हम कहीं ना कहीं लेकर के उसे बेहतर बनाए। क्योंकि कहते हैं कि जैसे एक वर्ड कहा जाता है कि रिश्तों को कभी भी उनकी एक तरीके से नुमाइश नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ।
3: अपने रिश्तों को कभी बाहर मत ले जाइए, क्योंकि जहाँ चार लोग मैम हमारे वेलविशर होते हैं, वो कहते हैं कि अरे भगवान ना करे उनके रिश्ते में कोई भी तकलीफ हो, वहाँ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो बैग बिचिंग करते हैं, अरे नहीं चला पाए ना तभी तो ये है, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें चुभती हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे अंदरूनी सुलझाने की कोशिश करें।
2: और मैं वाइफ के लिए ये भी कहना चाहूंगी कि हस्बैंड को हमेशा सबके सामने नहीं वाइफ को डांटना चाहिए, उन्हें उन्हें अपने रूम में ही समझाना चाहिए। और आप उनको डांट भी रहे हैं ना, तो आपको आपको अपने रूम में डांटना चाहिए, क्योंकि उनकी भी खैर इज्जत है, वो बाहर से आई हैं, एक अपना घर छोड़ के आई हैं, तो उन दोनों के झगड़ों में पढ़ना है, लेकिन अलग अलग तरीके से पढ़ना है, अलग अलग तरीके से आपको समझाना है। तो अगर देखा जाए तो एक पुरुष की जो एक जगह होती है ना घर में, वो एक तराजू की तरह होती है। तराजू जो होता है ना, कभी अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब अप एंड डाउन अगर हो भी रहा है तो समय रहते उसे संभाल लेना चाहिए। समझ में आया?
3: समझ में आया। तो मैम ने बहुत ही अच्छी बात बताई और बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ भी बताया। तो लिसनर्स, इतना सारा बताने का सिर्फ जो हमारा आज का मोटिव था रिश्तों वाले दिन पर, वो इतना ही था कि सुने, समझें और लास्ट में थोड़ा सा सहने की कोशिश करें। हम रिश्तों में आजकल सहते नहीं हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की, ये पहले नहीं होता था।
2: हाँ।
3: ये आज होने लगा है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। ये नहीं कह रहा है कोई कि आपको टॉर्चर किया जाए और आप बर्दाश्त करें, ऐसा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए कि अरे चलो छोड़ो, होगा कह दिया होगा, इससे आपकी लाइफ भी आसान हो जाती है और सामने वाले की।
2: एग्जैक्टली। तो ये टॉपिक को करते हैं एंड और हम आते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, पढ़ेंगे आरके जी कुछ लिख रहे हैं, तो वेलकम आरके जी, आपके मैसेजेस को हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए सुनेंगे इस प्यारे से गाने को। बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: थी कि अगर तुम्हारे पास कुछ बालों के लिए टिप्स है ना तो मुझे बताओ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इस समय हेयर फॉल हो रहा है। आई थिंक सभी को हेयर फॉल हो रहा होगा, जितनी भी हमारी फीमेल जो कि लिसनर्स हैं, फीमेल दोस्त हैं। तो अरविंद जी, अरविंद फ्रॉम मनकापुर, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं आपसे कब नाराज़ थी। पता नहीं, मुझे तो कोई बातें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चिंत रहें
1: मैम, आपसे नाराज़ नहीं है। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बालों को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले और जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़ें, यानी कि ज़्यादा उनमें ना प्रॉब्लम ना हो, हेयर फॉल ना हो, तो इसके लिए वीक में एक बार ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। बहुत लोगों को देखा है मैंने कि महीनों वो तेल नहीं लगा,
0: बालों में तेल नहीं लगाते और शैम्पू कर लेते हैं।
1: हाँ, इससे बाल बहुत वीक होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे हमें खाना चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तभी हमारी बॉडी चलती है और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक उसी तरह बालों को भी उनकी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो कि उन्हें ऑयल से ही मिलता है।
0: और बालों की जो जड़ें हैं अगर वो कमजोर हो जाती हैं तो उसमें रैशेस पड़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं कि हमें डैंड्रफ बहुत है, आपको पता है डैंड्रफ क्यों होता है? पता है तुम्हें अंशिका?
1: नहीं।
0: डैंड्रफ क्यों होता है? जब हमारी स्कैल्प जो होती है ना वो रफ हो जाती है, और जब हम उसमें खुजली करते हैं, जब हमें खुजली होने लगती है, तो खुजली करने के बाद में उसमें परत जो है वो जमती जाती है, और खास करके गर्मियों में ज्यादा क्या कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमारी जड़ों से पसीना निकलता है, बालों में पसीना आता है, और पसीना सूख तो जाता है लेकिन एक वाइट कलर की परत जमने लगती है, दैट्स कॉल्ड डैंड्रफ। ठीक है, तो ये डैंड्रफ वही है, और जब हम उसको झाड़ते हैं सर से और फिर लगता है कि अरे ये डैंड्रफ कौन सा एक परमाणु बम है जो हमारे सर पे आ गया है, तो ये डैंड्रफ वही है जो पसीना सूख करके एक सफेद परत बना देता है, और ये हमारी स्कैल्प को बिल्कुल लॉक कर लेता है, तो बाल झड़ते हैं, बाल बढ़ते नहीं है, रूखे और बेजान हो जाते हैं।
1: इसके लिए जरूरी ये है कि आप ऑयलिंग करें। अब जब हम ऑयल की बात करते हैं तो मैंने देखा है बहुत लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि घर में जो हम तेल यूज़ करते हैं यानी कि सरसों का तेल, बहुत लोग उसको लगाते हैं बालों में, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहला कारण होता है कि उसमें क्या होता है ना कि वो बालों के लिए नहीं बना होता है, वो खाने वाला तेल होता है जो खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए उसमें चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी सरसों के तेल में आप तड़का वगैरह लगाते हैं तो वो जैसे एक झाग सी उठती है, हमें खांसी और छींक आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको वो खांसी और छींक आना शुरू हो जाती है। और जब ज़्यादा एसिड वाला तेल हम बालों में लगाते हैं तो वो बालों को स्ट्रॉन्ग करने के बदले उन्हें कमज़ोर कर देता है और चिपचिपे से बाल हो जाते हैं। वैसे तो मैं कभी सरसों का तेल नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो लगाते हैं उनको पता होगा कि बाल चिपचिपे से हो जाते हैं,
0: वो हैवी होता है ना,
1: हैवी होता है,
0: हैवी होता है। और सर्दियों में लगाना चाहिए, सर्दियों में सरसों का तेल यूज करिए, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं,
1: बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यूज करते हैं तो ऑयल आंवला का तेल सबसे अच्छा होता है, और अगर सबसे बेस्ट अगर मैं आपको कोई ऑप्शन देना चाहूँ तो वो होता है नारियल का तेल,
0: बिल्कुल
1: सबसे बेस्ट। उसमें आपको एक मिनट भी सोचना नहीं है कि मैं ये अपने बालों में यूज करूं या ना करूं। इवन आप गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, आप सर्दी में भी यूज कर सकते हैं, पूरे 12 मंथ्स आप आराम से नारियल का तेल यूज कर सकते हैं, वीक में एक बार जरूर यूज करें। दूसरी चीज आती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुश्ती क्यों खेल रहे हो, कभी कभी मेरी मम्मी मुझे जब टोकती हैं तो जब मैं बाल झाड़ती हूँ, जैसे डेली मतलब हम बाल झाड़ते हैं, लेकिन कभी होता है ना कि वॉश करने के बाद में जब हम कंघी कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल तेज तेज से बालों को उसको वो करते हैं, झाड़ते हैं, तो वो कंघी में फंस करके बाल ज़्यादा टूटते हैं, और आपकी नस जो होती है, बालों की जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे खिंचती हैं, जिसकी वजह से सिर की नसें खिंचती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बालों के साथ कुश्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आप बाल शैम्पू करने के बाद में झाड़ रहे हैं उसको, तो उसको हमेशा से धीरे धीरे झाड़ना चाहिए।
0: जब भी आप कॉम करें तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो कॉम के जो दांत होते हैं ना, जो उसमें विसल्स होते हैं, वो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। क्या होता है कि बहुत ही महीन वाले दांतों वाली भी कंघी नहीं करनी चाहिए बालों में, उससे भी आपके बाल झड़ते हैं। ये भी मैंने एक बार गौर किया है, जिसके बाल बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं ना, हल्के होते हैं, तो उन्हें मोटे दांतों वाली कंघी ही करना चाहिए।
1: समझ में आया,
0: क्योंकि जब आप पतले दांतों वाली कंघी करते हैं ना तो उसमें फंस के वो बाल और जिसके निकलने वाले तो और निकल जाते हैं, इसीलिए अच्छे से अच्छे कॉम का यूज करना चाहिए। और अगर आप मतलब आपको लग रहा है कि

0: अच्छा कॉम लेना चाहिए। तो जो एक एक कॉम आजकल आ रही है ऑनलाइन, मैंने भी मंगवाई थी और अब तो शॉप पे भी मिल जाती है, जिसको वुडन वाली कहते हैं, वुडन कॉम कहते हैं, तो वुड की मतलब
1: लकड़ी की बनी होती है,
0: लकड़ी की बनी होती है। तो वो आप अगर लेंगे ना, वुड की कॉम लेंगे, तो उससे तो आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे, प्लस उसको रेगुलर इस्तेमाल से आपके जो बालों में जो डैंड्रफ होता है वो भी धीरे धीरे जाता रहेगा।
1: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी टिप्स थी। आइए अब जाते जाते, यानी कि ब्रेक पे जाते जाते, आपको एक छोटी सी चीज हम अभी बताएंगे, लेकिन वापस आकर।
0: ओके,
1: तो आइए फिलहाल चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, आप भी सुने और एंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
4: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
3: पता है मेरे मुंह से क्या निकलने वाला था? मैं हूँ आपकी शहजादी।
4: हो भी सकती
3: ये है, ये देखो ये होता है असर, ये होता है ना, अपने आप को देखो कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, अपने आप को हमेशा से वैल्यू देना चाहिए। तो भाई मुंह से निकला है शहजादी, तो बता दूं आज शहजादी वाला मेकअप और उसका लुक जो आप चाहते हैं अपने फेस पे, तो शहजादियों वाला जो एक फेस लुक है वो मैं आपको बताऊंगी। अंशिका कुछ बता ले फिर बताऊंगी।
4: तो आइए सिर्फ एक जाते जाते हम आपको सिर्फ एक फेस पैक बता देते हैं जो कि आपके फेस पे ग्लो लाने के लिए होता है, जो कि शहद और ओट्स से है।
3: ओट्स खाने वाला ओट्स?
4: यस मैम।
3: ओके,
4: तो आपको क्या करना है कि एक बड़ा चम्मच आपको शहद ले लेना है और उसमें 2 चम्मच आपको पिसे हुए ओट्स मिला लेने हैं। इसमें कुछ बूंदे पानी की मिला करके आपको पेस्ट तैयार कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा थिक हो ताकि आपके फेस पे अच्छे से लग जाए। अब आपको क्या करना है कि सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको आपको लगा के रखना है और उसके बाद में आपको फेस वॉश कर लेना है। ये जो आपकी डेड स्किन सेल्स होंगे उन्हें हटाएगा और आपके फेस पे शहजादियों वाला ग्लो आएगा। जैसे भी मैम ने कहा ना, मैं शहजादी,
3: अरविंद जी ने लिखा है कि दोनों आज किसी शहजादी से कम थोड़े नहीं है। तो बताती हूँ मैं अभी कि आपको अगर चाहिए शहजादियों वाला लुक अपने फेस पे, तो आप ट्राई कर सकते हैं एक छोटा सा जो कि ब्यूटी मैं बोलती हूँ कि एक ब्यूटी सर्कल है जिसको आप नाइट में करेंगे तो आपको सुबह को बहुत अच्छा निखार मिलने वाला है। तो क्या करना है, इसको करना आपको रात में ही है सोने से पहले, कि आपने ना क्लिजिंग मिल्क ले लेना है या फिर आपने दूध एक रॉ मिल्क ले लेना है, कच्चा दूध ले लेना है। अगर आपके पास क्लिजिंग मिल्क नहीं है तो आपने कच्चा दूध ले लेना है, उसमें गुलाब जल की 2-4 बूंदे डाल करके कॉटन से अपने फेस को पूरा साफ कर लेना है, ठीक है
4: जी मैम।
3: इससे आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और स्किन जो होती है वो गोरी होने लगती है। तो आपने ये करना है, आपने स्किन को साफ कर लिया। अब इसके बाद में आपको एक बर्फ का टुकड़ा लेना है, ठीक है, किसी रुमाल में आप लपेट के ले लो बर्फ का टुकड़ा और उस बर्फ को पिघलने तक आपको फेस पे, पूरे फेस पे सिकाई करनी है, मतलब उसको अप्लाई करते रहना है
4: जी,
3: ठीक है। विद इन 2 से 3 मिनट में आपका जो बर्फ का टुकड़ा होगा, जो आइस क्यूब होगा, वो पिघल जाता है और उसको रुमाल से फिर आप हटा दीजिए। पूरे फेस पे अच्छी तरीके से सिकाई करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपकी आंखों के पास, गालों के पास जो पफिनेस होती है, जो सूजन होती है, वो हटने लगेगी धीरे धीरे। एंड देन लास्ट प्रोसीजर है कि रात को सोने जब आप बिल्कुल लगे कि हाँ अब हम बेड पे आ गए, आपने क्या लेना है, एलोवेरा जेल ले लेना है, उसमें विटामिन ई कैप्सूल मिला देना है। अगर विटामिन ई कैप्सूल नहीं है आपके पास तो आपके पास है बादाम रोगन की कुछ बूंदे, तो वो मिला दीजिए और हल्के हाथ से उसको फेस पे लगा करके एक प्यारी सी जो कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप आप ले करके सो जाइए। एंड सुबह को उठेंगे तो आपका फेस जो है ना वो इतना अच्छा, पहले ही इसके जो मतलब अप्लाई करने के बाद ही आपका फेस इतना ग्लो करता है कि मैं आपसे क्या बताऊं,
4: बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, बिल्कुल प्रिंसेस वाला। और प्रिंस देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे।
3: हाँ जी बिल्कुल, तो अगर आपको चाहिए ये वाला प्रिंसेस वाला लुक तो आप इसको अपना सकते हैं और इसका प्रिकॉशन फिर आप हमें इसका जो प्रिकॉशन करके फिर आप इसका जो मैसेज है हमें चैट बॉक्स में आकर के जरूर दीजिए, ताकि हम भी ये जान सकें कि जो हम बताते हैं वो आपके लिए बेटर होता है और बेटर से बेटर होता है।
4: बिल्कुल, और इसी बातों के साथ मुझे लगता है कि हमारा जो टाइम है यानी जो घड़ी है उसने कर दिया है इशारा कि हमें जाना है, क्योंकि अगर आज जाएंगे नहीं तो कल फिर कैसे आएंगे, और कल तो है मस्ती वाला दिन, यानी कि आपका सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे सॉन्ग्स वाला डे।
3: एग्जैक्टली, कल हमारी बातें कम सॉन्ग्स ज्यादा वाला दिन होता है, कल के दिन हम करते हैं कुछ बातें कम। तो चलिए हम दोनों को दें इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना,
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 1441।

0: या 1800891416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

कुछ ही नहीं पता भैया आपका दिल कोई चुरा रहा है या नहीं, लेकिन आपकी आशीर्वादी आ गई है आपके दिलों को चुराने के लिए और आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए, आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए। बिकॉज चल रहा है आपका अपना प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा विद राजनीति और घड़ी में वक्त हो चला है 3:05 बाय स्टूडियो क्लॉक। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। और आज है हमारा फ्राइडे का स्पेशल वाला डे, यानी कि 2 घंटे लगातार बैक टू बैक आपकी फरमाइशें होंगी। लेकिन आप करें हम थोड़ा सा बदलाव अपने शो के अंदर, 2 घंटे लगातार गाने सुनना कहीं ना कहीं आपको हो जाते हैं बोर, और आपकी इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए अब हमने सोचा है कि भैया गाने सुनाएंगे लेकिन साथ में आपसे गाने गवाएंगे भी, यानी कि आप खुद भी हमारे साथ आने वाले हैं आज के अपने कॉलिंग प्रोग्राम जो हम सैटरडे को लिया करते थे ऑन एयर, वो होगा आज फ्राइडे। 1 घंटा आपका अपना कॉलिंग और हम इंजॉय करेंगे लगातार बैक टू बैक 2 घंटे आपकी अपनी फरमाइशों के सिलसिले को। तो तैयार रहिएगा क्योंकि आज का गेम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चलिए गेम का नाम भी अनाउंस कर ही देते हैं, वो ये है कि आपको आज एक गाना गुनगुनाना है लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हम डालने वाले हैं। ट्विस्ट क्या होगा ये तो आपकी कॉल में बताएंगे। तो फिलहाल एंजॉय करिए देवी प्रसाद जी की फरमाइश को और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, तो इससे पहले कि आप अपने गाने को गुनगुनाएं और एंजॉय करें, हमारे साथ एक लिसनर जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं और देखते हैं हमारे साथ क्या गेम खेलने के लिए तैयार हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम?
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सली बोल रहा हूँ।
0: क्या बात है, हमारी सेवन सिस्टर्स से हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम जवान और जनाब जुड़े हैं।
1: अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे देख रही
0: हैं। हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारी सिस्टर्स की उधर से जितने भी लोग आते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं दिखने में।
1: अरे क्या बात है, चलिए अब खूबसूरत है या फिर बदसूरत है ये तो कभी मुलाकात होगी तब पता लग जाएगा, लेकिन आप जब बता रही हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आप भी बिल्कुल ऐसे ही हैं।
0: बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ ना कि आप बहुत सुंदर मतलब हैं, क्योंकि मैं आवाज से पहचान रही हूँ, दिल से दिल वाला कनेक्शन है, और हमारे लिसनर बता देंगे कि आपकी आवाज खूबसूरत है कि नहीं, और जिसकी आवाज खूबसूरत है इंसान खूबसूरत है।
1: जी बिल्कुल, तोता से तोते की कनेक्शन है।
0: आप हमारे गेम का ट्विस्ट खोल रहे हैं, देख लीजिए फिर।
1: अच्छा अगर इस गेम में मान लीजिए वो शब्द आए ही ना तो फिर क्या किया जाए?
0: तो आपको ऐसा गाना ढूंढ के लेकर आना है जिसमें वो शब्द आए। तो चलिए हम आपको बता दें गेम क्या है, लिसनर्स अपने दिलों को थाम के बैठिएगा क्योंकि आज का गेम थोड़ा सा घुमाने वाला है। गाना है कि आपको गाना गाना है दिल शब्द से गाना, और जहां पर दिल शब्द आएगा वहां आपको दिल छोड़ के बोलना है तोता।
1: जी, और अगर वही तो बता रहे हैं, अगर नहीं आए तो फिर इस गेम को यहीं पर क्लोज किया जाएगा?
0: ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपको ऐसा ही गाना गाना पड़ेगा जिसमें दिल शब्द आता है।
1: अच्छा
0: चलिए अब शुरू हो जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ सुनने के लिए कि हमारा तोता क्या बोलने वाला है।
1: तोता तो मैना को ही ढूंढेगा।
0: ढूंढिए, फिलहाल हमारा दिल क्या ढूंढ रहा है ये देखते हैं। दिल तोता है, तोता दिल है।
1: जी तो ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं।
0: जी शुरू कीजिए।
1: मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम, तोता अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम, जाने वफा पे तू कर ले यकीन आपात जाने बहार, सच्ची मोहब्बत उसी को कहे जो माने कभी जो नहार, हाँ मेरी बाहों में तोता की पनाहों में आओ कह दे जो है कहना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम कितना प्यार करते हैं सनम। जी
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाया, इतनी प्यारी शुरुआत हुई है आज हमारे इस प्रोग्राम की कि मुझे मतलब एकदम खुश हो चुके हैं हम।
1: जी जी बिल्कुल, इसमें दो बार आया था तो चलिए दो बार ही अच्छा अच्छे खासे उसमें हैंडल कर लिया है मैंने।
0: जी हाँ, और आपने जीत लिया है अपना एक गाना। चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका?
1: जी मुझे ये गाना सुना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
0: कौन सा? दिल अपना चीर के दिखा देंगे।
1: जी जी जी, तोता अपना चीर के दिखा देंगे।
0: ओके, फिलहाल तोते की हत्या नहीं करनी है और आप एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुना। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी जी बोल, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो भाई अगर आप गेम को समझ चुके हैं और आपको समझ में आ गया है कि आज के गेम में क्या होने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा अपने गानों के साथ, क्योंकि हम मिलेंगे हमारे देवी प्रसाद जी के इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: और हमारे इस डेयर को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ी है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, नाम से हमें लगता है कि आप हमारी गुलफ्शा जी है, क्योंकि आपके आते ही पीछे से बाहर आ जाती है।
1: जी बिल्कुल, आपके आने से हम लोगों के चेहरे पर बाहर आती है, मुस्कुराहट आती है, सब कुछ आता है। क्या क्या बोले।
0: ओ माय गॉड,
1: आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए। फिलहाल क्या आप गेम के लिए तैयार हैं?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अरे वाह, चलिए सीट बेल्ट बांध लेते हैं। और गेम का रूल ये है, आपको ऐसा गाना गाना है जहाँ पर दिल शब्द आता है, यानी कि दिल के ऊपर कोई गाना गाना है, और जहाँ दिल आता है वहाँ आपको तोता बोलना है जो आगे पीछे बोल रहा है।
1: जी, तोते की आवाज निकालनी है मैम।
0: नहीं, जैसे कि अभी हमारे जनाब गाकर गए हैं त्रिपुरा से, अविनाश जी, और उन्होंने गाया था कि तोता चीर के तुम्हें दिखा देंगे कितना प्यार करते हैं सनम, क्योंकि वहाँ पे दिल शब्द था, बस कुछ ऐसा।
1: अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए।
0: हाँ जी, चलिए शुरू हो जाइए और बताइए कौन सा गाना गुनगुनाने वाली हैं आप, क्योंकि हमसे इंतजार नहीं हो रहा है आज इस क्रिएटिविटी को देखने के लिए।
1: गाना तो मैम हम गा ही नहीं पाते हैं, चलो गा देते हैं। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: क्या बात है, बहुत जबरदस्त, शुरू हो जाएगी।
1: दिन नहीं गुजरता, रात नहीं।
0: और इसमें कहीं दिल शब्द आता है?
1: नहीं हो लगता, दिल आता है मैम।
0: चलिए आता है, चलिए चलिए फिर शुरू हो जाइए।
1: जी मैम, गाना गा नहीं पाएंगे, बस आ ही सकते थे, गाना गा नहीं पाते।
0: बस मेरी बात मान जाए, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की।
1: कोई बात नहीं, हम हार गए।
0: ये क्या बात होती है, हमने डिक्लेयर भी नहीं किया, हम पहले ही हार गए।
1: जी मैम,
0: चलिए कोई बात नहीं। और मुझे लगता है आपकी इस फरमाइश को पूरा करने के लिए इसी गाने को लेकर हमारे अरविंद जी कॉल करेंगे।
1: इसी गाने को सुना दीजिए, ये गाना डेडिकेट रहेगा अरविंद जी को, महेंद्र जी को, रोशनी रावत को, अनु पांडे को।
0: जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
1: जी जी, मुस्कान मूवी का।
0: ओके, थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू।
0: तो भाई हमारी गुलफ्शा जी ने तो गाना गाया नहीं, लेकिन गाना बताकर चली गई हैं, और साथ ही ये भी बताया है कि इस गाने को कंप्लीट करने के लिए हमारे अरविंद मौर्या जी आएंगे और वो इस गाने को कंप्लीट करके जाएंगे, वो भी अपनी आवाज़ में। क्या ये बात सच है? अगर हाँ, तो आइए एंजॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश को, और हम मिलेंगे इस फरमाइश के उस पार। तब तक के लिए आपके कॉल्स देखते हैं कि भैया हमें कौन कॉल करने वाला है और आज कौन उस डेयरिंग गेम को मेरे साथ खेलने वाला है। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए हमारे अमित कुमार जी की फरमाइश, ऊंची नीची रगड़िया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

0: और इसी गाने को बीच में रोकने के लिए माफी, आपकी इन फरमाइशों को हम कंप्लीटली पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले गाने को एंजॉय करेंगे जो हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं। लेट्स सी कौन है। हेलो,
1: नमस्कार।
0: और पीपी की आवाज सुन के लगता है कि आप रईस साहब बोल रहे हैं।
1: जी
0: साहब। जी, तो भैया ये बताइए कि कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। और ये बताइए, क्या आप तैयार हैं आज के गेम के लिए? थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा झटके। ओके, तो गेम के रूल ये है कि कोई ऐसा रोमांटिक गाना गाना है जो दिल के ऊपर बना हो, लेकिन जहाँ दिल आएगा वहाँ आपको दिल नहीं तोता बोलना है।
1: ठीक है, कोशिश करते हैं।
0: लेट्स सी। ओके, गुनगुनाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। अब
1: बस दो लाइन सुना देता हूँ आपको।
0: चलिए चलिए, दो लाइन ही काफी है, बस उसमें दिल आना चाहिए।
1: तुका नजर जिगर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। ऐ मेरे हमसी, तू है मेरा हसी, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं। बस इतना याद है मैडम जी।
0: क्या बात है, तोता नजर जिगर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूं।
1: बिल्कुल।
0: अगर किसी ने गैस कर लिया गाना कौन सा था, जरा चैट बॉक्स से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे हमने गैस कर लिया आपका गाना, मेरा बहुत
1: पसंदीदा था।
0: लिख तो लिया, दिल जिगर नजर क्या है, ये नहीं सुनना था आपको?
1: चलिए ठीक है, सुना दीजिए आप।
0: ओके, थैंक यू।
1: ओके,
0: तो भैया आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा विद राजीव नदी, और चल रहा है थोड़ा सा फन वाला गेम। अब आप तैयार कर लीजिए अपना एक गाना, जहां आएगा दिल वहां आपको करना है तोता, जैसे हमारे रईस साहब करके चले गए हैं और हमारे अविनाश जी ने भी किया था। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429। सुनते रहिए।

0: और आप अमित कुमार जी की फरमाइश को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच एक और कॉल आ चुकी है, तो लेट्स सी कौन है और क्या गुनगुनाने वाले हैं वो।
1: हेलो,
0: ये कॉल डाइवर्ट हो गई। हेलो
1: हेलो,
0: ये हो क्या रहा है सर? कोई डाइवर्ट हो रहा है, कोई आ रहा है? चलिए अब आप बताइए।
1: हमारी किस्मत थोड़ा साथ दे रही है।
0: नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, हमारा सिग्नल कुछ दिक्कत दे रहा है।
1: अच्छा जी, आपके पास सिग्नल है?
0: हाँ, ऐसा मुझे लगा था।
1: एक दो हमें दे दो, एक दो हमें क्रेडिट पे दे दीजिए।
0: ओके, अभी टावर जाके हिलाते हैं, देखते हैं टूटता है तो लेकर आते हैं।
1: जरूर जरूर।
0: चलिए तो आपका स्वागत करते हैं। भाई तभी आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज।
1: नाम ही नहीं बताना है, बाकी जो काम है वो बताइए।
0: अब नाम तो बताना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काम बता सकते हैं।
1: अरविंद नाम है।
0: ओके, तो अरविंद जी का स्वागत हो चुका है और गुलफशा जी ने उनको एक गाना डेडिकेट किया था, तो हम सोच रहे क्यों ना
1: उन्होंने अपना टास्क हमें दे दिया, फंसा के हमें चले गए, खुद तो गाए नहीं, सॉरी बोल के चले गए, हार भी गए। अब मैं उतने देर से पसीने पोंछ रहा हूँ कि करूँ क्या।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए अब शुरू कीजिए। आपको बस गाना गुनगुनाना है, जहाँ दिल आए वहाँ तोता लगाना है।
1: हाँ, इंसान होके तोता वाली जिंदगी जियो और क्या।
0: चलिए शुरू हो जाइए।
1: चलिए, आपने हमें जो सॉन्ग दिया हुआ है, आई थिंक जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, राइट?
0: बिल्कुल।
1: तो जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, तोता नहीं गुजरता, रात नहीं होती।
0: क्या बात है, और आप इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि दिन को आपने तोता कर दिया, दिल को आपने साइड कर दिया।
1: बताया था ना, मैं ऐसे खुरा पाती दिमाग आप ही ला सकते हो, पूरे संसार में आप ही सबको दूसरी तरफ मोड़ सकते हो।
0: तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर ना लगे मुझे किसी की।
1: लगेगा नहीं वैसे मैम आपको नजर, आप इतने क्यूट हो, क्यूट लोगों को कभी नहीं लगता।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार और कोशिश कीजिए इसी गाने की।
1: ओके मैम, थैंक यू।
0: आपने कोशिश की
1: मैम, हो तो गया।
0: चलिए चलिए ठीक है, हम उसी को मान लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आइए एंजॉय करते हैं। तो भैया आप दिल धड़कन दिमाग जरा साइड कीजिए और तोता लेकर आइए। तब तक के लिए हम आपको पेश करते हैं अनु पांडे जी की फरमाइश, डेडिकेटेड है आप सभी के लिए ये वाला गाना।

0: इससे पहले कि हम अपनी फरमाइश एंजॉय करते हैं, हमारे पास एक और कॉल है और लेट्स सी कौन सी कॉल है और वो क्या बोलने वाली है या है। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू यू।
1: ओके,
0: आपका नाम?
1: अन्नु।
0: ओह माय गॉड, अन्नु जी कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, पूछा नहीं लेकिन बता देते हैं।
1: नहीं, मैं पूछ रही हूँ, जिनसे कनेक्शन जुड़ा है ना, इसलिए नहीं पूछा कि आप जान जाओगे पहले ही।
0: हम पूछ लेते हैं, हम बता भी देते हैं, कोई नहीं पूछा तो भी बता देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि पता है कल रात में हमने सोचा था।
0: क्या सोचा?
1: कि आप सैटरडे को कॉलिंग सोन अगर के फ्राइडे को रुको, फ्राइडे 2 घंटे रहते हैं, सैटरडे 1 ही घंटा रहता है।
0: देखा, और आप
1: आज ही आप लेकर आ गई कॉलिंग सोन।
0: इसी को कहते हैं दिल वाला कनेक्शन। सोचती आप है कर हम देते हैं।
1: हाँ।
0: चलिए बताइए, अभी कौन सा गाना आप सुनने वाली हैं और इसके साथ ही साथ कौन सा गाना आप गुनगुनाने वाली हैं?
1: जो गाना मैं सुनना चाहूंगी, मैं वही गाना गुनगुनाना भी चाहूंगी।
0: क्या बात है, क्या बात है, शुरू हो जाइए। लेकिन नियम तो आपको याद होंगे, राइट?
1: हाँ, हमको याद है।
0: ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं हमारे अनु पांडे जी का।
1: जी मैम, शुरू होते।

0: क्या बात है। और अब जरा ये बताइए इस फिल्म के मतलब इस गाने के सिंगर कौन थे?
1: हेलो।
0: ओके
1: हेलो,
0: फिर से हमारा सिग्नल दिक्कत हुई। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून टू यू। आपका नाम?
1: राजू सलमानी, आवाज विकास
0: जी। राजू सलमानी जी, क्या आप हमारे साथ गेम में ज्वाइन करना चाहेंगे या डायरेक्ट अपना गाना सुनना चाहेंगे?
1: क्या गेम है आपका?
0: गेम ये है कि आपको एक ऐसा गाना गुनगुनाना है जिसमें दिल शब्द आता हो, लेकिन जहाँ दिल आता है वहाँ आपको तोता बोलना है।
1: अरे भैया, हमारे बस की बात नहीं है।
0: चलिए तो फिर अपना गाना बता दीजिए हमें।
1: मेरा गांव मेरा देश।
0: ओके okay.
1: मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए।
0: ओके ओके, थैंक यू
1: थैंक यू।
0: हाँ जी,
2: हेलो,
0: आप वापस आई?
2: हम लाइन पे हैं।
0: हमको पता है आप लाइन पे हैं, लेकिन आज हमारे सिग्नल हमें दो बार धोखा दे दिया है।
2: कोई बात नहीं, हम बैठे रहे।
0: चलिए बताइए आपके गाने के सिंगर कौन है?
2: उदित नारायण।
0: ओके, तो ये उदित नारायण जी की आवाज थी। वैसे क्या उदित नारायण को हम बता कर आए कि उनका दिल की जगह पे तोता हो चुका है? चलिए ठीक है,
2: ओके बाय
0: बाय बाय। तो भाई ये थी हमारे अनु पांडे जी, जिन्होंने अपना बहुत ही पसंदीदा गाना गुनगुना भी दिया है। और क्योंकि ये गाना हमें कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा, तो आइए हम एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग, जो ऑफ कोर्स उन्हीं के लिए हमने पेश किया। और ये गाना डेडिकेटेड है आप सभी को अनु पांडे जी की तरफ से।

0: और हमारे बीच एक और लिसनर आ गए हैं जिन्होंने हमें कॉल कर लिया है। लेट्स सी कौन है और उसके बाद ही हम आपकी फरमाइश को प्ले करते हैं वापस से। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून एवरीवन।
0: गुड आफ्टरनून टू यू। आपका नाम?
1: श्री देवी प्रसाद।
0: देवी प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं इस समय तो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं?
1: जी।
0: तो शुरू कीजिए।
1: शुरू यही करना है कि तोता तोड़ के हंसती हो मेरा दवाई तत्काल करोगी।
0: आपने पूरा गाना बदला है, हमने कहा था सिर्फ एक शब्द बदलना है।
1: जी, शब्द सिर्फ बदलना है।
0: जी हाँ, सिर्फ आपको एक शब्द बदलना है, वो है दिल। बाकी पूरा गाना सेम रहेगा।
1: जी, तो ऐसा है, तोता तोड़ के हंसती हो मेरा वफाई के तुम याद करोगी।
0: क्या बात है, बहुत ही पसंदीदा गाना है मेरा ये।
1: जी, बहुत अच्छा है, मुझे भी।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और एक बात और कहना चाहते हैं आपसे।
0: हाँ जी, बताइए।
1: जैसे आप हमारे लोग के मतलब आरजे हैं।
0: जी।
1: तो एक सहेली को और बुलाइए और ऐसा कार्यक्रम कीजिए, हंसना मना जैसे था, तो आकांक्षा जी तो है नहीं, तो कोई सहेली को बुलाकर वो कार्यक्रम फिर शुरू किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: चलिए ठीक है, आपकी बात के लिए हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए उस शो को।
1: वो शो बहुत अच्छा लगता था, हम एक घंटा समझ लीजिए रेडियो से चिपक कर बैठते थे। और फरमाइशी, अब एक चीज और जान लीजिए कि एक टाइम
0: जी
1: खाना, जब तक आपके कार्यक्रम सुनते रहे तब तक खाते नहीं है।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आपका कार्यक्रम सुना करते हैं और खाना खाया करते हैं।
0: तो अभी आप
1: 3 बजे के शो में हो या सुन सहेली में या कोई कार्यक्रम में।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए।
1: ओके, बाय
0: बाय। तो भाई, ये तो थे हमारे देवी प्रसाद जी जिन्होंने हमें अपने मोहब्बत में डुबो दिया है। उससे पहले कि हम आपको उसमें भिगो दें, आप एंजॉय कीजिए हमारी अनु पांडे जी की फरमाइश को। उसके बाद हम मिलेंगे लेकर के मुसीब की और रिजु जी की फरमाइश। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना कॉल अच्छी गुंडा विद राजुरती।
2: Hey you beautiful girls, I have this beautiful flower in my hand. I wonder which one of you will be lucky to get it. You, you, you, how about you?

0: और वापस से आपकी फरमाइश को बीच में रोकते हुए हम आ चुके हैं और लगता है कि आज इस गेम में हम फरमाइश प्ले ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ मैंने 2 घंटे चूज कर लिया। हेलो, क्या बात है, इस प्यारी सी आवाज के पीछे कौन है आज?
1: जी मैम, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है।
0: साक्षी जी, वैसे मुझे एक बात बताइए, जितने भी हमारे लिसनर आती हैं जिनका नाम एस से होता है, उनकी आवाज इतनी शांत क्यों होती है?
1: अरे शांति का प्रतीक होता है ना।
0: ओह रियली, ये बात तो सच है। वैसे एस फॉर शांति, एस फॉर साक्षी, एस फॉर सृष्टि। क्या बात है, क्या बात है। चलिए फिर शुरू हो जाइए। अरविंद जी ने तो पूरा किया नहीं, आप ही कर दीजिए।
1: जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नहीं हो लगना तो होता तेरे बिना।
0: माशाल्लाह बहुत ही प्यारा।
1: देखा मैम, अरविंद जी को मैंने हरा दिया।
0: हाँ जी, अरविंद जी को आपने हरा दिया और मुझे लगता है अरविंद जी के पास एक नया चैलेंज पहुंच चुका है कि अगली बार वो आपसे ज्यादा अच्छा गेम खेलेंगे। जी हाँ, इस बार तो आपने हरा दिया, आपके लिए जोरदार तालियां। बताइए कौन सा गाना है आपका?
1: मैंने कहता नहीं, मैंने प्यार ज्यादा तू सोना है, मैंने सोना है दिलदार ज्यादा।
0: ओके भाई, ना मैंने पैसा चाहिदा, ना मैंने को प्यार चाहिदा, मेरे को तो चौकोलावा चाहिदा। इससे पहले कि मैं यहाँ चौकोलावा की डिमांड करूँ, आप एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गुंडा।
1: बाय
0: बाय। तो भैया आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और यूं ही आपकी कॉल लगातार बनी रहेगी हमारे साथ आपकी अपने कॉल अच्छी उन गोना में। अगली फरमाइश आप एंजॉय कीजिए, हमारे मुसीब जी की फरमाइश है और लगातार कॉल्स आ रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तोताओं को सुनने के लिए, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ तोते ही तोते हैं। बट उठाएंगे आपके कॉल्स को लेकिन इस छोटे से गाने के उस पार, और चलेंगे आपके अपने चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने के लिए। तो आप उन्हें मैसेज

0: और आप इंजॉय कर रहे कॉल ट्यून गुना में मुसीब जी की फरमाइश। इसी के बीच आई है एक और कॉल, तो एक्सेप्ट करते हैं जनाब। और कौन है हमारे साथ? हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून टू यू। आपका नाम?
1: कमल लैन बोल रहे हैं।
0: कमल लैन जी, आइए, आपका स्वागत करते हैं। और ये बताइए कि आप गेम के लिए एक्साइटेड हैं?
1: जी मैम, तोता जो है, जो गाने दिल है, दिल के ऊपर जो तोता को रख देना।
0: हाँ जी, आज हम दिल हटा के तोता रख देंगे। दिल तो हर जगह धड़क रहा है अब।
1: तो मैम पूरा गाना सुनाना है कि थोड़ा थोड़ा?
0: पूरा एक पैरा सुनाना है आपको,
1: एक मुखड़ा।
0: जी हाँ,
1: अगर पूरा गाना याद शुरू करें।
0: हाँ, मैं कह रही हूँ अगर पूरा गाना याद है तो पूरा भी सुना सकते हैं, बाकी आप शुरू कीजिए।
1: चलिए मैम। चूरा के तोता मेरा गोरिया चली, चूरा के तोता मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये तोते की लगी, चूरा के तोता तेरा चली मैं चली। मुझे क्या पता कहाँ मैं चली, मंजिल मेरी बस तू ही तू।
0: क्या बात है, चुरा के तोता मेरा गोरिया चली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन सा गाना है अब आपका, ये बता दीजिए।
1: रुक जाना तुमसे मिलने को दिल करता है, मेरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, यही हो जिसको दिल करता है।
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम।
0: तो क्या आपके पास भी है कोई तोता? अगर है तो आइए उड़ाइए, क्योंकि आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा विद्रा आशीर्वती, और एंजॉय करते रहिए मुसीब जी की फरमाइश। हमें लेंगे अगले गाने को लेकर के। आपकी फरमाइशों का मुझे इंतजार है आपकी डिमांडेड वाले कॉल ट्यून गोंडा में।

0: और आप लोगों को चैलेंजेस देने के बाद, टास्क देने के बाद, टंग ट्विस्टर्स और इस तरह के काम देने के बाद, मेरे दिल में भी एक ही ख्याल आता है कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। फिलहाल आइए चलते हैं आपके अपने चैट बॉक्स में और उसके बाद हम ट्यून करेंगे आपकी अगली फरमाइश को। तो हमारे चैट बॉक्स में आज जो सबसे पहले मैसेज आया है वो मुसीफ जी का आया था, जिन्होंने लिखा था, गुड आफ्टरनून डियर आशुति मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। गुड आफ्टरनून टू यू। रिजू हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी का मैसेज आ चुका है। अरविंद जी लिख रहे हैं, भैया कि आपके आने से बढ़ गई हमारी शान, अब लफ्ज़ों में बयां करने को कोई अंदाज नहीं। आशुनति मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली सॉन्ग लिखा है मुसीफ जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे गुलाब के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। नागेश्वर धाकड़ हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून आशुति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। थामो थामो थामो, सांस लो, पानी पियो, आकर इतना बोलोगे तो थक जाओगे। जी आज हम नहीं, आज हमारे लिसनर थक रहे हैं, तोता और दिल के बीच में। एंड इसके बाद आपके मैसेजेस हैं। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। आज शो ऑनियर है क्या? जी हाँ, आज का शो ऑनियर है और सबके तोते कबूतर सब उड़ने वाले हैं, प्लस किसी का मुर्गा भी उड़ सकता है। वैसे क्या मुर्गे उड़ते हैं? एंड इसके बाद है, हमारा तोता तुम्हारे तोते में है। ओके तो ये गाना नागेश्वर जी, आई थिंक आपको ऑन एयर आके गाना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके बाद आपके ही लगातार मैसेज है, हर बार शब्द चेंज करना है। जी हाँ, हर बार शब्द चेंज करना है, जहाँ पर दिल आएगा वहीं आपको चेंज करना है। ऐसा लगता है सामने वाला प्रैक्टिस करके आया। जी नहीं, प्रैक्टिस तो नहीं थी, क्योंकि ऑल सडन हमने ये काम दे दिया था। मैम ने पहले से ही समझा दिया होगा, क्योंकि आरजे मैम इनको जानती है। मैं किसी को कुछ भी नहीं समझा रही हूँ, मैंने बस रूल्स बताए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग ही लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड ये गुलफशा जी हैं। जी हाँ, गुलफशा जी को मेरा प्रणाम नमस्ते लिखा है हमारे नागेश्वर धाकड़ जी ने, और आपका मैसेज हमने गुलफशा जी तक पहुंचा दिया है। पहले से हथियार गिरा दिया, आप क्या कर सकते हैं जनाब? अगर आप उठाना चाहें इस गिरे हुए हथियार को तो जरा कॉल कीजिए 6393316429 पर, एंड रिविजन कर लूँ। आपने रिविजन कर लिया, बहुत ही बेहतरीन, आपने गेम भी खेला था, बस थोड़ी सी गलती की थी। अंबज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? रोशनी रावत उन्नाव से जुड़ गई हैं, जो लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड माई डियर अति मैम, जी आप कैसी हैं? प्रोग्राम बहुत झकास एंड धमाकेदार है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रोशनी जी आप कब आ रही हैं हमारे साथ ये वाला गेम खेलने के लिए? किरण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और लिख रही हैं संस्कृत में, कार्यक्रम मात मस्त आहा। ओके, इतनी संस्कृत तो मुझे नहीं आती, लेकिन तारीफ सुन के लग रहा है कि ये तारीफ ही है मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके बाद गुलफशा जी का मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू। लगातार आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो इन मैसेजेस को हम लगातार पढ़ते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए ट्यून कर लेते हैं हमारे अगले गाने को, क्योंकि अगला सॉन्ग आपका इंतजार कर रहा है। रिजू की फरमाइश पे आप सुनने जा रहे हैं सिलसिला ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देवदास फिल्म से बहुत ही जबरदस्त श्रेया की आवाज में सॉन्ग है, एंजॉय करते रहिए। मिलते इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: कितनी शक्ति है इस देह में।

0: और इससे पहले कि ये सिलसिला यूं ही खत्म हो जाए, आइए चलते हमारे अगले कॉलर की तरफ, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ गया है। हेलो
1: जी, उन्नति जी, जावेद बोल रहे हैं।
0: जावेद अख्तर या जावेद अली
1: जी?
0: जावेद अख्तर या जावेद अली?
1: नहीं नहीं, जावेद अंसारी।
0: ओके, तो आप जावेद अंसारी।
1: रईस भाई की तरह मेरी भी टेलरिंग शॉप है।
0: ओके, और वहीं पर है जहाँ पर रईस साहब की दुकान है?
1: ये टेलरिंग की दुकान है, लेडीज टेलरिंग की दुकान, आवास विकास में है, व्हाइट बीट्स के नाम से।
0: चलिए, अब ये बताइए कि क्या आप गेम के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, सोच रहे हैं कुछ सुनाई दे थोड़ा सा।
0: चलिए सुनाइए, कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप?
1: अब गाना हम ये सुना देंगे, दिल की जगह तोता इस्तेमाल करना है।
0: जी हाँ, चलिए शुरू हो जाइए।
1: सुनिए, तोते की आरज़ू है कोई दिल रुबा मिले, अब तक के जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, तोते की आरज़ू है कोई दिल रुबा मिले।
0: क्या बात है, आप तो बहुत प्यारा गाते हैं जनाब।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा आपने गाना गाया था। और
1: धन्यवाद कॉल को रिसीव करने के लिए, थैंक यू।
0: आप अपना गाना भी बताया जाइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
1: बस यही, दिल की आरज़ू है कोई दिल रुबा मिले।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: एंड रईस साहब के बाद एक और लिस्टर है, लेट्स सी कौन है। हेलो, हाँ जी, आपका नाम?
2: मैम जी, पहचानिए हम कौन हैं।
0: और हम आपको पहचान गए, आप आए, रोशनी आई, आप रोशनी जी हैं।
2: जी जी, शुक्रिया।
0: आपके आते ही सब जगह उजाला उजाला हो जाता है।
2: हाँ, नाम ही ऐसा हमने हमारे जवानों ने रख दिया कि उजाला ही करना है हर जगह।
0: हाँ जी, तो भैया बताइए कि आप गेम के लिए तैयार है, क्योंकि हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे।
2: अरे बहुत ज्यादा ही बेसब्री से इंतजार में हम खुद ही थे कि कौन जल्दी से उठे और हम गेम के लिए रेडी हो जाए, हम तो सो रहे थे। कृपा हो अन्यू जी की हमारे ऊपर, जो हमको कॉल करके उठाई कि चलो जल्दी से आ जाओ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, नहीं तो हमारा गेम मिस हो जाता। फिलहाल तो तैयार हैं आप, चलिए शुरू हो जाइए। और गेम का रूल ये है कि आपको एक ऐसा गाना गाना है जहाँ पर दिल आता हो, लेकिन दिल नहीं गाना है, दिल की जगह तोता गाना है।
2: जी बिल्कुल तैयार है, बहुत तैयारी के साथ है।
0: इतनी भी तैयारी नहीं करनी थी। चलिए,
2: क्या करें, भुनक्कड़ है हम ना, इसलिए।
0: चलिए चलिए सुनाइए कौन सा गाना है, लेट्स सी।
2: और इस तोते में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा रखा है, तीर के देखे तोता मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है।
0: ओह माय गॉड, बेचारा तोता भी सोच रहा है मेरा क्या
2: कहूं। सुने थे लोगों से प्यार के अफसाने, सुने थे लोगों से प्यार क्या होता ये तूने समझाया, मिला तोता तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे, जुनू जाने कैसा जमा तोते पे छाया, तोता मैं ऐसा दर्द उठा तोता हो गया दीवाना, दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दवा रखा है, निगाहों ने मेरी किस सूरत है तेरी, जिंदगी है मेरी अमानत है तेरी।
0: okay.
2: और आगे है, धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी इबादत है मेरी, तेरे सिवा याद नहीं है तू ही तू, तोता में तोता ने यार की पूजा की, प्यार का नाम खुदा रखा है।
0: क्या बात है,
2: बस
0: आपने गाने की जगह पे पूरी पोएट्री सुना दी, लेकिन एक एक जगह आपने तोता बोला है, और तोता बेचारा सोचा है मेरा क्या कसूर है। क्यों आज हर मेरे पीछे आ गया। यकीन मानिए आज तोता पेड़ पे बैठ के सोच रहा होगा, मुझे इतनी हिचकियां क्यों आ रही है, मेरी क्या गलती थी।
2: आप वो तो कह रहा था कि उन्नति मैम ने तोते को ही दिन बना दिया।
0: एक्चुअली हम पिछले एक हफ्ते से सोच रहे थे कौन सा गेम आपके साथ खेला जाए।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैम, मुझे तो बहुत खुशी हुई और सारी लिसनर की आवाज सुन सुन के अच्छा लग रहा है।
0: चलिए बताइए कौन सा गाना है आपका।
2: आपका जो दिल करे मुझे वो सुना दीजिए, मुझे वही सुनना है।
0: ओके, मुझे लगा था
2: आपकी पसंद मेरी पसंद।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी हमारे साथ रोशनी जी, और क्या ख्याल है, अब सिलसिला चालू किया जाए हमारे रिजु जी की फरमाइश का। अगर हाँ तो एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार आपकी अगली फरमाइश को लेकर के, क्योंकि ये है आपका अपना कॉल 99.6 FM पर आप सुन रहे हैं विद राजनीति।

0: एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और लिसनर, देखते हैं भैया कौन है और कहां से हमें कॉल किया है। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, माफी चाहूंगी, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं?
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ मैं पटेल नगर से बोल रहा हूँ।
0: पटेल नगर से आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम चंद्रमान भट्ट पांडे, रईस जी मेरे स्वागत है।
0: ओके, तो चंद्रमान जी स्वागत करते हैं। और आज लगता है रईस साहब ने भैया सबको जोड़ रखा है कि आओ सब लोग दिल तोता करो।
1: जी जी
0: चलिए, तो तैयार है आप दिल की जगह तोता, तोता की जगह दिल करने के लिए?
1: तोते की बात सुनो, तोते की बात सुनो, मेरे फसाने पे नजर, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे नजर, दिल की आवाज भी सुन, तोता मासूम है, तोता मासूम है, इसकी तुम फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, वक्त इंसान से, वक्त इंसान से ऐसा भी कभी आता है, राह में छोड़ के साया भी चला जाता है, तोता मासूम है, तोता मासूम है, इसकी फसाने पे नजर, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन।
2: थैंक यू, धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले अपना गाना भी बता जाइए, आपको कौन सा गाना सुनना है?
2: एक और सुना दें?
0: नहीं नहीं नहीं, आपको कौन सी फरमाइश करनी है गीत की वो बता दीजिए बस।
2: हाँ, हमको सुना दीजिए, संगम का एक गीत है, मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना।
0: ओके, थैंक यू सो मच,
2: धन्यवाद।
0: तो भैया ये तो थे हमारे एक और लिसनर चंद्रभान जी, और इसी के बीच में एक और लिसनर आ चुके हैं और लगता है फरमाइश आज हमारी लिसनर्स के साथ कॉलिंग में ही जाएगी। हेलो
3: हेलो
0: हेलो,
3: आवाज आ रही है?
0: अब बहुत तेज से आ रही है
3: जी, हम्बल बोल रहे हैं।
0: हमको पता है, तभी तो हम कह रहे हैं बहुत तेज से आ रही है।
3: अच्छा,
0: अंबर से जो भी आवाज आती है वो गूंज के समी तक आती है
3: जी।
0: चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं समझा, आपने हमारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब ये बताइए कि आप गेम के लिए तैयार हैं?
3: जी बिल्कुल तैयार हैं।
0: तो कौन सा गाना गाने वाले हैं आप?
3: तो गाना आप देंगे, गाना हम अपने घर से लाएं।
0: गाना आप अपने घर से लेकर आएंगे, शब्द हम देंगे कि जहाँ दिल है वहाँ तोता कर दीजिए।
3: अच्छा, ये गाना आपके लिए।
0: ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स सी हमें कौन सा तोता मिलता है।
3: तू का दिल, तेरा तोता का दिल, और

0: हेलो
1: हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, बस आप गुनगुनाइए।
0: बस
1: इतना ही है। वैसे गाना बहुत ही प्यारा था, थैंक यू सो मच। और आपका इस गाने हमने नोट भी कर लिया है।
0: हाँ, ये गाना आपके लिए स्पीड कर रहे हैं।
1: थैंक यू सो मच।
0: और ये गाना रहेगा मेरा, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल।
1: ओके, थैंक यू,
0: थैंक यू।
1: और ये थे हमारे साथ भैया, हमारे अंबर गोयल जी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। क्या ख्याल है, अगली फरमाइश अप्लाई कर दिया जाए? अगर हाँ, तो आइए एंजॉय करते हैं हमारे वारिस अंसारी जी की फरमाइश फ्रॉम लुधियाना। और आप सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा। अभी भैया हमारे पास पूरा एक घंटे और है, तो जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि बैक टू बैक आज अपना फ्राइडे स्पेशल 2 घंटे का प्रोग्राम चालू रहेगा।
2: दिल ने इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना।
1: ऑल राइट, तो अगेन माफी चाहेंगे इस गाने को बीच में रोकने के लिए, लेकिन एक और लिस्टर है हमारे पास और शायद वो इंदौर से हैं, तो आइए इंदौर वालों का स्वागत करते हैं। वैसे एक बात बताइए आपने।
3: हेलो जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया।
1: नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया। और ये बताइए कि आपने इंदौर वालों को बता दिया है कि आज आप ऑन ईयर हैं?
3: बिल्कुल बता दिया, और ऑन ईयर बिल्कुल सब श्रोता सुन भी रहे, और एक गीत भी थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगा मैं।
1: चलिए गुनगुनाइए।
3: तोता टोटे टोटे हो गया, तोता टोटे टोटे हो गया, तेरे प्यार में तेरे इंतजार में, तोता टोटे टोटे हो गया तोता।
1: क्या बात है, कमाल का गाना है। बस एक शब्द बदलना होता है और गाना रोमांटिक से फनी हो जाता है।
3: हाँ बिल्कुल, तो हमने दिल को ना तोते में बदल दिया
1: जी। और ये कहाँ पता है हम, ये आज आइडिया हमें आया कहाँ से था? एक्चुअली हम बचपन से ऐसे ही गाने गाते आ रहे थे। जब अलका जी का एक बहुत फेमस गाना आया था, दैया दैया दैया रे, और हम उस वक्त गाते थे दैया दैया दैया रे, भूत दूध वाले भैया, और हम गाते थे दूध वाले भैया रे, तो हमने सोचा क्यों नहीं अब बचपन की चीजें।
3: यहाँ हम कैसे गाते थे उसको, गैया गैया गैया रे, घास खा गई गैया रे।
1: क्या बात है। और तो हमने हमेशा
3: गाय को ना, गाय को हमारी भाषा में इधर ना गैया बोलते, गैया,
1: और हमारे वहाँ भी गैया ही बोलते हैं।
3: तो गैया गैया गैया रे, और घास खा गई गैया रे।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा
3: जी, थैंक यू।
1: तो भाई ये तो थे हमारे साथ इंदौर से नरेश प्रजापति, और आप एंजॉय कर रहे वारिस जी की फरमाइश फ्रॉम लुधियाना, ये माना मेरी जा, मोहब्बत सजा है, मोहम्मद रफी की आवाज है। तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए लेट्स सी क्या किसी और का भी दिल तोता होता है या नहीं।

ते हैं आपके अपने मैसेजेस की तरफ, यानी कि आपके चैट बॉक्स की तरफ। बहुत सारी कॉल्स लेने के बाद आप एंजॉय करते हैं हमारे लुधियाना से आई फरमाइश, वारिस जी की फरमाइश को। एंड इसके बाद है ओके, आप लोगों के लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे तो आइए उन मैसेजेस को ले लेते हैं। गुलाबशाह जी, मोहम्मद मुसीफ जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं लगातार, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड आफ्टरनून। अति मैम गुड आफ्टरनून टू यू, कहीं आप अंसारी तो ना हो। हाँ जी, तो हमारे अंसारी जी थे, जावेद अंसारी जी। एनवती मैम आपको भी टास्क लेना चाहिए जी, हम तो टास्क लेते ही रहते हैं तभी तो आपको जाकर देते हैं। एंड मैं भी आ गई, आपका स्वागत करते हैं ओके। आकांक्षा के प्रोग्राम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, एक घंटा ऐसे निकल जाता है जैसे दस मिनट का घंटा हुआ। अजी ये बताइए तरह, ये आकांक्षा मैम जी का प्रोग्राम है कि उन्नति मैम जी का? आई थिंक आप कन्फ्यूज हो चुके हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि आकांक्षा मैम के साथ आपने बहुत इन्जॉय किया था और उनके साथ सच में पता नहीं चलता था कि कब एक घंटा 10 मिनट में निकल जाता है। बहुत खूब लिखा है किरण जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्नति मैम आप भी कभी फंसोगे इस गेम में, लेट्स सी, देखते हैं। फिलहाल अभी तो आप फंस रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। घर में अपने तोते का मन ना लगे तो पड़ोसी के पिंजरे में डाल सकते हैं। अब ये तो आपके ऊपर है कि भैया पड़ोसी आपका तोता रखेगा कि नहीं रखेगा। लगातार आपके मैसेजेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए प्ले करते हैं अपनी अगली फरमाइश को, अगले सॉन्ग को, जो कि हमारे पास आई है सुनील कुशवाहा जी की तलाश फिल्म से, रब्बा इश्क ना होवे। इंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हालांकि ये तलाश से नहीं अंदाज से है। तो सुनील जी आप इंजॉय करते रहिए, आपका अपना कॉल ट्यून गुंडा, आपकी अपनी फरमाइश का वक्त है। और ये गाना फिल्माया गया अक्षय कुमार, लाला दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर, अलका जी, कैलाश के, सपना मुखर्जी और सोनू निगम की आवाज़ में।

और आप सुन रहे थे हमारे सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश फ्रॉम अंदाज। और आइए चलते हैं अगली गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास है समरीन जी का राता लंबिया लंबिया। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

तेरे संगे और ये फरमाइश थी हमारे समरीन की। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। त्रिपुरा से आप सुनने जा रहे हैं अविनाश जी की फरमाइश, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप अपना सुन रहे हैं कॉल ट्यून गुंडा अजय देवगन और रवीना टंडन पर फिल्माया गया सॉन्ग उदित नारायण और अलका जी की आवाज में 1994 से समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत।

और ये फरमाइश थी हमारे अपने त्रिपुरा से अविनाश जी की, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। गुलफशाह सिद्दीकी जी की फरमाइश हमारे पास आ गई है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आवाजें आपके अपने उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की। एंड धर्मेंद्र मोहन जी, आप प्लीज अपने गाने का नाम मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपके गाने को ट्यून कर सकूं।

और आप सुन रहे थे गुलफ्शा सिद्दीकी जी की फरमाइश पर जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। अगली फरमाइश हमारे पास आई है रईस साहब की, तो आइए एंजॉय करते हैं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गुंडा। और हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि हमारी साक्षी जी की, राजू सलमानी जी की, कमल नयन जी की, राजू जी की, राम नरेश जी की, जावेद अली जी की, रोशनी जी की, चंद्रमान जी की और अरविंद जी की, नागेश्वर धाकर जी की, सार्थक जी की और ऑफ कोर्स आपके अपने नरेश प्रजापति जी की है।

हाँ जी, और आप सुन रहे हमारे रईस साहब की फरमाइश, दिल जिगर नजर क्या है, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, जो कि हमारी साक्षी जी की है। मैनू पैसा नहीं चाहिदा, मैनू प्यार चाहिदा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे होगा वो होगा कमल नयन जी का, उसके बाद राजू जी का, फिर राम नरेश जी का, फिर जावेद जी का, उसके बाद रोशनी जी का, चंद्रमान जी का, इसके बाद हमारे अंबर गोयल जी का, अरविंद जी का, नरेश प्रजापति, और आपकी अपने नागेश्वर धाकर जी का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉल ट्यून गोंडा।

एंड ये थी फरमाइश हमारे साक्षी जी की। बाबू अंसारी जी फ्रॉम बाराबंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आपने लिखा है गुड आफ्टरनून मैम जी, कैसी हैं आप, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड किरण जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नागेश्वर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एंड ओके आज मैम कसूर मसूर, मसूर की दाल होती है फिलहाल। आइए एंजॉय करते हैं अगले गाने को, और आपकी लगातार मैसेजेस को भी हम देख रहे हैं, चैट बॉक्स भी हमारी नजर में है। एंड ऑफकोर्स अगला गाना पेश करते हैं आपके लिए हम कमल नयन जी की फरमाइश। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर की अपनी अगली फरमाइश को, कॉलोजी उन गोंडा का नेक्स्ट डिमांडेड सॉन्ग कौन सा होने वाला है बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय कीजिए तुमसे मिलने को दिल करता है और बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। स्टे ट्यून्ड।

तुमसे मिलने को दिल करता है, अरे बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है। फूल और कांटे फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे ये गाना, और फरमाइश थी हमारे कमल नयन जी की। इसके बाद है ओके कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए, ज़रूर आपका गाना प्ले करेंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अंबुज पांडे जी ने बहुत सारे तोते भेज दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी का कहना है कि भैया आज सपने में भी तोता आएगा। वहीं पर मुसीब जी कह रहे हैं कि आज होशियार रहना क्योंकि तोता काट भी सकता है। जी हाँ, फिलहाल हमारा तोता नहीं काटेगा क्योंकि सारे के सारे चैट बॉक्स के अंदर ही हैं। एंड इसके बाद नागेश्वर जी ने भी हमें एक आइडिया दिया है अगले गेम का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला गेम बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। एंड इसके बाद लगातार आप ही के मैसेजेस बने हुए हैं। आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग हमारे पास जो है वो है हमारे राजू जी का, जो सुनना चाहते हैं सबसे पहले तेरी पूजा, एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन है जो हमारे गणपति बप्पा पर है। तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नागेश्वर जी लिख रहे हैं, जरा सा शुक्रिया तो कर दो इन नाजुक हाथों का, देखो आपकी तारीफ में कितने प्यारे प्यारे शब्द लिखता है। जी हाँ, बहुत बहुत प्यारे आपके हाथ हैं और बहुत बहुत प्यारा आपका दिमाग है जो आपको इन शब्द चुनने का मौका देता है।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। रामनरेश जी की तरफ से आया है हमारे पास गंगा जमुना से ढूंढो ढूंढो रे साजना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने की उस पार लेकर के हमारे जावेद जी की फरमाइश को। सो स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे राम नरेश जी की। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, और जावेद जी की फरमाइश पे आप सुनने जा रहे हैं दिल की आरजू। एंड इसी के साथ हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारी रोशनी जी की है। तो सुनते रहिए मुस्कुराते।

वक्त है अगली फरमाइश को ट्यून करने का। आप सुन रहे थे जावेद जी की फरमाइश को, और जावेद जी हमारे साथ चैट बॉक्स में भी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और हमने भैया गेम बंद किया तो चैट बॉक्स में गेम चालू हो चुका है। फिलहाल आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून करने के लिए। रोशनी जी ने कहा था कि हमें अपनी पसंद का एक गाना सुना दीजिए, और सुबह से हम सिर्फ एक ही गाना एंजॉय कर रहे हैं, और उस गाने का नाम है कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। तो आप इसको एंजॉय करते रहिए कुमार सानू और साधना की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड।

0: रहे थे बहुत ही प्यारा सा नगमा जिसको आज हम सुबह से गुनगुना रहे हैं। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। चंद्रभान जी की फरमाइश हमारे पास आई है संगम से, मेरे मन की गंगा। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर जो कि हमारे अंबर गोयल जी की है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच रीना शर्मा जी, आपको पसंद आया गाना कितनी हसरत है, थैंक यू सो मच। एंजॉय करते रहिए।
1: मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल।

0: सनम होगा।
1: और ये फरमाइश थी हमारे चंद्रभान जी की, और आइए ट्यून कर लेते हैं अगली फरमाइश जो कि हमारी अंबर गोयल जी की, और वो सुनना चाहते हैं बादशाह का गाना कर गई जो लड़की ब्यूटीफुल। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बहुत ही हाई बीट सॉन्ग आ गया है आपकी शाम को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाने के लिए।

0: मैं लड़की ब्यूटीफुल करके चूर
1: और ये फरमाइश थी हमारे अंबर जी की, जिन्होंने कहा था कि हमें हाथों हाथ फ्लोर खाली कर दो क्योंकि उनको नाचना है और उनका तो पता नहीं, लेकिन अरविंद जी ने फुल ऑन डांस शुरू कर भी दिया है। अच्छा तो आप बहुत हंस रहे हो, वैसे हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, आप खाना खाते वक्त भी मेरी बातों को याद करके हंसोगे, खाना अटक जाएगा और पानी पियोगे। आप मुझे दुआएं दे रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं? फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। नरेश प्रजापति की ये फरमाइश पर हम पेश करते हैं, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो, और इस गाने को उन्होंने डेडिकेट किया है अपने कुछ परम मित्रों को, गजराज जी, मंगलीलाल जी, अनु जी, राहुल जी और सभी लिसनर्स के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग। एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अपनी अगली फरमाइश जो कि हमारे सार्थक जी की है, अरविंद जी की है एंड हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की, नागेश्वर जी की और सुरेश जी की है। स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे हैं हमारे नरेश प्रजापति जी की फरमाइश। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास आया है सार्थक जी का और वो सुनना चाह रहे हैं, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड चैट बॉक्स में हमारे साथ महेंद्र दीपन जी फ्रॉम राजस्थान जुड़ गए हैं। एंड इसके बाद उन्होंने लिखा है, नमस्कार आर्यवंती मैम जी, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार रहा। आपने पूरे प्रोग्राम में ऐसा समा बांधा कि लगता है बहुत लोगों के तोते उड़ गए हैं। बहुत हंसी आई मैम जी, आज का प्रोग्राम बहुत खूब इंजॉय किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजॉय करते रहिए।

एंड ये फरमाइश थी हमारे सार्थक जी की, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे पास है धर्मेंद्र मोहन जी और अरविंद जी की फरमाइश पर। एंजॉय करते रहिए, मिलेंगे हम अगले सॉन्ग को लेकर के, जो कि हमारे सुरेश जी की और नागेश्वर धाकर जी की है।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे सुरेश जी की फरमाइश है, फ्रॉम चौक। बहुत याद आए लता जी की आवाज में और मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनते रहिए, हम मिलेंगे अपनी आखिरी फरमाइश को लेकर के आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे सुरेश जी की फ्रॉम चौक। और आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारे नागेश फधाकर जी की है और ये गाना डेडिकेट करते हैं हम उन सभी लिसनर्स को जिन्होंने आज अपनी फरमाइशें हम तक नहीं भेजी है, जिसमें हमारी किरण जी भी जुड़ गई हैं, हमारी नई लिसनर, हमारे अंबुज जी, अंबुज पांडे जी एंड रीना शर्मा जी फ्रॉम उत्तराखंड, जिनकी फरमाइश आज हम तक नहीं आई थी, तो ये उन सभी लोगों के लिए। एंड महेंद्र जी भी ऑफकोर्स, बिकॉज उनकी फरमाइश भी आज हमारे पास नहीं आई है, तो ये गाना डेडिकेट करते हैं हम आप सभी को। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसके बाद हमारे आखिरी फरमाइश जो है वो है हमारे इम्तियाज अहमद जी की, तो उनके गाने को भी प्ले करते हैं। लेकिन इस गाने के उस पार आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। लगातार पिछले 2 घंटे से मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी एंजॉय कीजिए मेरी तरफ से डेडिकेटेड सॉन्ग आप सभी के लिए।

और ये फरमाइश थी हमारे नागेश वधाकर जी की, जिसको आप सभी के लिए डेडिकेटेड था। एंड ओके, तो भैया हमें कहा गया है कि पीयू का नाम भी ले लीजिए, तो भैया पीयू जी आपके लिए भी गाना डेडिकेट किया गया है नागेश वधाकर जी की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपका भी 2 घंटे लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही लिखा है आपने, सच ही कहे तो आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत हंसने का मौका मिला। आप ऐसे ही हर रोज़ नया कुछ ना कुछ लाते रहो ताकि हम इंजॉय कर सके, आप लोगों के साथ मौज मस्ती बनी रहे, हमारा पागल सदा आपके पागल के पास रहे, यानी कि दिल हमारा सदा आपके दिल के पास रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने डिकोड कर लिया। महेंद्र जी लिख रहे हैं बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा आज नदी मैम जी, लेकिन आज हम बिजी थे इसलिए कॉल नहीं कर पाए, जिसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमने सुना ज़रूर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। फिलहाल मैंने आपका फीडबैक रीड कर लिया है, अंबर जी की तरफ से भी बहुत सारे इमोजीज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी फरमाइश हमारे इम्तियाज अहमद जी की है, सुनते रहिए मुस्कुराती रहिए। इसी के साथ अब चाहूंगी आपसे इजाजत, वक्त हो गया है मेरा विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल। आप सुन रहे हैं गोंडा कापना FM, रेडियो 89.6 FM। स्टे ट्यून्ड।

जाते जाते मुझे याद आया भैया कि हमारे राजू जी की भी कॉल आ चुकी है और राजू जी की फरमाइश भी हमारे पास आ चुकी है, तो आइए एंजॉय करते हैं उनकी फरमाइश को, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूँ आईके श्रीवास्तव।
2: और मैं रचना शर्मा।
1: लेकर हाजिर हूँ गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राष्ट्र कल्याण, शांति, समृद्धि एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प की सिद्धि है, जनपद में विभिन्न मंदिरों पर महायज्ञ एवं विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित इन धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने सहभागिता का राष्ट्र की उन्नति, शांति और समृद्धि की कामना की। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत जनपद में धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन के माध्यम से राष्ट्र कल्याण और विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पृथ्वीनाथ मंदिर, जेल रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर, कचहरी रोड स्थित विश्वकर्मा भगवान मंदिर में महायज्ञ एवं विशेष अनुष्ठान संपन्न कराया गया। इस अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना एवं हवन किया गया तथा विश्वकर्मा भगवान से देश एवं प्रदेश की सुख शांति समृद्धि और विकास की प्रार्थना की गई है। कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया।
2: गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र में 12 अप्रैल को हुए खाद विक्रेता आनंद कुमार पांडे हत्याकांड में 5 महीने से फरार चल रहे आरोपी त्रिभुवन शुक्ला को पुलिस ने बुधवार शाम करीब 6 बजे गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने त्रिभुवन को गोंडा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कराया और कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ये वारदात 12 अप्रैल की मध्यरात्रि बग्गी रोड स्थित न्यू मेडलाइफ हॉस्पिटल में हुई थी। 40 वर्षीय आनंद कुमार पांडे अपने भांजे सत्य प्रकाश शुक्ला के साथ हुए विवाद को सुलझाने अस्पताल पहुँचे थे। इसी दौरान उनके साथ मारपीट और चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल आनंद की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आनंद कुमार पांडे का भांजा सत्य प्रकाश शुक्ला न्यू मेडलाइफ हॉस्पिटल में वार्ड बॉय अनुपम शुक्ला के साथ ड्यूटी को लेकर विवाद में पड़ गया था। विवाद के बाद सत्य प्रकाश ने अपने मामा आनंद को फोन कर अस्पताल बुलाया था। आनंद वहां विवाद सुलझाने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान वार्ड बॉय अनुपम शुक्ला ने उनके साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद आनंद की मौत हो गई थी।
1: जनपद गोंडा के कलेक्ट्रेट कचहरी सभागार में उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं 2026-47 के प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने की। बैठक में एकीकृत बागवानी योजना तथा ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना PMFME के अंतर्गत किया जा रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा संचालित उद्यान एवं कृषि आधारित योजनाओं का लाभ पात्र किसान तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। उन्होंने योजनाओं के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि अनुदान एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि अधिक से अधिक किसान एवं योजनाओं का लाभ उठा सके। बैठक में ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जल संरक्षण के साथ साथ सिंचाई की तकनीकों को बढ़ावा देना, उन्होंने कहा कि कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ड्रिप एवं अन्य सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं मुख्यमंत्री राज आधुनिक विकास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री, तकनीकी मार्गदर्शक तथा बागवानी से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।
2: गोंडा में गरीब परिवारों के लिए बढ़ती महंगाई के दौर में चीनी की मिठास से वंचित हो रहे गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बीच अब उन्हें सस्ती चीनी मिलेगी। शासन के निर्देश पर गुरुवार सुबह 11 बजे से गोंडा जिले के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर चीनी का वितरण शुरू हो गया है। इस वितरण अभियान से जिले के 65,000 से ज्यादा अंत्योदय परिवारों को फायदा होगा। इन परिवारों से जुड़े करीब 2.25 लाख सदस्यों को महंगाई से सीधी राहत मिलेगी। खुले बाजार में चीनी के दाम 70 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गए थे, हालांकि अब कीमतों में थोड़ी कमी आई है।
1: इस समय शहर से गांव तक गणेश महोत्सव का उल्लास एवं पूजन अर्चन के साथ पंडालों में विराजे विधुरहर्ता गूंज रहे जय जय कारे। बता दें कि नगर में चारों स्थान पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर विधि विधान से पूजन शुरू कर दिया गया है। मंदिरों और पूजा पंडालों में सुबह शाम श्रद्धालुओं दिया गया है मंदिरों और पूजा पंडालों में सुबह शाम श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। गणेश महोत्सव समिति की तरफ से वजीरगंज, नवाबगंज, तरबगंज आदि क्षेत्रों में नाना प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं।
2: गोंडा के आनंदेश्वरपुरम कॉलोनी जानकी नगर स्थित सत्यदेव सिंह मार्ग पर श्री श्री 1008 गणपति पूजन समारोह का 11वां आयोजन किया गया है। आयोजन 14 सितंबर से शुरू हुआ था, जो 20 सितंबर को विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। समारोह को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। आयोजन स्थल पर गणपति पूजन के साथ साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सहभागिता से कार्यक्रम में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। आयोजकों की ओर से श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आयोजन से जुड़े अशोक कुमार सिंह एडवोकेट ने बताया कि गणपति पूजन समारोह के समापन अवसर पर 20 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसमें श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान गणपति का आशीर्वाद लेने की अपील की है।
1: जनपद गोंडा में जिलाधिकारी ने लॉन्च किया एक योजना। बता दें कि गांव में पहुंचेगा प्रशासन, मिलेगा योजनाओं का लाभ। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। बता दें कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण को अब ब्लॉक और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर मौके पर आवेदन सत्यापन और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाएगा। इसके लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक सभी विकास खंड में 7 दिवसीय बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तैयारी और निगरानी के लिए निर्देश जारी किया है। अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। 17 सितंबर को सेवा दिवस आशीर्वाद का दिया से शुरुआत किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों की सूची तैयार करने के साथ स्वास्थ्य जाँच, रक्तदान और दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम होंगे। अस्पतालों में फल वितरण और विश्वकर्मा जयंती पर टूल किट भी बांटी गई है। सरकार आपके द्वार शिविर में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ विभिन्न योजनाओं के आवेदन और सत्यापन की सुविधा भी दिलाएगी।
2: गोंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान 2047 गुरुवार सुबह 11 बजे से शुरू हो चुका है। इसके तहत गुरुवार शाम 6 बजे से 4 बजे तक जिले में 10 लाख से ज्यादा आशीर्वाद के दिए जलाए गए। जिला प्रशासन ने अलग अलग विभागों को दिए जलाने का लक्ष्य दिया है। इन दियों को जलाकर विकसित भारत 2027 का सामूहिक

0: सार्वजनिक संकल्प लिया गया। दिए जलाने के लिए कई सार्वजनिक स्थल और मंदिर चिन्हित किए गए हैं।
1: जनपद गुना में घटते जल स्तर से कटान हो गई तेज, 40 बीघा भूमि नदी में समाई, खतरे के निशान से करीब 24 सेंटीमीटर नीचे पहुंची सरयू नदी। बता दें कि उमरी बेगमगंज नवाबगंज क्षेत्र में सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ ही माझा क्षेत्र में कटान तेज हो गई है। अली परसोली क्षेत्र में करीब 40 बीघा भूमि नदी की तेज धारा में समा गई है। खेतों में अब भी पानी भरा होने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं दक्षिणी माझा क्षेत्र में कटान की चपेट में आने से एक पक्का मकान ढह गया है, जिससे प्रभावित परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। लेखपाल अंकित वर्मा के मुताबिक ऐली परसोली क्षेत्र में तेज धारा और कटान के कारण करीब 40 बीघा भूमि नदी में समा गई है। दक्षिणी माझा निवासी कुंवर बहादुर यादव का पक्का मकान भी बाढ़ के पानी में ढह गया है।
0: गोंडा के तरबगंज ब्लॉक में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई का 3 वर्षीय अधिवेशन एवं चुनाव बुधवार को किसान बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों की समस्याओं, संगठन की भूमिका और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिवेशन के बाद सहमति के आधार पर नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रेम नारायण पांडे रहे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी और राष्ट्रीय संगठन सचिव अर्जुन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शिक्षकों और संगठन के अन्य सदस्यों ने बधाई दी। विधायक प्रेम नारायण पांडे ने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने शिक्षकों के लिए बैंक के माध्यम से कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की भी जानकारी दी। विधायक ने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों कृष्ण कुमार दुबे, देवेंद्र कुमार सिंह, भृगुमणि तिवारी, कृष्ण देव लाल श्रीवास्तव, लक्ष्मी दत्त त्रिपाठी और कृष्ण कुमार पांडे को सम्मानित भी किया।
1: राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी। बता दें कि जिला आपूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक जनपद में 6 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक बताए जा रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग कार्ड में नाम बढ़वाने घटवाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभिलेख साथ नहीं लाते। ऐसे में उन्होंने बताया कि रोज करीब 100 से ज्यादा लोग लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को राशन कार्ड में यदि परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाना है तो परिवार रजिस्टर की नकल व आधार कार्ड की प्रति लाना जरूरी है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के लोगों को परिजनों के आधार कार्ड की प्रत लानी अब जरूरी होगी।
0: गोंडा जिले के रहने वाले समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विनोद कुमार श्रीवास्तव को देवीपाटन मंडल का प्रभारी बनाया गया है। वे गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के 4 जिलों में पार्टी को मजबूत करेंगे, साथ ही संगठन की सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मंडल की हर विधानसभा में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समीक्षा रिपोर्ट पार्टी कार्यालय को देंगे।
1: जनपद गोंडा के ओजीरगंज क्षेत्र में खंभे से टकरा कर पलटी पिकअप, 3 लोग हुए जख्मी। बता दें कि ओजीरगंज टिकरी मार्ग पर राजापुर हाता के पास अलमारी से लदी पिकअप खंभे व बेंच से टकरा कर पलट गई। हादसे में बेंच पर बैठे करनीपुर निवासी हरिप्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पिकअप सवार बहराइच के टिकोरा मोड़ निवासी कुलदीप व प्रताप सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। बिजली विभाग के कर्मचारी रत्नाकर पांडे ने बताया कि पिकअप चालक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
0: गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के पथार गांव के तिवारी बाजार में आपसी विवाद को लेकर एक महिला से मारपीट की गई। पीड़िता संगीता तिवारी पत्नी दीपक तिवारी ने थाने में तहरीर देकर अपने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। संगीता ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे आरोपी ध्रुव तिवारी पुत्र दीनानाथ तिवारी और शिवम तिवारी पुत्र विजय तिवारी ने उन्हें गाली गलौच देते हुए बांका, फरसा और लोहे की पाइप से पीटा। इस मारपीट में संगीता को गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने संगीता को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता संगीता का कहना है कि आरोपी आए दिन मारपीट करते हैं। उनकी शिकायत के बावजूद उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनके हौसले बढ़े हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने बताया कि संगीता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।
1: जनपद में जनगणना 2027 में जनपद जनपद के हर परिवार की जानकारी सही दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दिया है। घर घर पहुंचकर परिवारों का ब्यौरा जुटाने वाले प्रगणक और उनकी निगरानी करने वाले सुपरवाइजरों को पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला व तहसील स्तर के अधिकारियों से लेकर फील्ड ट्रेनरों के प्रशिक्षण की तिथियां तय कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रमोद झा के मुताबिक जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण 30 सितंबर तक पूरा होगा। इसमें CDO, ADM, BSA, DIOS, NIC, DPRO, SDM, तहसीलदार, आशासी अधिकारी, ट्रेजरी अधिकारी और जनगणना लिपिक शामिल होंगे। एक बैच में लगभग 30 से 35 प्रतिभागी रहेंगे। फील्ड ट्रेनर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण 5 चरणों में 7 से 9 अक्टूबर तक, 14 से 16 अक्टूबर, 22 से 24 अक्टूबर तथा 3 से 5 नवंबर और 12 से 14 नवंबर तक होगा।
0: गोंडा में बुधवार शाम करीब 4 बजे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला पंचायत सभागार परिसर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे। उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद शाम 5 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष मोहित भारती ने किया।
1: जनपद गोंडा में करीब 1.48 लाख वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन की पूरी रकम जल्द मिलने वाली है। फिलहाल 3 महीने की पेंशन में राज्यांश की रकम खातों में भेजी गई है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भेजी जाने वाली रकम अभी बाकी है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार करीब 60 से 69 वर्ष आयु के लाभार्थियों के पेंशन में 80% राज्यांश और 20% केंद्रांश है। इस आयु वर्ग के खातों में फिलहाल 2400 रूपए भेजे गए हैं। वहीं 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी 50-50% बताई जा रही है। इस वर्ग के खातों में अभी 1500 रूपए भेजे जाएंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतप्रकाश सिंह के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत भुगतान होने के कारण फिलहाल राज्यांश ही जारी हुआ है। केंद्रांश की रकम जल्द जारी होने की उम्मीद जताई गई है।
0: हर गोवंश को रोज मिलेगा 10 किलो हरा चारा, होगा करार। गौशालाओं में संरक्षित गोवंश के लिए अब हरे चारे की कमी आड़े नहीं आएगी। पशुपालन विभाग ने प्रत्येक गोवंश को प्रतिदिन करीब 10 किलो हरा चारा उपलब्ध कराने की कवायद शुरू की है। इसके लिए गौशालाओं के आसपास खेती करने वाले किसानों से अनुबंध कराने की तैयारी है। इससे जहां गोवंश को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, वहीं किसानों को चारे की खेती से अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलेगा। इससे पहले प्रत्येक गोवंश को प्रतिदिन 5 किलो हरा चारा दिया जाता था। जिले में मौजूदा समय में 94 गौशालाओं में 18,000 से अधिक गौवंश संरक्षित हैं।
1: जनपद गोंडा के कनेलगंज क्षेत्र में ट्रक मालिक और स्थानीय ट्रांसपोर्टर ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक किया है। बैठक में ट्रांसपोर्टर ने जनपद में लगातार बढ़ रही ओवरलोडिंग और बाहरी वाहनों की एंट्री को लेकर नाराजगी जताई है। ट्रक मालिकों ने आरोप लगाया है कि विभागीय लापरवाही के चलते बिना रॉयल्टी और ओवरलोड बाहरी वाहन गोंडा में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही एक ही नंबर पर कई वाहनों के चलने का भी गंभीर आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि इन मामलों की शिकायत संबंधित विभागों से कई बार की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय ट्रक मालिक के मुताबिक डीजल टोल टैक्स, वाहन के पार्ट्स लगातार महंगे होने से पहले ही ट्रांसपोर्ट कारोबार पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। ऐसे में बाहरी वाहनों द्वारा कम रेट पर गिट्टी और मोरंग की बिक्री किए जाने से स्थानीय ट्रांसपोर्टर को और अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
0: गोंडा तरबगंज विकास खंड के परास पट्टी मझावार डीह गाँव में बुधवार सुबह करीब 10 बजे खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने काट लिया। पीड़ित किसान उदल पासवान, जिसकी उम्र 36 वर्ष थी, अपने धान के खेत में दवा का छिड़काव कर रहे थे। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया, जिसके बाद वो मौके पर ही स्थान पर गिर पड़े। जानकारी मिलते ही आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग वहां पहुंचे। ग्रामीण सरवण कुमार और महेश पासवान ने उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरबगंज पहुंचाया। CHC पर तैनात डॉक्टर निकेश सिंह ने बताया कि किसान को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है।
1: गोंडा के अम्बेडकर चौराहे पर आज हजारों वकीलों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा और कई घंटों तक राहगीर जाम में फंसे रहे। वकीलों के इस आंदोलन का सीधा असर शहर के अन्य व्यस्त इलाकों पर भी पड़ा है। अंबेडकर चौराहा पूरी तरह से बंद हो गया था, जिससे ITI चौराहा, प्रधान डाकघर और LVS चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। दोपहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहन तक स्कूली बसें भी जाम में घंटों फंसी रही। इससे आम जनता शिक्षा, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी।
0: मेडिकल कॉलेज में मरीज और सुरक्षा गार्डों में हुई झड़प। मेडिकल कॉलेज में तैनात गार्डों व मरीजों से आए दिन झड़प हो रही है। गार्डों की मनमानी से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में ओपीडी संचालित हुई तो मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ गई। शाम 4 बजे तक संचालित होने वाले मेडिकल कॉलेज में 2 बजे तक ही 2300 से अधिक मरीज आ चुके थे। डॉक्टरों के कक्ष के सामने लंबी लाइनें लगी रही। मेडिकल कॉलेज के पर्चा काउंटर पर दोपहर 12:30 बजे लंबी लाइनें लगी रही। यही हाल दवा काउंटर का भी रहा। तरबगंज के कौशल ने बताया कि दवा लेने के लिए काफी समय से लाइन में लगे हुए हैं। भीड़ होने के कारण गर्मी भी बढ़ रही है और यहाँ काउंटर की संख्या बढ़ जाए तो सहूलियत मिलेगी।
1: बीते दिनों करनेलगंज के रक्सड़िया गांव में व्यापारी विनोद सहनी की हत्या के बाद सियासी गतिविधियां बढ़ गई हैं। अपनी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी और मंडल अध्यक्ष सियाराम मौर्य को पुलिस ने मृतक के परिजनों से मिलने के लिए रोक दिया है। पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज दोनों नेताओं के समर्थक गोंडा लखनऊ मार्ग पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। सूचना मिलने पर कोतवाल नरेंद्र प्रताप राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटने और रास्ता खोलने के लिए समझाया। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने और बल बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष समेत करीब 24 लोगों को हिरासत में ले लिया। सीओ आनंद राय के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों पर शांत भंग के आरोपों में कार्रवाई भी की गई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र लहरी ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सरकार की दमनकारी नीति बताया है। जनपद गोंडा में गणेश चतुर्थी मूर्ति विसर्जन एवं दुर्गा पूजा के दृष्टिगत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोंडा की अध्यक्षता में सेंट्रल पीस कमेटी की एक बैठक सम्पन्न की गई है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पीस कमेटी के सदस्यों एवं आयोजन समितियों के पदाधिकारियों से उनके क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। संबंधित आयोजक से मूर्ति स्थापना स्थल, जुलूस एवं शोभा यात्रा के मार्ग विसर्जन स्थल तथा कार्यक्रम की तिथि एवं समय तथा अपेक्षित भीड़ के संबंध में जानकारियां हासिल की गई हैं तथा उन्होंने कहा कि सभी आयोजक निर्धारित नियमों एवं अनुमति के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित करें। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। इंद्रेश को दे इजाजत। नमस्कार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

आड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो की है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72-34-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें,
5: सारे गामा कार्मा
4: सही
5: डिजिटल ऑडियो प्लेयर
4: और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

फिलहाल कहानी कितनी लंबी होने वाली है ये तो मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, बस ऊपर बैठा वो खुदा जानता है। इसीलिए एक दूसरे से मिलते रहिए, जुलते रहिए और इस कहानी को दो लफ्ज़ों की नहीं, दो करोड़ शब्दों की बना देते हैं। नहीं नहीं, और भी लंबी। इन्फिनिटी एक शब्द है ना जो फिजिक्स ने हमें दिया है, तो उसका सही प्रयोग करते हैं इन लफ्ज़ों के लिए। दो लफ्ज़ों की कहानी क्यों रखें, इस कहानी को इन्फिनिटी तक पहुंचाते हैं। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आप सबके साथ आज इस म्यूजिकल इवनिंग को स्टार्ट कर रही हूं मैं, क्योंकि आज बात करनी है बॉलीवुड की। तो बॉलीवुड में म्यूजिक से बेहतर कोई शुरुआत हो नहीं सकती। जब भी कोई गाना दिल को छूता है तो हम जानना चाहते हैं यार ये किस सिंगर ने गाया, ये किस फिल्म का है, इसे कब रिलीज किया गया और मैंने अभी तक क्यों नहीं सुना। इसी के अगले स्टैंजा को सुनते हैं, पहले स्टैंजा को, ठीक है? तो आप लोग भी अगर एंजॉय करें तो आपके हार्ट्स, और मुझे पता चलना चाहिए आपकी कहानी दो लफ्ज़ों की है या फिर बहुत लंबी वाली।

फिलहाल आप सभी से मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही नए पुराने म्यूज़िक को फील करके हमारी लाइफ जो है वो झिंगा लाला हो जाती है। तो आप लोग बताइए कि चाहे वो गाने नए क्यों ना हो, चाहे वो गाने पुराने क्यों ना हो, वो जब भी बजते हैं उस दौर की याद दिलाते हैं। और आज भी कुछ नई पुरानी फिल्मों की बात करूँगी, कुछ ऐसी ही मूवीज़ की बात करूँगी जो हमेशा से, चाहे वो मतलब मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं करूँगी, आज मैं कुछ ऐसे अपने देश की कहूँगी कि फिल्म मेकर्स की बात करूँगी जिन्होंने हमेशा हमें एंटरटेन किया है, वो भी 100 on 100। मतलब अगर उनकी मूवीज़ आप देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे यार मैं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी बनाई हुई मूवी से डिससेटिस्फाई हो जाऊँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलयालम इंडस्ट्री की, जिसकी कोई भी फिल्म आप उठा कर देख लीजिए आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, बात अलग है कि हम लोग उसका हिंदी वर्जन देखते हैं क्योंकि मलयाली भाषा हमें आती नहीं है, पर मैं चाहूँगी कि मेरे लिसनर्स में कोई अगर ऐसा है जिसको मलयाली भाषा आती है वो प्लीज़ मुझे सिखा दे। रियली मतलब द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मूवीज़ आर मेड बाय द मलयालम मूवी मेकर्स। क्या फिल्में बनाते हैं यार, मतलब आप फिल्मों की कहानियाँ देखेंगे ना आप कहेंगे यार ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठ के आते हैं, इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट। और उन्हीं में से कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करूँगी। मैं नहीं चाहती कि आप लोग सिर्फ एक ही रूट पे चलें। मुझे पता है OTTs पे बहुत सारे वेब सीरीज़ आ रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं और लगातार बैक टू बैक हमें इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें मिल रही हैं, पर एंटरटेनमेंट के साथ कुछ नया अगर ना देखा जाए, कहते हैं कुछ तूफानी ना की जाए, तो क्या मतलब है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ना सिर्फ बॉलीवुड और मतलब टॉलीवुड तक रहें, हॉलीवुड तक ना रहें, आप भोजपुरी मूवीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं, आप मलयाली मूवीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर मुझे अवार्ड देना हो कि किसकी फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती हैं, जिनको देखने के बाद लगता है कि यार कुछ बढ़िया देखा, 2.5 घंटे पैसा वसूल, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम पड़ता है हमारी मलयाली फिल्म मेकर्स की मूवीज़ को देखने के बाद। फिलहाल मैं अपने लिसनर्स के लिए कविता डेडिकेट करना चाहती हूँ जो सुन के आपका दिल भी कहेगा वाह वाह वाह क्या बात है। तो कविता सुनिए ध्यान से। दिए मुंडेरों पे रख रहे हूँ, जमीन पे कलियां बिछा रहे हूँ। भाई कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था और लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया, मतलब धूमधाम से मनाने का मतलब दिए वगैरह जलाए। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि मतलब दिए जला के किसी को वेलकम किया जा सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिसनर्स का वेलकम भी थोड़ा दिए जला के ही कर दूँ, हाँ कविता के साथ। तो असली में दिए जलाऊँगी तो आपको दिखेंगे नहीं, वैसे घर में जला के आई हूँ वो दिखेगा नहीं आपको, तो लिसनर्स के लिए ऑन एयर दिए जलाए जा रहे हैं, डिजिटल दिए समझ लीजिए आप। तो गौर फरमाइएगा कि दिए मुंडेरों पे रख रहे हूँ, गली में कलियां बिछा रहे हूँ। दिए मुंडेरों पे रख रहे हूँ, गली में कलियां बिछा रही हूँ। कभी तो

हूँ। गली में कलियां बिछा रही हूँ, कभी तो उतरेगा चांद छत पर, कभी तो चमकेगी मेरी किस्मत, कभी तो आएगी।

बिछा रही हूँ। मेहंदी वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा हाई हो गई, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मेहंदी वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मेहंदी तो अभी जल्दी मैंने 30 पे लगाई थी तो वो मेरे हाथों पे लगी है, मतलब रिलेटेबल है। आगे सुनिए, आगे की पंक्तियाँ और आपको मतलब ओवरहेल्म फील करा देंगी, लगेगा कि आहा क्या अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए,

रही हूँ। भाई कुछ ज़्यादा ही लास्ट में भावुक करने वाली लाइनें थी, इतना तो मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो बस स्टार्टिंग की लाइनें पढ़ी, मुझे लगा कि अरे यार इस कलाम को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन लास्ट तक तो मुझे भावुक करने वाली लाइनें इसने बता दी और मैंने पढ़ भी दी, क्योंकि अच्छी लग रही थी यार। कुछ फीलिंग्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इमोशनल कॉन्टैक्ट ऐसा होता है जो शब्दों से हमें फील कराता है। शब्दों पर अगर हम ना जाएँ तो वो भावनाओं को जागृत करता है। तो फिलहाल के लिए आज की कुछ दमदार फिल्मों की बात कर लेते हैं और आप लोगों से जान लेते हैं कि आपने भी कोई मूवी देखी क्या? नहीं देखी तो फिर आज देख लेते हैं ना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी सिनेमा जाएं और फिल्में देख के ज़रूर आएं। वैसे मैं आज कुछ ख़ास फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जो स्पेशली आज रिलीज़ हुई हैं, और कुछ मलयाली मूवीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। वैसे आप लोग इसे भी जानना चाहती हूँ, वैसे मुझे पसंद है मलयाली मूवीज़, तो मुझे ये जानकारी मिलनी चाहिए कि मेरे लिसनर्स ने कौन कौन सी मूवी देखी और क्या मैंने वो देखी या नहीं, उसकी स्टोरी आप मुझे बताइए तो मैं भी जाके देख लूँगी। तो सबसे पहले बता दूँ, हैवान रिलीज़ हो चुकी है, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। इसके अलावा और मैं बता देती हूँ, दायरा भी आ चुकी है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक वाली मूवीज़ में जिनका नाम आता है, मतलब जो बहुत फर्स्ट क्लास वाली मूवीज़ हैं, उनके बारे में बता दूं, तो रेजिडेंट एविल ये एक इंग्लिश मूवी है, आप अगर देखना चाहें तो देखें, नहीं तो फिर आप नहीं देख सकते हैं तो ना देखें। भारत देश है मेरा, ये भी आज यानी कि 18 सितंबर को रिलीज़ हो चुकी है और अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको नहीं देखा है। और लव स्टोरीज 3 ये भी रिलीज़ हो चुकी है आज के आज। दायरा, जैसा कि मैंने बताया कि इसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, वाइब आ गई है। ओम का हरी आ गई है, द पैराडाइज तो 24 सितंबर को ही आ गई थी, आने वाली है, सॉरी थी मैं बता रही हूँ, वाह मैं मतलब आज 18 और मैं 24 पहले बुला रही हूँ, मैं 24 क्या सोचने लगी थी, हाँ अगस्त। फ़िलहाल आपको बता दूँ आने वाली मूवीज़ के बारे में, द पैराडाइज है, महाकाव्यश्री रामायण कथा श्री राम की ये आ रही है भाई, जिसका इंतज़ार था आपको बहुत दिनों से, ये भी आने वाली है। फिर आपका जो कहते हैं ना कि विवान मूवी जो कि 25 को रिलीज़ हो रही है, और इस मूवी के साथ ही आप मतलब अपना छठ पूजा इस बार मनाएंगे मन लगा के, ठीक है ना, 25 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए और एंजॉय करिए। अपकमिंग में और बता दूँ, वैसे आप लोग सोच रहे होगे ना कि दिवाली के आसपास कौन सी रिलीज़ हो रही है, वो भी मैं बता देती हूँ। दिमाग में बहुत सारी फिल्में लेके आई हूँ, बस डेट थोड़ा भूल भाल जाती हूँ। एनीवे ये सब तो चलता ही रहेगा। तो रामायणा पार्ट 1 आ रही है 6 नवंबर को, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, तो दिवाली पे ही आ रही है मोस्ट प्रोबेबली। इसके अलावा दिवाली पे स्पेशल आ रही है आपकी क्रिसमस कैरल भी आ रही है 20 नवंबर को, तो ये इंग्लिश मूवी है, अगर आप देखना पसंद करते तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। मैं ना रहा मेरा आ रही है 23 अक्टूबर को, इसके अलावा 23 को ही पहला प्यार दूसरी बार, ओह क्या बात है, ऐसा होता है, हो जाता है कभी कभी, तुम मेरे हो ये भी 23 अक्टूबर को आ रही है। राना वाली 16 अक्टूबर को आ रही है, नई नवेली आहा ये तो मैं देखूँगी बड़ा अलग सा नाम है, रफ्तार, वाटरफॉल, जेलर 2, प्रहार और उड़ता तीर, ओहे क्या बात है, बोक्षी, डोंगरी, उड़ता तीर तो बता चुकी हूँ मैं आपको, वाल्मीकि रामायणा भी आ रही है 2 अक्टूबर। मतलब यार रामायण की कई सारी मतलब मूवीज़ आ रही हैं, अब आपको जज करके बताना कौन सी वाली आपको ज़्यादा पसंद आई। तो फ़िलहाल के लिए आज की मूवीज़ के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है, तो पहले गाना सुनते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एक भी गाना नहीं सुना सिवाय मेरे, मैंने थोड़ा सा आपको गुनगुना के बोर कर दिया और क्या कहें, गा देती हूँ मैं ऐसे ही। तो चलिए सुनते हैं गाना आप लोग के लिए, ये सुहाना नया गाना है और आई होप आपके दिलों को भी सुकून पहुँचाएगा। दायरा में आपको देखने वाली है आपकी पसंदीदा तापसी और विकी। वैसे तापसी की मूवीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत अलग लेवल का काम करती है, और मैं दायरा को ही आज अच्छे से रिव्यू करूँगी, ज़्यादा बताऊँगी आपको। तो फ़िलहाल दायरा के गाने सुनते हैं और बताते हैं कि गाने कितने पसंद आए आपको। तो दायरा से टाइटल सॉन्ग दायरा आपके लिए।

तो चलिए ना, अब चलते हैं आपके साथ उस म्यूज़िकल जर्नी पे जहाँ के लिए हम निकले हैं। और आज सबसे पहले जिस मूवी को मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ, गुड इवनिंग चंदन, कैसे हैं चंदन जी? और दीपक जी कैसे हैं? दादा यादव जी कैसे हैं? चीनी मिल बजाज से गुड इवनिंग। नागेश्वर जी क्या हाल है, कैसे हैं आप? और हरीश चंद्र जी आपका भी स्वागत है, आप कैसे हैं? तो सभी के साथ आज की शाम की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले मूवी के बारे में बता दूं कि भाई मूवी आ चुकी है एक ऐसी जिसको देख के दिलवा हो जाएगा आपका बीटिंग फास्ट, ठीक है? तो चलिए नो देरी एट ऑल, चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी जो आपको कर देगी ओहो क्या कहने क्या कहने क्या कहने। सो जब भी दिल आपसे कहे कि कुछ नया करने का, तो आप आरजे बीना के साथ हो जाइए लाइव और कर लीजिए कुछ नया। सो सबसे पहले मूवी की बात कर ले तो इसमें आपको दिख जाएंगी आपकी फेवरेट हीरोइन तापसी। तापसी के साथ विकी हैं। और गाने इसके अगर बोलूँ तो मनमर्जियाँ हैं और बाकी सारे गाने काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट होने वाले हैं। और मूवी की स्टोरी बताऊँ तो सस्पेंस से भरी हुई है। और मैं अगर रिव्यू करूँ इस मूवी को और कुछ पॉइंट्स दूँ या स्टार्स दूँ, तो सबसे पहले तो ये मूवी आपको एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट दिखाएगी, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये मूवी मुझे और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहाँ पे प्यार और प्यार में दूरी दोनों चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है ये सिखाएगी, ठीक है? तो मेरे तरफ से तो ये मूवी बहुत अच्छी है, चाहे इसकी स्टोरी की बात करूँ या इसके गानों की बात करूँ। इसके मैक्सिमम गाने अमित त्रिवेदी और कुछ ऐसे भी हैं जो हार्ट टचिंग टाइप के हैं, ठीक है? तो एमी विर्क की आवाज़ भी आपको सुनने को मिलेगी इसमें। तो प्लीज़ इस मूवी को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट, दिस इज़ फॉर यू। तो चलिए चलते हैं इस मूवी की स्टोरी को और, मतलब कहते हैं ना कि इसके धागों को और खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मूवी कहना क्या चाहती है।

जैसे कि आप सभी को पता चला कि मूवी जो है रिलीज़ हो चुकी है, इसे बनाने वाली हैं मेघना गुलजार, निर्देशित भी इन्होंने किया है। अगर मूवी की मेकिंग की बात करूँ तो विनीत जैन, धवल जैन और जंगली पिक्चर्स के जो मेकर्स वो हैं, मतलब प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बनाया है। अब स्टोरी पे थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगी कि स्टोरी क्या कह रही है मूवी की, ठीक है। तो स्टोरी की अगर बात करें तो स्टोरी अपने आप में थ्रिलर से भरी हुई है। इसमें सस्पेंस आपको ज़्यादा मिलेगा और जितना भी आप सोचेंगे उससे अलग कहानी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको कुछ जगह ये सोचना पड़ेगा कि यार ये फिल्म कहना क्या चाह रही है, इतना हाई फाई सस्पेंस होने वाला है। तो चलिए अगली

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216-9976-9816-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

मत वाला जिया। तो चलिए अगली मूवी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है भारत देश है मेरा। मैंने कहा था ना कि अगली देशभक्ति टाइप की मूवी है। मूवी की बात करें तो इसमें ड्रामा है, राजनीति है, सामाजिक और मतलब सामाजिक इश्यूज की बात होगी और थ्रिलर भी होगा। वैसे इसको निर्देशित किया है आदर्श जैन ने और मुख्य इसमें जो म्यूजिक देने वाले जिनकी आवाज़ सुनने को मिलने वाली अनूप जलोटा, काफ़ी दिनों बाद इसमें गाना गाने वाले हैं आदित्य मोहन, के गुंजन पंत, इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। फिल्म की अगर बात करूँ, फिल्म की कहानी अगेन देखिए हमारे देशभक्ति फिल्में या तो हमारी आज़ादी के पहले से जुड़ी होती हैं या फिर आज़ादी के बाद देश की सुरक्षा से, और देश की सुरक्षा अक्सर हमें POK यानी कि पाकिस्तान और कश्मीर के जो कहते हैं ना झमेले हैं, जमीनी झमेले हैं, उनको लेके होती है। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा कश्मीरी पंडितों के दर्द को, वहाँ के आम नागरिकों की छुपी हुई सच्चाई को, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे जो सवाल उठते हैं उनके बारे में। तो मूवी की बात करूँ तो मूवी वन टाइम है, आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप देश प्रेम से जुड़े हुए हैं, और सॉरी मैंने गाने की बात की तो गाने के साथ साथ इस फिल्म में आपको दिखने वाले हैं अनूप जलोटा, ऐसा लुक देने वाले हैं, पहली बार अनूप जलोटा फिल्मों में काम करने वाले हैं। तो एक ये एक बड़ी खबर है कि इसमें अनूप जलोटा खुद आके मतलब एक्टिंग करेंगे और आप कह नहीं पाएंगे कि भाई ये कौन आदमी है जिसने मतलब आके सीधे गाना गाने की जो आदत है उसको छोड़ के एक नई आदत को अपना मतलब पैशन बना लिया यानी कि एक्टिंग। तो ये मूवी आपके लिए है, ठीक है, आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इसमें अगर गानों की बात करूँ तो गाने भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जितने हैं पैट्रियटिज्म की भावना आपके अंदर जगा देंगे, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं अब अगला गाना फिल्म हैवान से, और हैवान के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, ये फिल्म जितना ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है उतना मैं क्या ही कहूँ। तो इसका रिव्यू तो लास्ट वीक ही हो चुका है, लेकिन हाँ इसके गाने सुनने का दिन आज है, तो एक गाना सुन लेते हैं जो आपको और मुझको दोनों को खुश कर देगा। और इसी के साथ इसके बाद मैं कुछ मलयालम फिल्मों की बात करूंगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और उसमें मतलब कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनको आपको ज़रूर मैंडेटरी बेसिस पे देखना चाहिए। गुड इवनिंग, और लिखते हैं प्रमुख जी, आरजे बीना मैम जी, आपकी प्रस्तुति बेहद प्यारी लगती है, आपकी मीठी आवाज़ दिल को छू जाती है, जब आप मुस्कुरा कर कोई नगमा गुनगुनाती हैं, संगीत की महफिल में जैसे खुशियाँ उतर आती हैं, जब गुनगुनाती हैं फेरो ना नज़र से नजरिया, तो सच में सुहानी सी शाम बन जाती है। आपकी आवाज़ के उस प्यारे अंदाज से हर धुन और भी हसीन हो जाती है, आपकी आवाज़ में मिठास, प्रस्तुति में कमाल, हर कार्यक्रम में दिखता है आपका निराला अंदाज, आप यूं ही अपनी आवाज़ से दिल जीतती रहिए, हर महफिल को अपनी मधुरता से सजाती रहिए। क्या बात है प्रमुख जी, आज काफ़ी दिनों बाद आपने दर्शन दिए, क्या मतलब कहीं घूमने वगैरह गए थे या फिर सोचा कि एक लंबा ब्रेक लेके वापस आते हैं। तो चलिए सुनते हैं फिल्म हैवान से ये गाना, सैफ को काफ़ी दिनों बाद देखना है तो भाई हैवान आपको ज़रूर देखनी है।

0: लेके जन्म
1: लेके पहला पहला कदम जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई
2: लिख रहे हो ना।

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

जैसे ये गाना इतना भी आसान नहीं है कि कोई भी गा ले। वैसे ही मलयाली फिल्मों की बात मैं अगर करूँ तो वो भी ऐसी ही हैं जिनको आप इतनी आसानी से इमेजिन नहीं कर सकते उनकी स्टोरीज को। जब भी आप इमेजिन करने का सोचोगे आपके मन में एक नया म्यूजिक आके धीम ताना ना करके चला जाएगा। फिलहाल के लिए सबसे पहले टॉप मलयालम फिल्म्स की बात करूंगी, कौन सी रिव्यू, कौन सी रिलीज हुई, कौन सी मतलब आज रिव्यू करूंगी, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन सी मूवी आज रिलीज हुई। मैं बेस्ट मूवीज की बात करूंगी जो आपको देखनी चाहिए। तो एक जो मेरी फेवरेट है जिसको मैंने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखा है तो आज की बेस्ट मलयालम मूवीज में सबसे पहले जिसका नाम आने वाला है वो है, अब आप गेस करिए। वैसे आपने उस मूवी के छोटे छोटे से क्लिप्स देखे होंगे और उसका हिंदी वर्जन आप देख चुके हैं। सबसे पहले दृश्यम, दृश्यम जो है वो हिंदी मूवी बनने के पहले मलयालम मूवी बनी जिसकी कॉपी करके बॉलीवुड में बनाया गया। जी हाँ, अब क्या करूँ। दूसरी है हृदयम। हृदयम मूवी अगर देख लेंगे आप तो उसको देखने के बाद मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में अम लगा रहता है, ऐसा इन लोग का मतलब कुछ सिस्टम है, मैं नहीं जानती क्या है, पर हाँ लास्ट में अम लगा रहता है तो मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे मूवी की स्टोरीज जो होती हैं वो बेहतरीन लगती हैं हमेशा। जब भी कोई अच्छी सी मूवी देख लो दिल खुश हो जाता है, ठीक है। तो जो हृदयम मूवी है इसमें एक लव स्टोरी दिखाई गई है, एक लड़का जो कि स्कूल टाइम में प्यार करता है, फिर उसके बाद वो अलग हो जाता है, कुछ ऐसी टाइप की। फिर उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिससे वो शादी कर लेता है। फिर इसके बाद आती है एक मूवी जन गण मन, ये भी काफ़ी अच्छी, मतलब इनकी स्टोरीज अगर मैं आपको बता दूंगी ना तो मूवी आप नहीं देखेंगे। योद्धा आती है, योद्धा भी अगेन वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जिसको आप देखेंगे और आपका मन खुश हो जाएगा। तो ये तो आप लोग देख लीजिए, चार्ली भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक मूवी और है जिसको मैं कहूंगी आप अगर बहुत फ्री हो तब देखें क्योंकि उसकी स्टोरी मुझे उतनी मतलब खास नहीं लगी, लेकिन हाँ जो घरेलू सीन उसमें दिखाए गए हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी मतलब इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। बैंगलोर डेज जो कि 2014 में आई थी, ये भी मूवी काफ़ी अच्छी है। इसमें तीन कजिन्स की कहानी है जो कि बैंगलोर में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ बेहतरीन देखने का मन किया है तो आप एक बार इन मूवीज पे ज़रूर गौर फरमाएं, देखने के बाद आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। एक है किरीदम, किरीदम मूवी जो है ये बहुत पुरानी मूवी है लेकिन मैं कहूँगी कि इसकी भी स्टोरी आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगी। आप कहोगे कि इतनी पुरानी मूवी और स्टोरी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। अब इस साल की मूवीज़ की बात करूँ तो इस साल जो रिलीज़ हुई हैं उनमें आड़ू 3 जो है ये मूवी एक बार देख सकते हैं, और इसमें जो क्योटिक फ़न दिखाया जाएगा कि मतलब एक लिमिटलेस फ़न क्या हो सकता है किसी मूवी में, वो इस मूवी में आप देख सकते हैं। तो ये मूवी आपके लिए मतलब बेस्ट हो सकती है अगर आपने कुछ अच्छा देखने का सोचा है तो दिस इज़ फॉर यू। मोहिनीअट्टम भी आप देख सकते हैं, इसमें एक मरे हुए पिता की कहानी दिखाई जाती है और उसी के साथ एक दबा हुआ सीक्रेट है जो पूरे फैमिली को परेशान करके रखता है और कुछ मोरालिटीज के जो चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं। बालन द बॉय ये मूवी भी बहुत अच्छी है, इसमें एक टीनेज बच्चे की कहानी दिखाते हैं जिसमें उसकी माँ गायब हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी माँ को ढूंढता रहता है, पास्ट में घूमता रहता है। बालन द बॉय बहुत अच्छी मूवी है, एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद मैं आ जाती हूँ एक और कहानी की ओर जिसका नाम है पैट्रियट। पैट्रियट जो है ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी को रिवील करती है जो कि नेशनल इश्यूज से जुड़ी हुई है।
एक और मूवी जो आपको अलग दुनिया में ले जाएगी वो है चिन्ना चिन्ना असाई। इस मूवी को इतना पसंद किया गया है, इतना पसंद किया गया है, और ख़ास तौर पे इसलिए मैं इस मूवी को देखने के लिए बोलूँगी। अगर आपने कोई नहीं देखनी है मत देखिए, लेकिन चिन्ना चिन्ना असाई आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अच्छा, मैं इस मूवी को देखने के लिए इतना ज़ोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि इस मूवी में एक रियलिटी दिखाई गई है कि इंसान जब अकेला हो जाता है तो वो कितनी भी उसके अंदर जीने की इच्छा क्यों ना हो, वो मौत के करीब जाता रहता है। और एक पल की भी खुशी अगर हम मरने वाले इंसान को दे दें तो आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी उतनी आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर करके नहीं मिलेगी। आपके वजह से कोई ऐसा इंसान जो बहुत मौत के करीब है उसको एक बड़ी खुशी मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि यू आर अ पर्सन हु डिड, मतलब आपने दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य किया है। चाहे कितने भी आपने पाप किए पर वो पुण्य आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा क्योंकि वो आपको संतुष्टि देगा। तो मैं कहानी बताऊँगी, इसमें कहानी है एक औरत की जो कि वाराणसी आई है और वहाँ पे एक आदमी से मिल जाती है, वो भी चांस से, मतलब ऐसे किसी के साथ बैठी बात करते करते। फिर पूरी ज़िंदगी का दुख एक तरफ करके वो उस आदमी के साथ एक दिन बिताती है, वो उसको घुमाता है, खिलाता है, पिलाता है। धीरे धीरे एक छोटी सी, मतलब बहुत अच्छी सी, मतलब बॉन्डिंग हो जाती है दोनों के बीच में और वो औरत कुछ समय के लिए अपना पूरा दुख भूल जाती है और एक दांव पे अपनी जान दे देती है। एंड यू नो उसकी मौत का सीन इतना ज़्यादा मार्मिक है कि हमारा हृदय उस समय जैसे लगेगा फ्रीज हो गया, मतलब इतना ज़्यादा हम फ्रीज हो जाएंगे, लगेगा कि क्या कहने। लीड एक्टर है इसमें मधुबाला, जिन्होंने लीला बनने की इसमें भूमिका की है और इन्हीं के इर्द गिर्द मूवी घूमती है। ये 52 साल की एक विधवा औरत हैं जो वाराणसी में टूर में आई हैं, टूर करने घूमने आई हैं। उनकी मुलाकात माधवन यानी कि इंद्रदास से हुई है जो कि केरल के स्कूल

टीचर हैं। दोनों अजनबी मिलकर एक दिन में जीवन की छोटी से छोटी खुशियां, अपनेपन और उम्मीद के साथ एक दूसरे के टाइम को बेहतरीन बना देते हैं और वो दिन दोनों के लिए बेस्ट हो जाता है। एंड यस, वही लीला का आखिरी दिन होता है। 19 जून को ये रिलीज़ हुई, लेकिन आज तक लोग इसको देख रहे हैं और फील कर रहे हैं। तो चिन्ना चिन्ना आसाई आपके लिए बनी है। ये एक मलयालम फिल्म है और ये आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने वाली है। तो मेरी तरफ से 10/10 इस फिल्म को। तो चलिए अब आपसे कुछ सवाल करती हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग, गुड इवनिंग कुमार, गुड इवनिंग अनूप जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग सबका भाई, स्वागत है। प्रीति जी कैसी हैं? किसको हिचकी आ रही भाई, हिचकी दूर करा देते हैं आप सभी की। फिलहाल के लिए चलिए सवाल करती हूँ जिससे आप भी कुछ उत्तर दे पाएँ। आप लोगों से जानना चाहूँगी कि फिल्म आई थी एक आप लोगों की, बहुत अच्छी सी प्यारी सी फिल्म थी, हवाई ज़्यादा। हवाई ज़्यादा फिल्म में हीरोइन कौन थी, याद है कि नहीं? हवाई ज़्यादा फिल्म आई थी, बड़ी प्यारी सी फिल्म थी। हवाई ज़्यादा फिल्म में फीमेल एक्ट्रेस का नाम बताइए और अपनी पसंद का गाना अपने नाम कर जाइए। चलिए सुनते हैं गाना।

तो क्यों ना डुबकी लगावा, नैना समंदर है। शुभ संध्या भाई सभी को। पल्लवी शारदा, आंसर देने वाले की लिस्ट इतनी कम क्यों है भाई? प्रीति जी गाना सुन लीजिए अपनी पसंद का, बिल्कुल सही आंसर है। हाय हाय क्या बात है। तेनु शरारत सिखावा जद नैना सुनावा। भाई हमारे यहाँ तो शरारत सिखाने के लिए बिल्कुल पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, यहाँ पर नैना लड़ाने से शरारत सीख जा रहे हैं लोग। क्या कहने है यार। ओके गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार संगीत में भारत रत्न किसे मिला? सोच के जरा बताइए। पुरुषों में पहली बार भारत रत्न किसे मिला इन संगीत म्यूजिक?

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह।
0: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिलफरेब।

भाई पहली फरमाइश आ गई है हमारी सखियों की, और वो है प्रीति जी की बहारों, फूलों की रानी बहारों की मलिका, मस्कारा लगा लो सुंदर लगोगी। तो चलिए सुनते हैं एक नया सा प्यारा सा गाना जिसको सुन के दिल होगा बिल्कुल

0: दिया है अनूप जी ने और दादा ने और किसने दिया भाई। तो फिलहाल अनूप जी आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं एंड दादा यादव बजाज चीनी मिल आप दोनों अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं माय हम साथ साथ हैं फ्रॉम ABCD मूवी। ओके
1: फिर क्यों तुझको लगता है डर मेरे जीवन साथी बता।
0: तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम हम साथ साथ हैं ABCDEFGHI।

0: योर वॉइस, आई एम सिंग सॉन्ग।
1: चलिए देखते हैं अगली वाली फरमाइश दादाजी की थी। ओह, उधार दे दे।

अपना जो कहते हैं ना कि गाना पसंद का सुन सकते हैं। अभी जो आपने गाना सुना वाई दिस कोलावेरी डी, इस गाने को गाने वाले लड़के के ससुर का नाम बताइए। बड़ा अच्छा सा और साधारण सा सवाल पूछा है। वैसे सबको पता होगा वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी डी, ये गाना बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था और आपको इस गाने के सिंगर

फिलहाल देखिए आंसर देने वालों ने आंसर भी दिया है, मन मेरा सॉन्ग सुनने की फरमाइश चल रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग धनुष, रजनी काका, रजनीकांत बिल्कुल सही, दादा और रजनी अनूप जी ने फिर आंसर दे दिया है। और अकबर जी आपका नाम मैं बिल्कुल ले लेती, अकबर जी आपने आंसर दिया था क्या? रहे ना रहे हम, अकबर जी पंडित रवि किशन, ओ आपने भी नहीं, आपने तो आंसर नहीं दिया था, लेकिन चलिए मैं चलती हूँ, आज आप सभी की फरमाइशी प्ले कर देती हूँ। क्या करने के लिए, आज सवालों के जवाब में तो सब लोग जवाब दे ही रहे हैं। और चलिए सुनते हैं अकबर कुरैशी की फरमाइश, फिर इसके बाद हम सुनते हैं, देखते जिसकी भी फरमाइश मैं प्ले कर देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा प्ले करूँगी, सबके गाने तो पूरे प्ले नहीं हो पाएंगे। अब ये बेनिफिट तो आंसर देने वालों को मिलना ही चाहिए, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। रहे ना रहे हम महका करेंगे।

चलिए अगले गाने की ओर रुक करते हैं भाई। किसने किया था फरमाइश अगला गाना? ये नीले नीले गगन के तले। ओहो क्या बात है, बड़ा अच्छा गाना है। तो क्यों ना कलरफुल गाने ही सुन लिए जाए। और देखिए जिसका एक एक बार प्ले हो गया उसको दोबारा नहीं प्ले होगा ठीक है। तो चलिए।

हाँ भाई, सब लोग अपनी अपनी फरमाइश सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी एक फरमाइश सुन लूँ। वैसे मेरी फरमाइश तो एकदम अलग ही सी रहती है, लेकिन हाँ एक गाना है जो मैं सोचूँ कि आप लोग के साथ सुन लिया जाए, अच्छा लगेगा आपको भी, और थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव टाइप का है और आपको मोटिवेट करेगा, और मुझे लगता है आई थिंक ये गाना आप सभी के लिए है, एवरीवन, सबके लिए, सबके लिए, हर इंसान जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो किसी भी टाइप की आगे बढ़ने जैसी चीज़ हो, जैसे लव लाइफ कोई भी हो, उन सभी के लिए ये गाना है।

लगती शब यानी कि शाम। तो ये मेरे लिसनर्स के लिए लाइंस थी। तो भाई आप लोग के बिना ये शाम शाम नहीं लगती है। कल मिलेंगे डॉक्टर लव के साथ करने के लिए बहुत सारी बात। आप लोग भी रहिएगा तैयार, क्योंकि हम होने जा रहे हैं आप लोग के लिए एक नए सफ़र पे, एक जर्नी के लिए तैयार। तो बिल्कुल कोई कहीं नहीं जाएगा, कल अपने सवालों के साथ बस यहीं नज़र आएगा और कल करेंगे बात आपके सवालों की। होगी शुरुआत एक नए दौर की, क्योंकि कल ना सिर्फ प्यार की बात होगी बल्कि आपके साथ आपसे जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों की बात होगी जो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन उन डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर लव है ना। तो कल डायल करना मत भूलिएगा अपना वाला नंबर 6793-3164-29 टू टॉक टू योर फेवरेट डॉक्टर लव। आप कुछ बेहतर सुन रहे थे तो आरजे बीना के साथ सुन रहे थे शो गोंडा मैसेज मसाला, आरजे बीना वाला अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM पर।

है ये दिल मेरा। ओहो माना तेरी सूरत की है चांदी 100% बिलो, मेरे दिल का सोना भी करा। ओहो।

0: कमजोर है मेरा। ओए होए होए होए क्या कहने,
1: मुक जाने नखरे तेरे मेरा, इश्क नहीं हो मुकना, पक्का है प्रॉमिस
0: जटदा, लगे नैनों के पीछे कि दूर से मुझको देखे,
1: लड़े न

सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सिंपल, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ट्यून्ड।

सर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और क्या हाल चाल है पब्लिक, आज है गणेश उत्सव का पांचवा दिन। और क्या आप जानते हैं कि पांच अंक कितना खास है हमारे जीवन के? पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बप्पा की इन पांच दिनों की ये भक्ति हमारे जीवन के इन्हीं पांचों तत्वों में सुख, शांति और संतुलन भर देती है। दोस्तों आज का दिन थोड़ा खास और थोड़ा इमोशनल दोनों है। क्यों? क्योंकि कई घरों में आज बप्पा को विदाई दी जा रही होगी, तो कई जगह उत्सव अपने पूरे चरम सीमा पर होगा, लेकिन बप्पा की कृपा तो हर दिल में बस चुकी है, क्यों नहीं ना। सो फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को इसी बात पे खोल लीजिए और बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली पंच तत्व की तरह लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों जितने भी चांद आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, निधि सीतापुर से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, उस्मान खान गोंडा से, विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, उषा कश्यप जी गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, मालवीय नगर से, राजेश सिंह जी महेंद्र राजस्थान से, रोशनी रावत उन्नाव से आप सभी का स्वागत है। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से आपका भी स्वागत है। सुरेश कुमार जी चौक से, निबजीरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश बिना किसी देरी के। सो क्या आप सभी तैयार हैं? अगर नहीं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप सभी नहीं तैयार हैं। तब तक मैं यही कहना चाहूंगी, इस टाइम पे मुझे सिर्फ और सिर्फ बशीर बद्र जी की एक लाइन याद आ रही है, दो लाइन याद आ रही है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की पहली फरमाइश। एंड दोस्तों पहली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की और उनको सुनना है गाना आधी सच्ची आधी झूठी। सो एंजॉय करते हैं फकीरा का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, हमारे बहुत ही खूबसूरत से जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: प्रेम कहानी इसमें।
1: मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है फकीरा पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की, और धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है गाना किक पिक्चर का ओ माई गॉड। इंजॉय करते हैं जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान का ये गाना हैंगओवर, तेरी यादों का सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वाओ, यूनिक सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग।

तेरी यादों का हैंगओवर, तेरी बातों का। हमने एंजॉय किया है ये गाना केक पिक्चर का, सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले फरमाइश की तरफ दोस्तों, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से आपका तहे हुए दिल से स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में, और एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की, सीतापुर से। निधि को सीतापुर से सुनना है गाना, देर से आना जल्दी जाना ये साहब ठीक नहीं, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं खलनायक का ये गाना, सिर्फ और सिर्फ निधि की फरमाइश पर, जो की है सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ऐसा ही भी ठीक नहीं। हमने इंजॉय किया है खलनायक का ये गाना निधि की फरमाइश पर जो की है सीतापुर से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, और इनको सुनना है गाना तेरा रंग बल्ले बल्ले तेरी चाल बल्ले बल्ले। सो जसपिंदर नरोला और सोनू निगम का ये गाना हम इंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर जो की है मालवीय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की सिंचाई विभाग गोंडा से। एंजॉय करेंगे हम राजेश कुमार की फरमाइश, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि वो चाहते हैं उनसे दिल लगाया जाए वो चाहते हैं उनसे दिल लगाया जाए, दिल तो लगाया जाए मगर कोई ख्वाब न सजाया जाए। प्यार भरी बातें होंगी बेशुमार बंद कमरे में, प्यार भरी बातें होंगी बेशुमार बंद कमरे में, सरे बाजार हाथ थामने का हक न जताया जाए। साथ मिलेगा उनका सिर्फ उनके फुर्सत के पलों में, उनकी मशरूफियत में खलल ना पहुंचाया जाए। वो साथ होंगे तुम्हारे हमेशा उनकी मीठी बातों में, बस निभाने का इम्तिहान उनसे ना लिया जाए। इश्क तो किया जाए दिल की गहराइयों से, इश्क तो किया जाए दिल की गहराइयों से, बस उनसे कोई उम्मीद ना लगाई जाए। शिकायतें चाहे जितनी हो उनसे मगर दिल में रखो ना, शिकायतें चाहे जितनी भी हो उनसे मगर दिल में रखें, शोर ना मचाया जाए। वो चाहते तो हैं उनसे दिल लगाया। तो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है राजेश कुमार की सिंचाई विभाग गोंडा से। उनको सुनना है गाना आगे प्यार पीछे प्यार से। एंजॉय करेंगे अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में ये नगमा सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

जाने देते हैं। हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर, जो कि है सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो दादा यादव बजाज मिल गोंडा से आपका स्वागत है। और आपके फ्रेंड जो कि है मुन्नन खां चौराहा से विराज आइसक्रीम के दीपक यादव, आज इनका है हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। सो वेरी हैप्पी बर्थडे जन्मदिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। इस फरमाइशी गीत के बाद में हम एंजॉय करेंगे एक बर्थडे सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ दीपक यादव के लिए, लेकिन उसके पहले एंजॉय कर लेते हैं नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश। उनको सुनना है गाना तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। इंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा, तू कल चला जाएगा। हमने एंजॉय किया है मोहम्मद अजीज की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन इतना दर्द किसके लिए था, कौन कल चला जाएगा, आप क्या करेंगे, आपको छोड़ के कौन जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई जा रहा है तो किसी और दोस्त के पास चले जाओ ना, इतना किसी को भाव नहीं देते। कोई आपके दुख के बारे में नहीं सोच रहा तो आप काहे को किसी के बारे में सोच रहे हैं कि कोई आपके दुख के बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा। आप सोचो ना अपने दुख के बारे में, दुख को खुशी में कैसे परिवर्तित करना है ये आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता होगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है राजू की सीतापुर से। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना एक लड़की नाचे रास्ते में। एंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश, लेकिन उसके पहले आज तो है बर्थडे दीपक यादव का। सो एंजॉय कर लेते हैं दीपक यादव के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना सोनू निगम की आवाज में। हैप्पी बर्थडे, स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अरविंद, आपका स्वागत है।

दादा यादव की फरमाइश पे जो कि है बजाज मिलगोंडा से, और उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है अपने दोस्त को दीपक यादव को। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना एक लड़की नाचे रास्ते में, सो एंजॉय करते हैं सूरज पिक्चर का ये गाना राजू की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

थी राजू की सीतापुर से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारे लिसनर का पूछना है राजू से कि मुझे पूछना है सीतापुर वाले से कि सीताफल पक गया क्या। तो राजू जी सीतापुर से जरूर बताइएगा कि सीताफल पक गया है क्या। और अभी इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में उस्मान खान की। उस्मान खान को सुनना है गाना जिंदगी हंसने गाने के लिए है। ऑब्वियसली जिंदगी हंसने गाने के लिए ही है, सो हम हंस भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। फरमाइशी की महफिल में यही चीज़ें तो बहुत बढ़िया से होती हैं, सो इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा सिर्फ और सिर्फ उस्मान खान की फरमाइश। बस स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाह, हमने एंजॉय किया किशोर कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा रियलिटी चेक करवाने वाला नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश तो हमारे पास में है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से, और उनको सुनना है गाना रोटी कपड़ा और मकान पिक्चर का मैं ना भूलूंगा। तो विजय पाल यादव जी, कोई नहीं भूलता है, कभी नहीं भूलता है, कोई कोई भूलने का नाटक करता है, कोई कोई साफ साफ सीधा सीधा आपकी आर जी सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह कह देता है कि मैं ना भूलूंगा। सो एंजॉय करेंगे विजय पाल जी की फरमाइश, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और के दिलासे में नहीं आएंगे। सो एंजॉय कर लेते हैं विजय पाल जी की।

इतना सैड सॉन्ग काहे को विजय पाल जी, इतनी अच्छी अच्छी मूड चल रहे हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, सारे दुख सब लोग भूल जा रहे हैं, और आप हैं कह रहे नहीं भूलूंगा। अरे भूल जाइए, कम से कम गणेश उत्सव तक तो भूल ही जाइए, उसके बाद में कुछ भी मत भूलिएगा, सब याद रखिएगा। सो हमने इंजॉय किया है रोटी कपड़ा और मकान का ये बहुत ही सैड सा सॉन्ग विजय पाल जी की फरमाइश पर जो की है ललंगा लखीमपुर खीरी से। लेकिन अब नहीं दोस्तों, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, और उषा कश्यप को गोंडा से सुनना है गाना सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार कब करोगे। वाव, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना उषा कश्यप जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आकाश राजपूत, गोंडा से आपका स्वागत है। रौनक तिवारी, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। और विजय पाल जी का कहना है कि वाह वाह सिंपल जी, आपने बहुत अच्छी शेर सुना दी, दिल खुश हो गया। ओहो थैंक यू सो मच, एंजॉय कर लेते हैं ये वाली फरमाइश, इसको सुन के और दिल खुश हो जाएगा विजय पाल जी। आहा, एंजॉय करते हैं ये गाना, स्टे ट्यून्ड एवरीवेयर।

करोगे बताओ ना, हमने एंजॉय किया है। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में निगाहें पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश थी उषा कश्यप की गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। उनको सुनना है रफी साहब का गाना मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी। सो एंजॉय करेंगे ये गाना इसी फरमाइशी गीत के। उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर फरमाइशी की महफिल में आना, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना है कि पेट भरा रहता है तो दिल अपने आप खुश रहता है, तो दिल को तो खुश रखने का बहाना चाहिए होता है ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनम्मा। मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड। बिल्कुल नागेश्वर धाकड़।

0: सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्ध पोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन एंड डेवलप्ड थ्रू अ नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
4: वेरी गुड रिस्पॉन्स, काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोल मेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
5: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
6: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
7: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
5: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
6: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, क्या आप लोगों ने पेट पूजा की? अगर हाँ तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन फिलहाल मेरा कहना है कि किनारों पर मोती मिला नहीं करते, दर्द में कभी गिला नहीं करते, हम अच्छे ना सही बुरे ही सही, पर हम जैसे बुरे भी हर किसी को मिला नहीं करते। तो क्या कहना है आप सबका, मुझे चैट बॉक्स में बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना, महेंद्र को सुनना है राजस्थान से तोता मैना की कहानी। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार लता जी की आवाज में फकीरा का ये गाना महेंद्र की फरमाइश पे जो की है राजस्थान से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। नागेश्वर धाकड़ आपके गीत को प्ले कर दिया गया है।

रामायणा की कहानी तो पुरानी हो गई, हमने एंजॉय किया है महेंद्र की फरमाइश पे ये गाना जो कि है राजस्थान से। इसी के साथ में इनका कहना है कि सिंपल मैडम जी प्रणाम, तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई तो मेरी फरमाइश थी, लेकिन इसे सुनाने का आपका अंदाज बिल्कुल नया था। मेरी फरमाइश को अपनी प्यारी आवाज से सजा कर आपने गाने का मजा ही दोगुना कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी आज की शाम आपकी आवाज के नाम। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपको महेंद्र जी राजस्थान से। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है रोशनी रावत की उन्नाव से, उनको सुनना है गाना दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। सो इंजॉय करते हैं ये नगमा रोशनी रावत की।

फरिश्ती रोशनी रावत की उनाव से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरह। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना। जरूरी था सो एंजॉय करते हैं ये नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। लेकिन इसके पहले क्या खूब कहना है कि दुख देकर सवाल करते हो तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा चलो कुछ तो ख्याल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको हर सितम बेमिसाल करते हो। सो एंजॉय करते हैं अब मुमताज अंसारी जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जो है कि ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर रुकी है गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की। उनको सुनना है गाना राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। एंजॉय करेंगे अरविंद की फरमाइश पर ये गाना। लेकिन उसके पहले महेंद्र का राजस्थान से कहना है कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, कुछ बातें दिल में रहकर भी कभी जुबान पर नहीं होती। वक्त गुजर जाता है मगर एहसास वही ठहर जाते हैं। कुछ अपने दूर होकर भी दिल के बेहद करीब रह जाते हैं। मुस्कुराना तो सीख लिया हमने जमाने के लिए, पर कुछ दर्द आज भी छुपे हैं सिर्फ मुस्कुराने के लिए। इसी के साथ में कहना है नागेश्वर धाकड़ का कि किनारों पर मोती मिला नहीं करते, हर किसी को जान से ज्यादा चाहने वाले मिला नहीं करते, जो होता है मुकद्दर में उसे कबूल करना पड़ता है, अपने हाथों से मुकद्दर बदला नहीं करते। और फिर मैं भी कहना चाहूंगी कुछ और उसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा कि लगता है नदियों के किनारे बदल गए, लगता है नदियों के किनारे बदल गए, देखने का फर्क है या नजारे बदल गए, लहरें भी शांत हैं और कश्ती भी चुप, लहरें भी शांत हैं और कश्ती भी चुप, हवाएं बदली हैं या सहारे बदल गए। मुझसे कहती है घर की खामोश दीवारें, दुश्मन ही बदले हैं या प्यारे भी बदल गए, ना डगर की खबर ना मंजिल का पता, राहें ही बदली हैं या द्वारे भी बदल गए, अपना छांव है ना दूर तक डेरा है कोई, अपना छांव है ना दूर तक डेरा है कोई, काबिले ही बदले हैं बंजारे भी बदल गए, काबिले ही बदले या बंजारे भी बदल गए। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से एक नई शुरुआत के साथ, एक नई शाम के साथ, एक नए सुकून के साथ, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड वेलकम इन योर शो धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवाज विकास गोंडा। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: गमे फिराक को हम खुशगवार करते रहे, गमे फिराक को हम खुशगवार करते रहें, तुम्हारे नाम से जिक्र बहार करते रहें। शाम ढल रही है, हवा में भी हल्की सी ठंड घुल चुकी है और दिल के किसी कोने में एक पुरानी सी खामोशी आज फिर दस्तक दे रही है। आदाब, मैं आपका आरजे अदनान हाजिर हूं आपके अपने बहारे गजल वाले शो में। आज की खामोश और कुछ उदास शाम में आज की हमारी महफिल का रंग है गम फिराक, यानी जुदाई का वो दर्द जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कहा नहीं। क्या कभी आपने गौर किया है कि जुदाई सिर्फ दूरी का नाम नहीं होता? कभी कभी लोग पास होकर भी बहुत दूर हो जाते हैं, तो कोई दूर होकर भी हर धड़कन में बस जाता है। गमे फिराक वो एहसास है जो दिल को तोड़ता भी है और उसी टूटे दिल से मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गजलें भी निकलती हैं। आज की इस महफिल में हम बात कर रहे हैं उन अधूरी मुलाकातों की, उन अनकहे अल्फाज की और उन यादों की जो वक्त के साथ मिटती नहीं, बस गहरी होती जाती है। इसकी बानगी है उमैर नजमी का ये मशहूर मकबूल शेर कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं।

कहते हैं गम और फिराक जब ये दो लफ्ज साथ जुड़ते हैं तो एक अजीब सी कसक बन जाती है जो हमें अंदर से बिखेर देती है और शायद अंदर ही अंदर तराशती भी है। बजमंसारी साहब लिखते हैं कि गमे फिराक में जा से गुजर गए होते, तेरा ख्याल ना होता तो मर गए होते। सिला दिया ना वफा का बजा किया, वरना हम आप अपने ही दिल से उतर गए होते। तवील होता अगर और जिंदगी का सफर, गमे हयात के मारे किधर गए होते। शिकस्ते जां का तमाशा ही देखना था अगर जरा सी देर मेरे जां ठहर गए होते। जमाना इतना भी ना कदरों ना शानास न था, जमाना इतना भी ना कदरों नाशनास न था, जो बज्म कोई बड़ा काम कर गए होते, जो बज्म कोई बड़ा काम

भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गमे फिराक में चेहरा निढाल ऐसा था, कुछ उसके सामने दिल का सवाल ऐसा था। गमे फिराक की शुरुआत तब नहीं होती जब कोई हाथ छुड़ा के चला जाता है, बल्कि तब होती है जब उसकी कमी रोजमर्रा की जिंदगी में खलने लगती है। यादों का गुबार, सन्नाटे की गूंज, खाली कुर्सी, तन्हा चाय की प्याली और वो अधूरी बातें जो लबों तक आकर लौट गई। यहां से इब्तदा होती है गमे फिराक की। यूं ही नहीं, अरशद नजर साहब लिखते हैं कि गमे फिराक में चेहरा निढाल ऐसा था, कुछ उसके सामने दिल का सवाल ऐसा था। जवाब देने से कासिर थे आईने सारे, वो एक चेहरा यहां बेमिसाल ऐसा था। लहू की आग में इतना तपा कि टूट गया, मेरे बदन में भी कुछ इश्तेआल ऐसा था। हमारी सुबह यहां कितनी शब गजीदा थी, तुलुए महर का हर पल जवाल ऐसा था। एक इंतशार का मौसम है सारी बस्ती में, लहू में डूबा हुआ अब के साल ऐसा था। कोई न बात बनी उसकी अंजुमन में नजर, फकीर शहर का जाहो जलाल ऐसा था। फकीर शहर का जाहो जलाल ऐसा।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मेरे प्यारे दोस्त, जुदाई का गम वही जानता है जिसने अपनी रूह के एक टुकड़े को खुद से दूर जाते देखा हो। दरअसल फिराक के लम्हों में लफ्ज नहीं बचते, अश्क जबान बन जाते हैं और आंखें सूख जाती हैं। एक अजीब सी कैफियत होती है और फरागत यानी छूटने के लिए दिल बिछड़ने वाले के नाम की तस्बीह पढ़ने लगता है। इन्हीं हालातों को कहने की कोशिश की है महमूद अब्दुल कदीर साहब ने अपनी इस खूबसूरत सी गजल में कि दागे गमे फिराक मिटाया न जाएगा, दागे गमे फिराक मिटाया न जाएगा, रोशन है ये चराग बुझाया न जाएगा, हाल दिल खराब सुनाया न जाएगा, अफसुर्दा एक हंसी को बनाया न जाएगा। राना ये चमन ही हो बुलबुल की जान है, हद चमन से बुलबुल शायदा न जाएगा, मुद्दत के बाद एक ठिकाना मिला मुझे, अब आस्तां ये छोड़ के जाया न जाएगा। जा मुजहिल उदास नजर चेहरा सोगवार, ऐसे तो उसकी बज्म में जाया न जाएगा, है नक्शे पा किसी की निगाहों के सामने, अब सर किसी के दर पर झुकाया न जाएगा। नए रंगिए जमाना का ये रंग है कदीर, अब दोस्त को भी दोस्त बनाया ना जाएगा।

दर्दे गमे फिराक का दरमा ना हो सका, जलमत कदम दिल का चरागा ना हो सका। गमे फिराक कोई सजा नहीं, ये तो उस गहरे जुड़ाव की तस्दीक है जो कभी मुकम्मल हुआ था। यानी हम हमेशा के लिए, तो ऐसा शख्स हमारे दिल में जिंदा रहता है। गमे फिराक किसी को खो देना या उसे भूलना नहीं है, बल्कि उसे अपनी यादों की किताब में किसी सूखे फूल की तरह ताउम्र के लिए सहेज लेना है। यानी उस इंसान से मोहब्बत जारी रखना, ये जानते हुए भी कि वो कभी वापस नहीं आएगा। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा नाम है, तो आज की महफिल आपकी उसी अधूरी कहानी के नाम। दर्दे गमे फिराक का दरमा ना हो सका, जुल्मत कदे में दिल का चरागा ना हो सका। उनकी खुशी के वास्ते मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन शगुफ्तगा दिल का गुलिस्तान ना हो सका। शमे हयात बुझने को हर चंद है, मगर अफसाने हयात का उनवा ना हो सका। आई बहार आके चमन से गुजर गई, फिर भी रफो चाके गरेबा ना हो सका। और कहते हैं कि नासेह की कोशिशें हुई तो हुई रायगा मगर, नासेह की कोशिशें हुई हुई रायगा मगर, असलम तमाम उम्र मुसलमान ना हो सका, असलम तमाम उम्र मुसलमान ना हो सका।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रात के 10:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और लेके आई हूं आपके लिए लेट नाइट हॉरर शो। अगर आप अकेले हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले अपने कमरे का दरवाजा एक बार देख लीजिएगा, लॉक करने के लिए नहीं, बस ये जानने के लिए कि वो अभी भी बंद है, क्योंकि आज की कहानी में डर दरवाजे के बाहर से शुरू हुआ था लेकिन खत्म कमरे के अंदर हुआ था। साल था 1998, दिसंबर का महीना, जापान। क्योटो में बहुत दूर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक सुनसान इलाका और उसी रास्ते पर एक बस में सफर कर रहा था कबीर मेहरा, 32 साल का दिल्ली का डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर। वो जापान के पुराने पहाड़ी गांवों की फोटोग्राफ्स लेने आया था। उस शाम उसे अगले कस्बे तक पहुंचना था लेकिन अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई, तेज हवा, बस के शीशे पर बर्फ, बस आगे नहीं जा सकती थी। एक बुजुर्ग यात्री ने कबीर से कहा, आगे का रास्ता बंद है, बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा है। कुछ देर बाद बस एक छोटे से लकड़ी के शेल्टर पर आकर रुक गई। कबीर ने ड्राइवर से पूछा, होटल? ड्राइवर ने दूर पहाड़ी पर पेड़ों के बीच जलती एक हल्की पीली रोशनी की तरफ इशारा कर केवल एक शब्द कहा, रिकॉन। जापान में सराय को रिकॉन कहा जाता है। कबीर बैकपैक और कैमरा लेकर बर्फ में उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। करीब 15 मिनट बाद उसे 2 मंजिला पुरानी लकड़ी की सराय दिखाई दी। छत पर बर्फ, बाहर हिलता हुआ लाल लांटेन और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। कबीर ने कैमरा निकाला, एक तस्वीर ली, फिर दूसरी और दूसरी। फोटोग्राफ लेते समय उसे कैमरे के शीशे में दूसरी मंजिल की खिड़की पर एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल। कबीर ने तुरंत कैमरा नीचे किया, खिड़की खोली, उसे दोबारा देखा, कोई नहीं था। कबीर हल्का सा हंसा, अरे लगता है थकान अपना असर दिखा रही है, और वो अंदर चला गया। रिसेप्शन छोटा और पुराना था, मोटी मोटी चटाइयां बिछी हुई थी, लकड़ी की दीवारें और एक पुरानी घड़ी। एक बुढ़ा सा जापानीज आदमी बाहर आया, उम्र लगभग 70 वर्ष। उसने कबीर की तरफ देखकर पूछा, कमरा चाहिए? कबीर ने कहा, हाँ, आगे का रास्ता बर्फ की वजह से बंद हो चुका है। पूरे ने रैक से एक पुरानी ब्रास की चाबी निकाली, कमरा 403। लेकिन कबीर की नजर उस बगल वाली चाबी पर पड़ी, 404। उस पर धूल जमी हुई थी। कबीर ने मजाक में पूछा, क्या रूम नंबर 404 अनलकी है? बूढ़ा हंसा नहीं, उसने तुरंत 404 की चाबी उतारी और रिसेप्शन डेस्क के नीचे रख दी। फिर पूछा, आपका नाम? कबीर ने बोला, कबीर मेहरा। कबीर ने रजिस्टर में नाम लिखा, डेट डाली 18 दिसंबर 1998, समय 8:47। बूढ़े ने रजिस्टर बंद किया और बताया, डिनर आपको 9:30 मिलेगा। फिर कबीर की तरफ देखते हुए उसने कहा, आधी रात के बाद अपने ही कमरे में रहना। कबीर हंस पड़ा, बोला, क्यों, भालू आते हैं? उसने कहा, नहीं, भालू नहीं। कबीर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी पीछे से फिर आवाज आई, मिस्टर मेहरा। कबीर रुका। पूरे ने कहा, अगर आधी रात के बाद कोई आपको नाम लेके पुकारे तो प्लीज बाहर मत आइएगा, दरवाजा मत खोलिएगा। कबीर ने पूछा, मगर अगर मैं वो आवाज पहचानता हूँ? बूढ़े ने तुरंत कहा, स्पेशली तब। कबीर ने बात को ध्यान नहीं दिया,
ऊपर एक लंबा सुनसान कॉरिडोर था। कमरा नंबर 401, 402, 403 और 403 के ठीक सामने 404। कबीर ने देखा कमरा 404 के नीचे से पानी की एक पतली लकीर कॉरिडोर में आ रही थी। उसने सोचा कोई पाइप लीक होगी और कमरा 403 में चला गया। डिनर के बाद करीब 10:15 बजे वो कमरे में लौटा। बाहर अब भी बर्फ गिर रही थी। कबीर कैमरे में दिन की फोटोज देखने लगा और फिर रियोकॉन की वो फोटो सामने आई। दूसरी मंजिल की खिड़की पर वही सफेद कपड़े वाली औरत थी। इस बार वो भ्रम नहीं था। कबीर ने जूम किया, उसके लंबे बाल चेहरे पर थे, लेकिन एक बात साफ थी, वो बाहर नहीं देख रही थी, वो सीधे कबीर की तरफ देख रही थी। कॉरिडोर से अचानक धड़ाम धड़ाम की आवाज आई। कबीर ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर गीले कदमों की आवाज आई। छप छप छप, आवाज धीरे धीरे 403 की तरफ बढ़ी और दरवाजे की तरफ आके रुक गई। एक औरत ने धीरे से कहा, कबीर। कबीर का शरीर सिहर गया। उसने रिस्ट वॉच की तरफ देखा, 12:17 थे। उसे वो बूढ़े की चेतावनी

बिल्कुल अंधेरा हो गया। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आ रही थी। कबीर ने सांस रोक ली। बाहर वो औरत बुला रही थी, कबीर कबीर कबीर दरवाजा मत खोलना। कबीर की आंखें फैल गई, क्योंकि उसी क्षण उसके पीछे कमरे में किसी ने अंदर से बहुत धीमे से कहा, हाँ कबीर, दरवाजा मत खोलना। तो श्रोतागण, अगर वो औरत दरवाजे के बाहर थी तो कमरे के अंदर कौन था? अगर रिस्ट वॉच में 12:17 थे तो वॉल क्लॉक में 2:13 और कमरा नंबर 404 की चाबी वो क्यों छिपाना चाहता था बूढ़ा? दोस्तों, कहानी अभी शुरू हुई है, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक श्रोतागण। कमरे में घना अंधेरा था।

दरवाजे के पास खड़ा था। उसमें पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसने जेब से अपना नोकिया फोन निकाला। उसकी हल्की सी रोशनी कमरे में फैल गई। कबीर ने धीरे धीरे पीछे देखा, कोई नहीं था। बिस्तर खाली, खिड़की बंद, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी, गीले पैरों के निशान। कबीर झुक गया। वे निशान दरवाजे से अंदर नहीं आए थे, खिड़की से भी नहीं। वे कमरे के बीच, ठीक बीच से शुरू हो रहे थे और जाकर उसके बिस्तर के पास खत्म हो रहे थे, जैसे कोई वहाँ खड़ा होकर उसे सोते हुए देखने वाला था। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और इस बार आवाज आई, मिस्टर मेहरा। कबीर चौंक गया। ये रिसेप्शन वाले बूढ़े की आवाज थी। उसने कहा, मिस्टर मेहरा, दरवाजा खोलिए। कबीर ने जवाब नहीं दिया। कबीर ने पूछा, आपका नाम क्या है? बाहर बिल्कुल खामोशी रही। फिर जवाब आया, हॉरिटो। कबीर सोच में पड़ गया। उसने नीचे उस बूढ़े से उसका नाम पूछा ही नहीं था। वो कैसे तय करता कि बाहर सचमुच वही आदमी है? हॉरिटो की आवाज फिर आई, नीचे आइए। उसने पूछा, क्यों? और बाहर से जवाब मिला, क्योंकि उस कमरे में आप अकेले नहीं हैं। कबीर की नजर फिर पैरों के निशानों पे पड़ गई। उसने धीरे से दरवाजे के नीचे देखा। बाहर किसी के दो पैरों की परछाई थी। कबीर का हाथ लॉक तक पहुंचा ही था कि वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, और लंबी और लंबी, जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा इंसान जमीन से ऊपर उठ रहा हो। अब बाहर की आवाज भी बदलने लगी थी, दरवाजा खोलो। और फिर अचानक बहुत जोर से कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, और फिर एकाएक बिल्कुल सन्नाटा। अब उसकी घड़ी में 12:21 थे, लेकिन दीवार की घड़ी में अब भी 12:13 और सेकंड की सुई कांप रही थी। अब कबीर समझ गया कि यह केवल खराब घड़ी नहीं थी। इस कमरे में कोई एक समय ऐसा था जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। कबीर ने फैसला किया, सुबह तक वो इस कमरे में नहीं रहेगा। उसने अपना बैकपैक और कैमरा लिया और बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन सीढ़ियां वहां थी ही नहीं। कबीर रुक गया। सामने सिर्फ कमरा 401, 402, 403 और 404। वो आगे बढ़ा, बहुत तेजी से चला, बहुत देर तक चलता रहा, मगर बार बार वही चार कमरे, 401, 402, 403, 404। रूम नंबर 404 का दरवाजा एकाएक थोड़ा सा खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और उस अंधेरे में एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई, मेरी मदद करो। कबीर रुक गया। उसने पूछा, कौन है? बच्ची की आवाज फिर आई, मुझे बचा लो। कबीर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची रो रही थी, कह रही थी वो आ रही है। कबीर ने पूछा, कौन? कुछ पल खामोशी रही, फिर बच्ची ने कहा, वही औरत जो तुम्हारे कैमरे में है। कबीर के हाथ अपने आप कैमरे की तरफ गए। उसने वही फोटो खोली जिसमें खिड़की पर सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो खिड़की में नहीं थी। कबीर ने फोटो में दोबारा देखा, खिड़की बिल्कुल खाली थी। उसने अगली फोटो खोली और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। ये फोटोग्राफ तो उसने कभी ली ही नहीं थी। उसमें कबीर खुद कमरा नंबर 403 की बिस्तर पे बैठा था। तस्वीर कमरे के अंदर से किसी और ने खींची थी, और अगली फोटो में कबीर के थोड़ा और पास से, और अगली फोटो और पास, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो, और आखिरी तस्वीर
कबीर ने देखा और कैमरा लगभग उसके हाथ से गिर गया। उसमें वही सफेद कपड़ों वाली औरत कबीर के ठीक पीछे खड़ी थी। उसके गीले काले बाल कबीर के कंधे पर थे और उसका चेहरा कबीर के कान के बिल्कुल पास। तभी कॉरिडोर में से किसी ने जोर से कहा, तस्वीर मत देखो। कबीर तेजी से पलटा, कोई नहीं था। और उसी क्षण कमरा 404 का दरवाजा पूरा खुल गया। गीले पैरों की आवाज, अदृश्य कदम कॉरिडोर में कबीर की तरफ बढ़ रहे थे। बच्ची रूम नंबर 404 ने अंदर से चीख रही थी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कबीर के पास सोचने का समय बिल्कुल नहीं था। वो 404 नंबर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था। मोटी मोटी चटाइयां काली पड़ चुकी थी। सामने एक बहुत पुराना शीशा लगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवार। उसमें दीवार पर बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स लगी थी, आदमी, औरतें, बच्चे, और हर फोटो के नीचे एक तारीख, कहीं 1963, कहीं 1971, 1978, 1985, 1996 भी था, और सबसे आखिर में 18th दिसंबर 1998, यानी कि उस दिन की तारीख। लेकिन उसके नीचे फोटोग्राफ की जगह एक खाली सफेद कागज था। आज की तारीख? कबीर ने कांपते हुए हाथ से उसको छुआ। धीरे धीरे उस सफेद कागज पर एक तस्वीर उभरने लगी। कबीर की सांस रुक गई। उस तस्वीर में अब कबीर खुद था, कमरा नंबर 404 में, उसी जगह खड़ा जहां वो इस समय खड़ा था। लेकिन फोटो में उसके पीछे कोई शीशा नहीं था। एक छोटी जापनीज बच्ची खड़ी थी। कबीर ने असली शीशा देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर फोटो की तरफ, बच्ची अब भी थी और अपनी उंगली होठों पे रखी हुई चुप चुप कह रही थी। और फिर फोटो के शीशे पर कुछ लिखा हुआ आया, पीछे मत देखना। कबीर एकदम जम गया। उसके पीछे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी तरफ कदम बढ़ा रही हो। एक कदम, दूसरा, तीसरा, कबीर फोटोग्राफ को देखता रहा। उसमें बच्ची अचानक गायब हो गई और उसकी जगह वही सफेद कपड़े वाली औरत खड़ी हुई थी। फोटो में उसका हाथ धीरे धीरे कबीर के कंधे की तरफ बढ़ा और उसी क्षण असल कमरे में बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां कबीर के कंधे पर आके टिक गई। कबीर की सांस अब तो बिल्कुल रुक गई थी और उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत की आवाज आई, कबीर तुमने मेरा कमरा क्यों खोल दिया? तो दोस्तों, रूम नंबर 404 में आखिर हुआ क्या था? जिस कमरे की चाबी रिसेप्शन वाला बूढ़ा छिपा के रखता था, उसका दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? वो बच्ची कौन थी? और दीवार पे लगी उन तस्वीरों के बीच आज की तारीख के साथ कबीर की तस्वीर पहले से ही कैसे मौजूद थी? और सबसे बड़ा सवाल, हर घड़ी आखिर 2:13 पर ही क्यों रुक जा रही थी? क्या उस समय रूम नंबर 404 में कुछ ऐसा हुआ था जिसे ये कमरा आज तक नहीं भूल पाया? इसका जवाब जल्दी मिलेगा, मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

कोई नहीं था, कोई नहीं था।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, एक बार फिर स्वागत है आपका 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो के लेट नाइट हॉरर शो में। आप सुन रहे हैं कहानी रूम नंबर 404। कबीर अब उसी कमरे में था और उसके कान के पास एक औरत फुसफुसा रही थी। कबीर, तुमने मेरा कमरा क्यों खोल दिया? कबीर का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने बिना पीछे देखे कहा, मैंने नहीं खोला, दरवाजा अपने आप खुला था। फिर औरत ने धीरे से कहा, मगर दरवाजा तो मैंने भी नहीं खोला था। अब कबीर की सांस रुक गई। अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो फिर किसने खोला था? कबीर की नजर सामने लगे पुराने शीशे पे गई। शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे खड़ी औरत नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी उंगलियां अब भी कबीर के कंधे पर थी। तभी शीशे के एक कोने में एक छोटी सी बच्ची दिखाई दी। उसने घबरा के सिर हिलाया, मत मुड़ना, और उसी क्षण कबीर के कंधे पर रखी उंगलियां धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी, उसकी गर्दन तक, फिर उसके बालों में। औरत ने पूछा, क्या तुम मुझे देखोगे नहीं कबीर? कबीर की आंखें शीशे पे जमी थी। अचानक बच्ची ने ऊपर की तरफ इशारा किया। कबीर ने छत की तरफ देखा, उसका खून जम गया। छत पर कोई था, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल, एक औरत जो छत से उल्टी लटकी हुई थी, धीरे धीरे कबीर की तरफ रेंग रही थी। शीशे में उसका चेहरा साफ हुआ, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल सफेद, गर्दन पे काले निशान और उसके होंठ काले धागे से सिले हुए थे। फिर से आवाज आई, कबीर। बच्ची चीख रही थी, उसकी तरफ मत देखना। कबीर ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अचानक सब शांत हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली, छत खाली थी, बच्ची अब भी शीशे में दिखाई दे रही थी। कबीर ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने जवाब दिया, आइको। और वो औरत? आइको कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी माँ। कबीर ने पूछा, तुम दोनों के साथ क्या हुआ था? आइको ने डर के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, धीरे बोलो, क्योंकि वो सुनता है। कौन कौन सुनता है आइको? आइको ने जवाब दिया, नीचे वाला आदमी। कबीर चौंक गया, हॉरिटो? आइको का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, उसका नाम मत लो। उसी समय दरवाजे से बाहर आवाज आई, मिस्टर मेहरा। वो रिसेप्शन वाला बूढ़ा था। मुझे पता है आप कमरा नंबर 404 के अंदर है, दरवाजा खोलिए। आइको ने कहा, जवाब मत देना। बाहर हॉरिटो की आवाज आई, आइको तुमसे झूठ बोल रही है। कबीर ने शीशे की तरफ देखा, आइको ने सिर हिलाया, नहीं। हॉरिटो फिर बोला, अगर सच जानना है तो उससे पूछो कि 2:13 पर क्या हुआ था। अचानक वो पुरानी घड़ी चलने लगी और जैसे ही सुई 2:13 पर पहुंची, कमरे की हवा बदल गई, दीवारों से पानी रिसने लगा, फर्श पर लंबे काले बाल फैलने लगे, और फिर कबीर को आवाजें सुनाई देने लगी। एक औरत रो रही थी, एक बच्चा चीख रहा था, माँ। किसी आदमी की गुस्से से भरी जापनीज आवाज, फिर संघर्ष, पानी के तेज छिल्ले की आवाज और किसी की घुटती हुई सांसें। कबीर समझ गया, वो कोई घटना नहीं देख रहा था, वो इस कमरे का अतीत सुन रहा था। आइको शीशे के अंदर रो रही थी। कबीर ने कहा, आइको बताओ क्या हुआ था? आइको बोली, 1963 मेरी माँ ये जगह छोड़ना चाहती थी, पर हॉरिटो ने उसे रोका था। कबीर ने पूछा, क्यों, क्या हॉरिटो ने तुम्हारी माँ को मार दिया? आइको ने कबीर की तरफ देखा और कहा, नहीं। फिर आइको के आंख से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ ने खुद की जान ली थी, उसने आत्महत्या किया था। इसी कमरे में ठीक 2:13 पर कबीर ने पूछा, लेकिन क्यों? आइको कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा डर से बदल गया। वो सुन रही है? कौन सुन रही है आइको? आइको पीछे हटने लगी। मेरी माँ। अचानक शीशे के अंदर किसी अदृश्य हाथ ने आइको को पीछे खींच लिया। आइको चीखी, नहीं। कबीर ने शीशे की तरफ हाथ बढ़ाया। अचानक उसका हाथ कांच के अंदर चला गया। उसने आइको की छोटी सी कलाई पकड़ ली, लेकिन दूसरी तरफ कोई ताकत से उसे अंधेरे में खींच रहा था। आइको चिल्ला रही थी, उसे अपना चेहरा मत देखने देना। और अगले पल उसका हाथ कबीर के हाथ से छूट गया। आइको गायब हो गई। अब शीशे में सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें खुली थी, पूरी तरह काली। उसके सिले हुए होठों के धागे एक एक करके टूटने लगे और उसके मुंह से काला पानी बहने लगा। उसके मुंह से एक आवाज नहीं, बहुत सारी आवाज आने लगी। हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, हम घर जाना चाहते हैं। और उन आवाजों के बीच कबीर ने एक आवाज पहचानी, अपनी आवाज। कबीर पीछे हट गया। शीशे में अब उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो कबीर जिंदा नहीं था। भीगे कपड़े, सफेद चेहरा, गर्दन एक तरफ झुकी हुई। शीशे वाला कबीर उंगली उठाता है और धुंधले कांच पर लिखता है 2:13। कबीर घबरा गया। उसकी रिस्ट वॉच में 1:58 था। वो समझ गया, अभी तक 2:13 केवल इस कमरे के अतीत का समय था, लेकिन असली समय भी 2:13 की तरफ बढ़ रहा था। सिर्फ 15 बाकी थे। अचानक बाहर से हॉरिटो चीखा, कबीर कमरे से बाहर निकलो। कबीर दरवाजे के पास गया। उसने पूछा, क्यों? तुम्हारे पास केवल 15 है, हॉरिटो ने बताया। कबीर ने पूछा, 2:13 पर क्या होगा? कुछ पल चुप्पी। फिर हॉरिटो ने कहा, 2:13 पे वे तुम्हें मारती नहीं है, वो इस कमरे को तुम्हारी याद करा देती है। कबीर ने दीवार की फोटो की तरफ देखा। सारे चेहरे धीरे धीरे उसकी तरफ घूमने लगे। अब हर फोटो में मौजूद इंसान कबीर को देख रहा था। कबीर की अपनी फोटो बदलने लगी। चेहरा सफेद, आंखें काली, गर्दन झुकी हुई। फिर फोटोग्राफ वाले कबीर ने हाथ उठाया और एक कागज दिखाया, हॉरिटो पर भरोसा मत करना। उसी समय बाहर से हॉरिटो चीखा, तस्वीरों पे भरोसा मत करना। फिर कहीं आइको की आवाज आई, मेरी माँ पे भरोसा मत करना। और उसी क्षण कबीर के पीछे सफेद औरत की फुसफुसाहट आई, आइको पर भरोसा मत करना। कबीर बीच कमरे में खड़ा था। 3 आवाजें 3 चेतावनियां और सिर्फ 15 अचानक रूम 404 का ताला अपने आप खुल गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कॉरिडोर में एक आदमी खड़ा था। कबीर ने उसे देखा और उसकी सांसें रुक गई। चेहरा वही था हॉरिटो का, लेकिन वो 70 का बूढ़ा नहीं था, वो लगभग 30 का युवक था। कबीर ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? युवा हॉरिटो ने कहा, 1963 में इस कमरे में 3 थे, मेरी पत्नी, आइको और मेरी माँ। कबीर ने पूछा, नीचे रिसेप्शन पे बैठा आदमी कौन है? हॉरिटो के आंखों में डर उतर आया। उसने बहुत धीरे से कहा, 1963 की उस रात इस कमरे में मेरे शरीर से जो बाहर निकला वो मैं नहीं था। कबीर कुछ कह पाता उससे पहले उसके पीछे किसी ने बहुत धीरे से सांस ली। गर्दन के बिल्कुल पास से ठंडी सांस, कबीर की आंख फैल गई। युवा हॉरिटो अचानक चीखा, पीछे मत देखना। तो श्रोतागण, अगर असली हॉरिटो 1963 में रूम नंबर 404 में फंसा हुआ था, तो रिसेप्शन पे बैठा वो बूढ़ा आदमी कौन था? और असली समय भी अब धीरे धीरे पहुंच रहा था 2:13 की तरफ। कबीर के पास सिर्फ 15 मिनट है, लेकिन वो भरोसा करे तो किस पर? आइको पर, उसकी माँ पर, हॉरिटो पे, या फिर किसी पर भी नहीं। मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: एक बार फिर आपका स्वागत है 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो के लेट नाइट हॉरर शो में, और अब रूम नंबर 404 कहानी का अंतिम हिस्सा। कबीर रूम नंबर 404 में था। उसकी रिस्ट वॉच में समय था 1:58। कबीर वहीं जम गया। उसके गर्दन के पास बर्फ जैसी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। युवा हॉरिटो ने कहा, मेरी तरफ देखते रहो, पीछे मत देखना। तभी कबीर के पीछे से आवाज आई, मिस्टर मेहरा। कबीर ने उस आवाज को पहचान लिया, वही बूढ़ा जो रिसेप्शन पे बैठा था। उसकी बात मत सुनो। कबीर ने युवा हॉरिटो की तरफ देखा। तुम दोनों में से असली कौन है, कबीर ने पूछा। युवा हॉरिटो ने जवाब दिया, जो नीचे बैठा है वो 35 साल से मेरा चेहरा पहनकर जी रहा है। कबीर को पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। वो बूढ़े ने हंस के कहा, वो झूठ बोल रहा है। कबीर की नजर फिर शीशे पे गई, आईको फिर दिखाई दी। उसने कांच पे सिर्फ दो शब्द लिखा, मत मुड़ना। कबीर ने घड़ी देखी, 2:07। अब केवल 6 मिनट बाकी थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें कांपने लगी। एक एक करके उनमें मौजूद सारे चेहरे कबीर की तरफ घूम गए, और कई आवाजें एक साथ फुसफुसाई, उसे तुम्हें देखने मत देना, उसे तुम्हें छूने मत देना, और फिर उसे अपना चेहरा मत लेने देना। कबीर ने हॉरिटो से फिर पूछा, 2:13 पर आखिर क्या होगा? हॉरिटो ने कहा, वो कमरा अपना नया मेहमान चुनता है। कबीर ने अपनी फोटो देखी, उसके नीचे आज की तारीख अभी भी थी, 18 दिसंबर 1998। उसने सोचा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हॉरिटो ने कॉरिडोर की तरफ इशारा किया, तो फिर अभी निकल जाओ। कैसे? हॉरिटो बोला, बस चलते रहना, और पीछे से चाहे कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे, मुड़ना मत। कभी रूम 404 से बाहर निकला। इस बार कॉरिडोर बिल्कुल सामान था। दूर सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। तभी पीछे से बच्ची की आवाज आई, कबीर मुझे छोड़ के मत जाओ। कबीर की आंखें बंद हो गई। वो वापस मुड़ना चाहता था, लेकिन हॉरिटो की बात याद आई, चाहे कोई भी आवाज आए मुड़ना मत। कबीर आगे बढ़ा, फिर आई को चीखी, कबीर वो मेरे पीछे है, मेरी मदद करो। लेकिन कबीर नहीं मुड़ा, और अचानक आईको की चीखें बंद हो गई। फिर पीछे से सफेद कपड़े वाली औरत की आवाज आई, कबीर कबीर तुम गलत आदमी पर भरोसा कर रहे हो। कबीर चलता गया, और फिर वो औरत बोली, हॉरिटो ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। कबीर ने पूछा, क्या बात? पीछे से जवाब आया, रूम नंबर 404 नया मेहमान नहीं चुनता, वो अपना नया रखवाला चुनता है। कबीर ने सामने देखा, सीढ़ियों के पास युवा हॉरिटो खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कबीर ने कहा, हॉरिटो ये सब क्या है? हॉरिटो की आंखें झुक गई। उसने केवल इतना कहा, मुझे माफ कर देना, और अगले क्षण वो वहां से गायब हो गया। कबीर ने अपनी घड़ी फिर देखी, 2:12। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, एक मंजिल नीचे फिर दूसरी मंजिल, लेकिन सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। और अचानक वो फिर उसी कॉरिडोर में खड़ा था। सामने 403, 404। कबीर दूसरी दिशा में दौड़ने लगा, लेकिन फिर वही 403, 404। हर बार रूम नंबर 404 का दरवाजा थोड़ा और खुलता गया, और तीसरी बार वो पूरा खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में बहुत सारे लोग खड़े थे, वही लोग जिनकी तस्वीरें दीवार पे थी। उनके बीच आइको, उसकी माँ और युवा हॉरिटो सब चुपचाप कबीर को देख रहे थे। कबीर पीछे हटते हुए बोला, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ क्षण बेहद सन्नाटा रहा, फिर सबने एक साथ कहा, हम सबने भी यही कहा था। और फिर उस सराय की सारी घंटियां बजने लगी। 2:13, फिर अंधेरा हो गया। गीले कदमों की आवाज छप छप छप और तेज हो गई, लेकिन अब कोई कबीर के सामने से नहीं आ रहा था, सब कोई कबीर के पीछे से आ रहे थे। कबीर ने आंखें बंद कर ली, एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके ऊपर आके टिक गया और वही औरत धीरे से फुसफुसाई, अब समझे, मैं तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए नहीं रोक रही थी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए रोक रही थी। कबीर ने आंखें खोली और फिर वो एकाएक बेहोश होके गिर गया। अगली सुबह श्रोतागण, बर्फबारी रुक चुकी थी, पहाड़ से हल्की हल्की हवा बह रही थी और दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ी पर फैल रही थी। वहीं बस वुडन शेल्टर के पास आकर के रुक गई। एक युवा जापानीज ट्रैवलर वहां से उतरा और उसने ड्राइवर से पूछा, रात को रुकने के लिए कोई कमरा, कोई जगह मिलेगी? ड्राइवर ने दूर पहाड़ी की तरफ इशारा किया, रियोकॉन। युवक बर्फ में चलते हुए सराय तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला, रिसेप्शन के पीछे एक आदमी बैठा था, उसका सिर नीचे था। युवक ने पूछा, कोई है? आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया, वो कबीर था। चेहरा शांत, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। युवक ने पूछा, एक रात के लिए कमरा मिलेगा? कबीर ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपने रैक से एक चाबी निकाली, 403। उसने चाबी युवक की तरफ बढ़ा दी, आपका नाम? युवक ने अपना नाम बताया और रजिस्टर में सारे डिटेल्स भर दिए। युवक नाम लिख ही रहा था कि उसकी नजर की रैक पे पड़ी, 403 के पास एक पुरानी चाबी लटकी हुई दिखी, बिल्कुल धूल से भरी हुई 404। युवक ने मुस्कुरा के पूछा, 404 में कोई रुकता नहीं है क्या? कबीर के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत 404 की चाबी उतारी और रिसेप्शन डेस्क के नीचे रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली रात बूढ़े हॉरिटोन ने किया था। युवक अपना बैग उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, तभी उसने कबीर ने जोर से कहा, रुकिए। कबीर उसे बहुत गंभीरता से देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, आधी रात के बाद अपने कमरे में ही रहिएगा। युवक हंस पड़ा, उसने कहा, क्यों? कबीर ने जवाब नहीं दिया। युवक फिर आगे बढ़ गया, कबीर ने उसे दोबारा पुकारा, सुनिए। वो पलटा, अब कबीर के चेहरे पर डर था, जैसे उसके अंदर का असली कबीर अभी भी कहीं जीवित हो। कबीर ने बड़ी मुश्किल से कहा, आधी रात के बाद अगर कोई आपका नाम पुकारे तो दरवाजा मत खोलिएगा। युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर आवाज किसी अपने की हो तो भी? कबीर की आंखों में आंसू आ गए, उसने बहुत धीरे से कहा, तब तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर रूम 404 से 3 दस्तकें सुनाई दी। कबीर ने धीरे से अपना सर ऊपर किया, प्यारे दोस्तों, कुछ जगहों से इंसान बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वो जगह इंसान के अंदर से कभी नहीं निकलती। रूम 404 आज भी वही है, बर्फ से ढके उन जापानी पहाड़ी के बीच, शायद किसी अगले मुसाफिर का इंतजार करते हुए। आप सुन रहे हैं रूम नंबर 404, सिर्फ 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो पर। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, फिर मिलूंगी एक और रात, एक और रहस्य और एक नई कहानी के साथ।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे, होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेंद्र ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: सूरत बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9817। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य

0: संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
1: पता है सर्कुलर रोड आवास विकास कॉलोनी गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।